साहिब होए दयाल कृपा करे तो साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म मनाए सी हुक्म मनया होवे परिवार दा खसमे का मैल पाए सी खसमे भावे सो करे मनु चिंदिया सो फल पाए सी तां दरगह पैंदा जाए सी तां दरगह

0: बहु ब्राह्मण को कर लावो गोबर करना जाई धोती डिका ते जब माली तान मलेशा खाई अंतर पूजा पड़े कतेबा संजम तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाए तरंदा महला पहला
1: मानस खाने करे नवाज छुरी वगाए तनगलता तीन घर ब्राह्मण पूरे नाग ओना पहया वे कोई साथ कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे भरपूर मथा टिका तेर धोती कखाई हथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पहर होवे परवान मलेश तान लै पुजे प्राण अपाख्या का कुट

जे महाका कर्म होए कर्म होए पितरी दे अगे वसियाणी पितरी चोर करे वडिये हाथ दलाल के मुस्फिये करे नानके।

0: महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लगे जाए नान आस कड़िए सभीरे समार चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा हो आस के नया किए जे लिखे वरते सोए महला दूजा
1: सलाम जवाब दो वै करे मंडो कुथा।

0: जे इक अद चंगी करे जे इक अद चंगी करे
1: दूजी पीवे रास पौड़ी चाकर लगे चाकरी ते चल कसम पाए मत सुनो अगली बजो मैं पाए कसम पर अंदर पाए बजो।

ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕਸਮ ਚੱਲੇ।

0: एक नहीं दात आपस ते जो पाई, एक नहीं दात आपस ते जो पाई, नानक सातरमा साहिब तुठे जो मिले महला दूजा।
1: एक नहीं चाकरी जी पौ खसम न जाए, नानक सिलक काढ़िए जिसे ती खसम समाए,

ਜਿੰਦੜੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਦੁੱਖ ਜਿੰਦੜੀ ਨੂੰ।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 70,980 किलो वॉट्स ताईं खां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप एनी डिफरेंट डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।

प्रोग्राम शुरू हो चुका है तफसील को जनता है थोड़ी देर में तमाम हमेशा भगत गौरव साहब के बदलना तय का तबसरो कोई प्रोग्राम नशर कर दोस्त जन तो कई खबर कहड़ी खास खास का बहुत प्रोग्राम जे आखिर में नशर कर वेंदो इन प्रोग्राम जी विचूर तव आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधर हिंसर छो त भगत गौरव साहब के बुधूँ।

ፕሮግራም ሳቢያን የምችል አዋስ ምክራም ድረ ያካሽፋን እጂ ስንዴ ሰርሳይ ኢፕሬሽ አይ ተፍስሩ ቸንጅለ ባዛር ቸብየቴ ካርግል ቢጄ ዲቭስ ባዛር ቸብየ ማላቪው ታይኔ ማራ ጄ ኦፕሬሽን ቢጄ ኬ ሶባታይ ነሙኔ ፕሮግራም ለማላቪው ጀደለከ ભારતીય ફોજ પાકિસ્તાની ઘુસપેટન કે બજાય કરે સંગર પાણ ખ્યાલ સભી મુખ્ય હાલન કે બીર ખા પંજે જબતે તે આંદો એ વાક્ય તો સાલ 1999 મે જે કે કારગલ તકરાર કરે છે વંદો હર સાલ ભારત પંજે બહાદુર સિપાયન એ બહાદુર શહીદન કે સમન કુરબાની લાય ભારત જે ખુદ મુક્ત તરીકે સલામત રખણ લાય શ્રદ્ધાંજલિ દીંદો હે कारगिल दिवस को फकत एक रिमाइंडर कौन है फौज की कामयाबी जो पर यहाँ मुल्क की एकता लश्केदारी ए हथियारबंद फौज इज्जत वो डी कर मल्हा वो आर्थर डेयरे दरास में सदा ही कारगिल विजय दिवस के उत्साह के खिताब कंदे बचाव वजीर श्री राजनाथ सिंह भारत के खुद मुख्तियार से हर कैंड़ बदकार कार्रवाई जो मुंह तोड़ जवाब दिनों वो भारतीय बचाव फौजन दहशत अंगेजन ए सदन हिमायतन के ऑपरेशन सिंदूर जरिए तमाम ही करारो जवाब दिनों है ऑपरेशन सिंदूर इन गाल जो गवाह है तो भारत के पाकिस्तान के हर एक बदकार कार्रवाई के मुंह तोड़ जवाब देने की कुवत है जैसी वो कल्पना तक न तो कर सके और नियर दौरा तो पाकिस्तान का कई भी गालियों को न कहेंगे नहीं जिकने कई भी गाली सीनी तो फकत पीओके यानी पाकिस्तान पारा बेकायदे खेल जम्मू एंड कश्मीर के वापस सौंपड़ देती नहीं जो पाकिस्तान जोरिय वाला रे बैठवाए यो भारत जो एक अंदरूनी हिस्सा है बचाव वजीर दावा सा चाहता पाकिस्तान में फौज ए दहशत अंगेजन मंज विछोटी या चाहिए कि फर्क लगभग खत्म थी चुको है इन वक्त मुल्क दहशत के पैंजे सूबाई पॉलिसी जो हिस्सों करे बनाया हुआ है मुचा वजीर वधी के चाहिए तो कारगिल जंग का पोए 27 साल थी वे हैं पर भारत ए पाकिस्तान पारा अख्तियार कल रस्ता बिल्कुल अलग है भारत इनोवेशंस में नवा वजह गोले हैं और इन जो बदर पाकिस्तान घुसपैठ जा नवा रस्ता गोले रहा है भारत चिप डिजाइनिंग में रुदला है मशगूल है होना इन जे उबतर पाकिस्तान दहशत के डिजाइन करने में मशगूल है भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम के अड़े रहा है तो होना पाकिस्तान दहशत जे इकोसिस्टम के अड़े रहा है भारत सेमीकंडक्टर तैयार कर रहा है तो पाकिस्तान होना आपघाती बॉम्बर्स या हमलों के अंदर तैयार कर रहा है भारत के संदर्श मिशन स्पेस मिशन सुझाते वे उन पाकिस्तान के पर्दे पुठिया जंग करण ला सुझाते वो है भारत स्पेस में उपग्रह मोकिल रहा होना इन बदर पाकिस्तान सरहद पार दहशत अंगेजन के मोकिले रहा है भारत आलम के सॉफ्टवेयर में सर कर रहा है होना पाकिस्तान साइबर सेल्स रवानगी कर रहा है भारत डाटा सेंटर बर्पा कर रहा है तो पाकिस्तान इंतहा पसंदी मरकज बर्पा कर रहा है भारत आलम के यूपीआई जरिए गंढे रहा है तो पाकिस्तान दहशत के हवाला नेटवर्क जरिए गंढे रहा है थोड़ा में चाहिए तो असा रस्ता अलग अलग आन पर लेकिन पाकिस्तान असि खुशहाली डा रुखनो विजो कहीं बदकार कार्रवाई कह तो असो हथियारबंद फौजों उनके करारो जवाब दिन दावा से बयान दिनों श्री राजनाथ सिंह चाहिए तो मरकजी सरकार के सियासी इच्छा शक्ति है कि पैंजे बचाव फौजन के फ्रीहैंड यानी कि खुली अख्तियार डेण की तो पैंजे हिसाब से फैसलो कंदे पेश पुनर ललकार के पैंजे हिसाब से जवाब दियन श्री सिंह रोशनी में आंदो तो कारगिल वार मेमोरियल सो असांजे शहीद थियल बहादुर सिपाहियन ना असांजी श्रद्धांजलि आहे जेके मुल्क जे हर सेकेड़े एज़ीपणो कनि था
मेमोरियल जो है जो वॉल ऑफ यूनिटी है जतन इन में अनेकता है वो भी यह यकमुश्त है असा के नुकसान का बचाए थी तो तसल बुझ रहा हो।

हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।

सिंध में ॿारनि जे अगवा थियण सां वाबस्ता ही ॿियो एडिटोरियल शाया थियो सिंध एक्सप्रेस में, जंहिंजो टाइटल आहे सिंध मां अगवा थियल ॿार। लिखियल सखर मां गुम थियल प्रिया कुमारी जी आज़ादी लाइ हलंदड़ जदोजहद हाणे उन्हनि ॿारनि जी घुर करे रहे जेके प्रिया कुमारी खां अॻु या पोइ गुम थिया आहिनि। छो त प्रिया कुमारी जो केस हिन वक़्तु सिंध में हिकु हाई प्रोफाइल केस थी चुको आहे, जंहिंखे गुम थिए लॻभॻ 5 साल थी विया आहिनि, पर अञा ताईं सिंध पुलिस ऐं घरु खातो इहो पता न लॻाए सघिया आहिनि त प्रिया कुमारी किथे आहे। सिर्फ़ इन बाबति बयानबाज़ी पिया ॾींदा आहिनि, पर केरु पक सां दावा सां नथो ॿुधाए त ॿारनि खे कंहिं अॻवा कयो, हिन वक़्तु सिंध जे या मुल्क जे कहिड़े हिसे में लिकल आहे। लिखियल सिंध मां मासूम ॿारनि जो गुम या अॻवा थियणु हिकु सीरियस मैटर आहे। हितां जे हुकमरान थोरे चूंडियल नुमाइंदनि खे ध्यानु ॾियणु घुर्जे, पर सूरत हाल इहा आहे जो प्रिया कुमारी जो पतो न आहे ऐं वधीक 25 ॿारनि जे गुम थियण जी रिपोर्ट आई आहे। प्रिया कुमारी जी आज़ादी लाइ ताज़ो ई ॿ भरपेलो बाईपास ते प्रोटेस्ट कयो वियो, जेको आख़िर में बिना कंहिं नतीजे ई ख़तम थियो। ॿारनि जी गुमशुदी अञा ताईं बरक़रार आहे। ॿारनि खे अॻवा करण में कंहिंजो हथ आहे सो ख़बर कोन पई आहे। ॿारनि जे अॻवा थियण सां इन बाबति सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में प्रोटेस्ट थिया आहिनि। कानून वज़रात खां सुवाल पिण पुछिया विया आहिनि, पर उहे बि जवाब ॾियण जे हालत में कोन आहिनि। अहिड़ी कहिड़ी माफ़िया जेका ॿारनि खे अॻवा करे रही आहे, जंहिंजी ॼाण पुलिस ताईं कोन थी पहुचे, पुलिस इहो ॼाणण में नाकाम आहे। हर ॿार जो आईनी जमहूरी हक़ आहे त पंहिंजे शहर ॻोठ में महफ़ूज़ रहे, आज़ादी सां किथे बि घुमी फिरी सघे ऐं बिना डप जे कंहिं मैदान में रांदि करे सघे। सिंध मां ॿारनि जो अॻवा थियण इन ॻाल्हि ॾांहुं इशारो थो करे त सिंध में अमन अमान जी सूरताल तमामु ई बदतरीन थी चुकी आहे, बदमनी वधी चुकी आहे। एतिरे क़दुरु जो ॿार पंहिंजनि घरनि में तक महफ़ूज़ कोन आहिनि। छा ज़िमेवारी कानून वज़रात जी कोन्हे त सिंध जे शहरनि खे तहफ़ुज़ ऐं सेफ्टी ऐं सिक्योरिटी मुयसरु कराए ऐं खेल किडनैपर्स खां बचाव मुयसरु कराए?

हिक बार जो अगवा थियण सां पूरे खानदान खे परेशान ऐं बेचैन थो करे। फकत महज पंजी बारनि जो जिक्र थी रहियो आहे, इन खां अलाए घणा ई सवे हज़ारे बार रिपोर्ट गुम थिया हूंदा, गायब थिया हूंदा, अगवा थिया हूंदा, जिन जा केस रिपोर्ट तक कोन थिया आहिनि। समय वधंदड़ बदअमनी खे मंजो ॾियण जी घुर्ज आहे। ॿारनि खे सेफ्टी जी ज़रूरत आहे, छो जो इहे अॻिते हली करे मुल्क जो मुस्तक़बिल आहिनि। तव्हां सिंध एक्सप्रेस में शाह थियल एडिटर ॿुधी रहिया, जंहिंजो टाइटल हो सिंध मां अॻवा थींदड़ ॿार।

ఇన్ఫర్మేషన్ ఖాస్ ఖాస్ ఖబరు. नई दिल्ली यूक्रेन एम्बेसडर के समन नुआए एपेन जो 70 रदम जाहिर कयो जो एक बेड़े ते हमले में थेला में एक भारतीय नागरिक मर जी वियो है. पाकिस्तान पाना बेकायदे खेल जम्मू कश्मीर में मुजाहरा तमाम वधी वे जो जेएसी ए अख्तियार मंज गाल नाकाम वही है. सरकार ऐलान कयो है त रांदीगंज खेत्र के हाथी डेण के लिए एक टास्क फोर्स बर्पा कई वेंदी तो जो साल 2032 तक आर्मी रांदीगंज मार्केट में 5% जो हिस्सो हासिल कर वे. कॉमनवेल्थ रांदन में भारत के शर्मिला धनकर मुल्क जो बो सोनो बिलो हासिल औरतन के शॉर्ट पुट F-57 फाइनल खटी वरतो है. कॉमनवेल्थ रांदियों ग्लास्को में हली रही है.

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधी रहा ये असान जे प्रोग्राम जो वक्त पूरो थी रहा है वरी असा मुलाकात थी सुबह सुबह जो यानी कि भारतीय वक्त मुताबिक 6:30 बजे तेजी तीन इजाजत सदाई गढ़।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों पर दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वह 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के

0: खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। उधर असम के गृह और राजनीतिक विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर भी इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस की हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम एलोटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर से कहते हैं कि आप बोलिए।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इस बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। यह समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मौसम विभाग ने केरलम के उत्तरी जिलों में तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। केरलम के 6 जिलों एर्नाकुलम, त्रिशूर, मल्लपुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi interacted with Pawan Chandana and Naga Bharat Dhaka of Skyroot Aerospace. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the success of Vikram 1 featured prominently in the discussion along with several other interesting topics. The Prime Minister expressed happiness after hearing about the journey and insights into the future plans. He said the energy, ambition and positivity reflect the vibrant spirit of India's private space ecosystem. Mr. Modi also extended his best wishes to the entire Skyroot Aerospace team. State governments of Bihar and Assam have decided to withdraw cases and other legal proceedings initiated against people who participated in the protest over the alleged NEET UG examination irregularities. we have State Home Department assured that it will immediately initiate the legal process to withdraw all First Information Reports, FIRs,

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका। आज आप सुनेंगे जसलीन कौर के गाए शब्द।

संगीती का कार्यक्रम में आज आपने जसलीन कौर के गाए शब्द सुने। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मीना चौहान का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, नई सुबह अपने साथ एक नया सवाल लेकर आती है कि आज का दिन हमें क्या सिखाएगा। शायद जिंदगी हर सवाल का जवाब जो है ना वो तुरंत नहीं देती, लेकिन हर उगता हुआ सूरज ये जरूर कहता है कि उम्मीद कभी खत्म नहीं होती है। कभी मुस्कुराहट बनकर, कभी किसी अपने की आवाज बनकर, तो कभी किसी अनजानी राह पर चलने की हिम्मत बनकर जिंदगी हमें आगे बढ़ना सिखाती है। तो चलिए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

प्यार एक ऐसा एहसास है जो बिना दस्तक दिए दिल में उतर जाता है। पहले किसी की बातें अच्छी लगती हैं, फिर उसकी मुस्कान और फिर धीरे धीरे उसकी हर अदा अपनी सी लगने लगती है। और जब दोस्तों प्यार सच्चा हो तो हंसी भी इजहार बन जाती है और खामोशी भी दिल की जुबान।

0: फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: दोस्तों, मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि वो बिना किसी शर्त की जाती है। वो दूरियों में भी धड़कती है, खामोशियों में भी मुस्कुराती है और यादों में भी जिंदा रहती है। कभी किसी का नाम होंठों तक नहीं आता, लेकिन दिल की हर धड़कन उसी का पता पूछती रहती है। ऐसी ही मासूम, गहरी और रूह से जुड़ जाने वाली मोहब्बत का एहसास लिए ये गीत हर उस दिल को छू जाता है जिसने कभी किसी को सच्चे मन से चाहा हो। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक पल ऐसा जरूर आता है जब उसे लगता है कि अब बस यहीं तक सफर था, लेकिन वही पल उसे असली ताकत से भी मिलवाता है। गिरना मंजिल का अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत का पहला कदम होता है। जब हम अपने डर, अपनी सीमाओं और अपने बीते हुए कल से आगे निकल जाते हैं ना, तभी दिल कहता है कि अब फिर से उड़ चले। उड़ान सिर्फ आसमान में नहीं होती, उड़ान तो सोच की होती है, सपनों की होती है और उस भरोसे की होती है जो हमें हर बार टूटकर भी फिर से खड़ा कर देता है। तो आइए अपनी उम्मीदों को फिर से पंख देते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: इस समय आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग मेरे यानी मीना चौहान के साथ। दोस्तों, जिंदगी के सफर में मंजिल से ज्यादा मायने रखता है किसी का साथ। कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं कि उनकी मौजूदगी ही हर मुश्किल को आसान बना देती है। उनके साथ होने से खामोशियां भी सुकून देने लगती है और दूरियां भी उम्मीद का रिश्ता बन जाती है। सच्चा साथ वही होता है जो खुशियों में मुस्कुराए और मुश्किलों में बिना कुछ कहे हाथ थाम ले।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम 1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम 1 की सफलता की सराहना की थी।
5: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
4: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सबिता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
4: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय के पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान, सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्ले बुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। ये चुनाव जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे, अब 8 से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: भारत की पैरा खिलाड़ी

0: in the women's 53-kilogram event on her CWG debut. Short putter Shilpa Shraila also secured a dramatic bronze medal in the women's short put F57 event after a successful post-match protest and review stripped Nigeria's Yukeria Iyazi of her valid mark. With this, India's total medal count stands at 10, including 2 gold, 5 silver and 3 bronze at the Glasgow 2026 Commonwealth Games. Meanwhile, Indian boxer Lovlina Borgohain is already assured of a medal at Glasgow 2026 after receiving a quarter-final bye in the women's 75-kilogram event. Chirag Jha from Sports Desk.
1: President Draupadi Murmu has congratulated Sharmila Dhankar on winning the gold medal in the women's short put F57 event at the Glasgow Commonwealth Games 2026. In a social media post, the president said that by becoming India's first ever Commonwealth Games gold medalist in para-athletics, Sharmila has achieved a landmark feat. The president also congratulated Sarvesh Anil Kushare for clinching the silver medal in the men's high jump event at the Commonwealth Games. Further, President Murmu congratulated Vadhuri Ajay Babu on securing the silver medal in the men's 79-kilogram weightlifting event. Prime Minister Narendra Modi has also congratulated Bindya Rani Devi Sorokhaibam for winning bronze in the women's 58-kilogram event. And now for a look at today's newspapers, it's over to Neena Arakkal.
2: Thank you, Abhishek. After protest, Parliament to debate tougher paper leak bill, leads Hindustan Times. Pradhan resignation fails to break Parliament logjam as opposition blocks business, headlines the Statesman. The Pioneer in its editorial piece, A Digital Fix for a Crisis of Trust, says restoring trust in examination system demands a secure and tamper-proof architecture, and who better than Nandan Nidekani to help build it. India's weightlifters continue to do the heavy lifting, bring home three more Commonwealth Games medals, reports Hindustan Times. Kiyogo Higashino, who made Japanese crime fiction a global obsession, dies at 68, reports the Indian Express. And finally, the ODC nears $1 billion at global box office, reports Financial Express. Well, the paper says Christopher Nolan's The Odyssey is well on course to become another global box office blockbuster. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi hails India's growing private space ecosystem, meets Skyroot Aerospace founders after Vikram 1 success. Bihar and Assam governments to withdraw cases against NEET protesters and release those jailed under various charges. NDA parliamentary party to hold its weekly Mangal Milan's meeting in New Delhi today. Tourism Ministry signs MOU with Air India to promote India as preferred global tourism destination under Incredible India brand. India and China reaffirm importance of maintaining peace and tranquility along border. And India's para-athlete Sharmila Dhankar wins gold medal in the women's short put event at the Commonwealth Games. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई शोबे में भारत के फरोग पाते हुए प्राइवेट इको निजाम की सताइश की है। वज़ीर-ए-आज़म ने विक्रम 1 की कामयाबी के तनाजुर में स्काईरूट एयरोस्पेस के बानी अहलकारों से मुलाकात की। बिहार और आसाम की सरकारों ने नीट मामले पर एहतजाज करने वाले अफराद के खिलाफ केस वापस लेने और मुख्तलिफ इल्जामात में गिरफ्तार किए गए अफराद को रिहा करने का ऐलान किया है। एनडीए पार्लियामानी पार्टी आज नई दिल्ली में अपनी हफ्तेवार मंगल मिलन मीटिंग का एहतमाम करेगी। सियाहत की वजारत ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत आलमी सतह पर भारत को तरजीह सियाहती मुल्क के तौर पर फरोग देने की खातिर एयर इंडिया के साथ मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। भारत और चीन ने सरहद पर अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत का इरादा किया है। और दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने खवातीन के शॉटपुट मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एयरोस्पेस के बानी पवन चंदाना और नागा भारत दाका के साथ गुफ्तगू की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि उनकी बातचीत में विक्रम 1 की कामयाबी नीज कई दीगर दिलचस्प मौजूदात पर खासतौर से तबादले ख्याल किया गया। वजीर आजम ने इस कंपनी

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में अभी आप सुन रहे थे फतेह अली का सितार पर बजाया राग नट भैरव। इनके साथ तबले पर संगत की थी मोहम्मद अकरम ने। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।
1: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है।
2: आज के अंक में मैं संकल्प मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ।
3: 18 जुलाई 2026 को भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। हैदराबाद स्थित निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने आधुनिक विक्रम 1 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। मिशन आगमन के तहत श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12 बजे उड़ान भरने वाले इस रॉकेट ने पेलोड्रस को सफलतापूर्वक 450 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। इस ऐतिहासिक लॉन्च के साथ भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास ऑर्बिटल क्षमता वाले रॉकेट लॉन्च करने वाली अपनी खुद की निजी कंपनी मौजूद है। 17 जुलाई 2026 को भारत ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन नमो ग्रीन रेल की शुरुआत की। हरियाणा के जींद से सोनीपत रूट पर रवाना की गई ये स्वदेशी ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है क्योंकि ये पारंपरिक डीजल के बजाय हाइड्रोजन से चलती है और इसके इंजन से धुएं की जगह केवल जल वाष्प यानी वाटर वेपर निकलता है। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज मिशन के तहत शुरू की गई इस तकनीक से भारत अब जर्मनी और चीन जैसे चुनिंदा देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है जो देश के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगा। अब चलते हैं चीन की ओर। 17 जुलाई से शंघाई में आयोजित वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2026 में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहाँ 400 से अधिक ह्यूमनॉइड यानी इंसानों जैसे रोबोट एक साथ प्रदर्शित किए गए। कोई लोगों का स्वागत कर रहा था, कोई सामान उठा रहा था तो कोई बातचीत कर रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ऐसे रोबोट अस्पतालों, कारखानों, घरों और बुजुर्गों की देखभाल जैसे कई क्षेत्रों में हमारी मदद कर सकते हैं। 14 जुलाई 2026 को भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन कजाकिस्तान से बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से रूसी सोयुज M29 अंतरिक्ष यान के जरिए सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए रवाना हुए। पेशे से आपातकालीन चिकित्सक डॉक्टर मेनन का ये पहला अंतरिक्ष मिशन है जिसके तहत वे करीब 8 महीनों तक ISS पर रहकर अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में चिकित्सा तकनीकों और वैज्ञानिक प्रयोगों पर शोध करेंगे। उनकी ये ऐतिहासिक उपलब्धि दुनिया भर के उन करोड़ों युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। 15 जुलाई 2026 को भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक बड़ी तकनीकी क्रांति हुई जहां घरेलू स्टार्टअप वेमेग लैब्स ने देश की पहली वर्चुअल मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर का सफल अनावरण किया। इस अत्याधुनिक मोटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बिना किसी महंगे रेयर अर्थ मैग्नेट दुर्लभ पृथ्वी चुंबकीय तत्वों के काम करती है जिससे विदेशों पर निर्भरता खत्म होती है। इसके बजाय ये स्वदेशी तकनीकी जैसे तांबे की कुंडलियां, कॉपर कॉइल जिसे हम कहते हैं, और एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है जो चुंबकीय प्रभाव को पैदा करता है जिससे ईवी उत्पादन लागत में भारी कमी आएगी। चलिए अब सीधे रुख करते हैं गहरे और अनसुलझे ब्रह्मांड की ओर। 21 जुलाई 2026 को खगोलविदों ने एक ऐसी खोज की है जिससे पता चला है कि अंतरिक्ष में एक विशाल जुपिटर यानी बृहस्पति के द्रव्यमान जितने बड़े ऑब्जेक्ट की खोज हुई है जिसे एक एक्सोसैटेलाइट या अनोखा चांद कहा जा रहा है। ये खोज ब्रह्मांड में ग्रहों, चंद्रमाओं और हमारी पुरानी परिभाषाओं को चुनौती दे रही है। 21 जुलाई 2026 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व खोज करते हुए एक मामूली सिलिकॉन चिप को डीएनए राइटिंग मशीन में बदल दिया। ये आधुनिक चिप पानी और बिजली की मदद से एक साथ कई जटिल डीएनए सीक्वेंस लिख सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तकनीक से भविष्य में डेटा स्टोरेज की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी जहां कंप्यूटर का डेटा किसी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क के बजाय सुरक्षित जैविक डीएनए में स्टोर किया जा सके। वहीं 22 जुलाई 2026 को सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के डॉक्टर रॉबर्ट नोबल और उनकी टीम ने कैंसर के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए इवोल्यूशनरी थ्योरी और मैथमेटिकल मॉडलिंग पर आधारित एक नई रणनीति विकसित की है जिसमें एडिटिव थेरेपी का उपयोग कर ट्यूमर को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। ये नई पद्धति पारंपरिक पारंपरिक उपचार के विपरीत कैंसर कोशिकाओं में दवा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदलकर ट्यूमर को लाचार बना देती है, जिससे प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती ट्रायल में ही बेहद सकारात्मक परिणाम इनके सामने आए हैं। डॉक्टर नोबल की टीम ने यह साबित किया है कि अगर ट्यूमर को संभालने का मौका दिए बिना सही समय पर यानी थेरेपी के खिलाफ रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदल दिया जाए तो कैंसर कोशिकाएं पूरी तरह लाचार हो जाती हैं और हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं।
2: दोस्तों 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है और भारत की बात करें तो बाघों के संरक्षण और उनकी बढ़ती संख्या में भारत सबसे अग्रणी देश है। लेकिन बाघों का संरक्षण इतना महत्वपूर्ण है क्यों और विश्व बाघ दिवस की कहानी क्या है, आइए जानते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला से।
4: बाघ एक ग्लोबल स्पीसीज है, इनफैक्ट इसको सबसे ज्यादा आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के रूप में भी सामने आया है। जिस एरिया में बाघ पाए जाते थे उसमें बहुत कमी आई। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ग्लोबल टाइगर समिट सेंट पीटर्सबर्ग जगह वहां पर आयोजित की गई 2010 में। जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था उसमें ये लिया गया कि हमको अगले 12 सालों में बाघों की संख्या को डबल करने और साथ में एक और चीज डिसाइड की गई कि 29 जुलाई को हर साल ग्लोबल टाइगर डे के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य ये था कि इस दिन हम जो इसके बारे में अवेयरनेस जो जनरल पब्लिक है उनको बताया जाए। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो उसमें भारत का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जहां तक कि बाघों के संरक्षण की बात, यानी ऐसे टाइगर जो कि जंगलों में पाए जाते हैं उनकी अगर संख्या देखें तो उसका करीब 70% भाग जो है वो भारत में पाया जाता। तो भारत उन गिने चुने देशों में से एक है, उसने अपने जो टाइगर नंबर थे जो कि हमारे 2006 में 1411 हो गए थे उनको डबल कर लिया। हमारे पास करीब 3,500 से 4,000 तक बाघ विचरित करते हुए पाए जाते हैं। इसमें से भी जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वो अपने आप में सिरमौर है बाघ संरक्षण। इस साल हम इसके 90 साल पूरे हो रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान के, और 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई इसमें 9 टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया। आज 58 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं पूरे देश में जो कि इस परियोजना के अंतर्गत आते हैं। इसका शुरुआत थी वो भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से ही हुई, तो इसीलिए कॉर्बेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाघों की संख्या की बात करें तो आज कॉर्बेट में सबसे ज्यादा बाघ हैं, 260 से लेकर 270 बाघ आज यहाँ पर है।
2: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में तकनीक का बाघों के संरक्षण में क्या योगदान है, इसके बारे में डॉक्टर साकेत कहते हैं।
4: आज अगर हम देखें तो तकनीक का उपयोग जो वो बाघ संरक्षण या वन्यजीव संरक्षण के लगभग हर पहलू में किया जा रहा है। प्रोटेक्शन की बात करें सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्षेत्र में जो हमारी गश्त सुनिश्चित करना। इसके लिए हमने भारत सरकार ने और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और जो NTCA है जो कि पूरे देश में बाघ संरक्षण को देखता है, उन्होंने एक M-स्ट्राइप ऐप बनाया है। हमें अगर हमारे कर्मचारियों ने कहीं पे उनको कोई भी घटना दिखती है वो M-स्ट्राइप ऐप

0: एंटर कर सकते। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो इसका रोल है, हम स्पेशल कैमरा ट्रैप लगाते हैं जिनमें की फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली जब बाघ उनके सामने से गुजरता है उसकी फोटोग्राफ कैप्चर कर ली जाती है। और हमें पता है कि जो बाघों की जो धारियां होती हैं जिनको हम स्ट्राइप पैटर्न कहते हैं वो हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह होती है, यानी हर बाघ की जो धारी का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग होगा, यूनिक होगा। जब हमारे पास पूरे क्षेत्र से स्वचालित जो कैमरा ट्रैप है उनसे फोटोग्राफ प्राप्त हो जाते हैं तो उसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा टेक्नोलॉजी का प्रयोग आता है मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए, कि जैसे हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ऐसी बाउंड्री जहां पर गांव से लगती है, आबादी वाले क्षेत्र से लगती है, वहां पर हमने बहुत पावरफुल कैमराज लगाए हुए या वहां पर ऐसे हमारे सेंसर्स लगे हैं जो कि जब जानवर बाहर जाता है तो उसकी जानकारी हमको मिल जाती है। साथ में अगर मैं पूरे क्षेत्र पर निगाह रखने की बात करूं तो हमको ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसका भी भरपूर प्रयोग किया जा रहा है।
1: दोस्तों, भारत में हाल फिलहाल में ही वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स का आविष्कार हुआ है और इस आविष्कार ने एक बार फिर से रेयर अर्थ मटेरियल्स को चर्चा में ला दिया है। आईआईटी कानपुर में इसी क्षेत्र में पोस्ट डॉक कर रहे डॉक्टर नवनीत कुमार कर्ण समझाते हैं कि रेयर अर्थ मटेरियल्स आखिर है क्या और ये इतने खास क्यों है।
2: रेयर अर्थ मतलब दुर्लभ धातु है जो कि हम धरती पे बहुत कम पाए जाते हैं। कम इस सेंस में है कि ये हैं धरती में बहुत सारे बट इनको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। 15 से 20 धातु ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं और ये स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि इनके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। ये मैग्नेटिक होते हैं जनरली और इनका परमानेंट मैग्नेट के तौर पर बहुत इस्तेमाल होता है। तो आजकल जितने भी ड्रोन्स देखते हैं या रोबोट्स देखते हैं उसमें मोटर्स का बहुत फंडामेंटल यूज है। जहां भी मूवमेंट है तो मोटर से कंट्रोल होता है। तो मोटर जो चलता है वो बस मैग्नेट के बेसिस पे चलता है। तो आपका जितना अच्छा मैग्नेट होगा उतना बढ़िया एनर्जी कन्वर्जन होगा। तो उच्च क्वालिटी के जो मैग्नेट होते हैं वो इन रेयर अर्थ मटेरियल से बनता है।
1: आजकल मोटरों में इस्तेमाल होने वाली चुंबक यानी मैग्नेट्स का रेयर अर्थ खनिजों से क्या संबंध है, इस बारे में डॉक्टर नवनीत कहते हैं।
2: परमानेंट मैग्नेट जनरली फेरोमैग्नेटिक होते हैं। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में उस मैग्नेटिक मटेरियल को डालेंगे जो परमानेंट मैग्नेट है तो उनका एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव जीरो से पॉजिटिव फिर पॉजिटिव से नेगेटिव फिर नेगेटिव से वापस जीरो लाएंगे तो एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है उनके मैग्नेटाइजेशन का कि उनमें कितना मैग्नेटिक इंड्यूस हो रहा है। तो उसके अंदर एक एरिया बनता है तो वो एरिया जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो एरिया जितना बड़ा होगा जितना ब्रॉड होगा तो वो एनर्जी उतना एफिशिएंटली कन्वर्ट करने का यूज करने का मैग्नेट बनता है। परमानेंट मैग्नेट्स अकेले परमानेंट रेयर अर्थ एलिमेंट से नहीं बनते हैं। उनके रेयर अर्थ एलिमेंट्स और कुछ एक जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं उन्हें, उनके मिश्रण के साथ बनाए जाते हैं। जैसे एनडी एफईबी बोरोन करके एक परमानेंट मैग्नेट है, बहुत फेमस कॉमन मैग्नेट है। तो एनडी जो है इसमें वो रेयर अर्थ एलिमेंट है। तो इस तरह से जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो एनडी की वजह से काफी ज्यादा होती है। परमानेंट मैग्नेट आप आयरन से भी बना सकते हैं लेकिन उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा अधिक नहीं होगी बजाय कि जब हम एनडी और एफई को मिला के बना। तो इस तरह से हमारे पास जो रेयर अर्थ वाले हैं वो हम एनर्जी एफिशिएंटली काम करते हैं। इनका एक और एप्लीकेशन आप देख सकते हैं जो हमारे हवाई जहाज के वो होते हैं ना मटेरियल जिनसे बनाया जाता है तो उनके एलॉय में भी ये रेयर अर्थ वाले यूज होते हैं। स्कैंडियम और ये ट्रियम करके दो हैं रेयर अर्थ, उनके यूजेस होते हैं। तो वो एल्युमिनियम के साथ एक ऐसा एलॉय बनाते हैं जो काफी मजबूत होते हैं।
1: डॉक्टर नवनीत बताते हैं कि आखिर रेयर अर्थ मटेरियल्स इतने रेयर क्यों होते हैं।
2: रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली मतलब रिएक्टिव होते हैं काफी। कुछ एक हैं बहुत कम रिएक्टिव होते हैं और मोस्टली जो हैं वो काफी रिएक्टिव होते हैं। तो वो किसी न किसी फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो जैसे आयरन आपको मिल जाता है और उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपली जितना आसानी से उतनी आसानी से आप रेयर अर्थ को निकाल सकते हैं क्योंकि वो उन कंपाउंड में फॉर्म होते हैं। तो उनको एक्सट्रैक्ट करना केमिकली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वो प्रोसेस अपने आप में एक बड़ा प्रोसेस है उनको एक्सट्रैक्ट करना। तो इस तरह से वो थोड़े डिफिकल्ट है और साथ में उनकी एबंडेंस है लेकिन वो बहुत स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मतलब एक होता है ना कि आपके पास एक कोई खनिज है तो एक जगह काफी इकट्ठे हैं तो वहां से आप कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसमें आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगा। अमाउंट है उनका ठीक ठाक लेकिन स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उनको फिर एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपके पास ज्यादा बड़ा अमाउंट है उसमें से आपको थोड़ा कम अमाउंट का पदार्थ निकालना है तो इस वजह से भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंडिया में ऐसा है एक मोनाजाइट करके खनिज है जो कि आप केरल का बीच है वो कोंकण वाला बीच जो है उसके अराउंड पाया जाता है। बहुत सारे खनिज हैं उसमें। फिर इंडिया में देखें तो गुजरात के साइड भी है।
1: भारत में हालिया वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स के आविष्कार से बदले हुए समीकरणों पर डॉक्टर नवनीत कहते हैं
2: तो भविष्य में ये है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। अगर हम टेक्नोलॉजिकली देखें तो जो मोटर डिस्कवर हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है और और ये एक तरीके से सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस सा दे रहा है, क्योंकि जो आज दुनिया में पूरे ग्लोबल लेवल पे रेयर अर्थ का जो सप्लाई है वो चाइना के पास है, तो वो इन चीजों को बहुत अच्छे से ग्लोबली कंट्रोल करता है। तो अगर हम इस संदर्भ में देखें इंडिया की डिस्कवरी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि आप एक सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट मोटर बना रहे हैं जहां पे इस मटेरियल की बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो आप इससे इंडिपेंडेंस ले रहे हैं।
1: दोस्तों, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आप रीतिका बिंजोला से सुनते हैं, जुलाई माह के प्रमुख वैज्ञानिक और वैज्ञानिक

0: घटनाओं के बारे में।
1: जुलाई का ये महीना सिर्फ मॉनसून की फुहारें लेकर नहीं आता, बल्कि ये महीना गवाह है इतिहास के उन महान वैज्ञानिकों के जन्म का जिन्होंने अपनी सोच से पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। शुरुआत करते हैं एक ऐसे इंसान से जिसने अंधेरी दुनिया को रोशनी से भर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 10 जुलाई 1856 को जन्मे महान आविष्कारक निकोला टेस्ला। आज हमारे घरों, स्कूलों, अस्पतालों और कारखानों तक जो बिजली पहुँचती है वो मुख्य रूप से इसी प्रणाली के कारण संभव हो पाती है। अगर केवल पुराने डीसी प्रणाली होती तो बिजली को इतनी दूर तक पहुंचना बहुत कठिन पड़ता और महंगा होता। टेस्ला ने इंडक्शन मोटर भी बनाई जो आज पंखों, वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर और उद्योगों की कई मशीनों में इस्तेमाल होती है। वायरलेस संचार और रेडियो से जुड़े उनके विचार भी अपने समय से बहुत आगे थे। अब बात करते हैं ग्रिगोर मेंडल की, जिनका जन्म 20 जुलाई 1822 को हुआ था। उन्होंने मटर के पौधों पर लगभग 8 वर्षों तक प्रयोग किए। इन प्रयोगों से उन्होंने बताया कि माता पिता के गुण बच्चों तक कैसे पहुंचते हैं। आज इसे हम अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल की खोज की बदौलत आज वैज्ञानिक नई और अधिक उपज देने वाली फसलें विकसित कर रहे हैं, कई अनुवांशिक बीमारियों का अध्ययन कर रहे हैं और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी लगातार आगे बढ़ रही है। इसीलिए उन्हें अनुवांशिकी का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं 25 जुलाई 1920 को लंदन में जन्मी रोजलिन फ्रैंकलिन के बारे में, जिन्होंने महज 15 साल की उम्र में वैज्ञानिक बनने का फैसला कर लिया था। उनके द्वारा खींची गई ऐतिहासिक डीएनए की तस्वीर फोटो 51 और उनके रिसर्च डेटा की मदद से ही आगे चलकर जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का मशहूर डबल हेलिकल यानी घुमावदार सीडी जैसा मॉडल तैयार किया था। डीएनए के अलावा रोजलिन ने कोयले और कार्बन की आंतरिक संरचना को समझने का काम भी किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेहतर गैस मास्क बने। और आज जो हम वाटर फिल्टर या हवा साफ करने वाले एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करते हैं उनमें एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता है। इसकी शुरुआत रोजलिन की रिसर्च से ही शुरू हुई थी। तंबाकू व पोलियो जैसे वायरस के सटीक आकार को खोजने में भी रोजलिन ने क्रांतिकारी योगदान दिया, जिससे आगे चलकर वैक्सीन और दवाइयां बनाने में मदद मिली।
0: श्रोताओं, इसी के साथ आज के अंक को मुझे यानी संकल्प मिश्रा को संपन्न करने की अब दीजिए अनुमति। अगले अंक में विज्ञान जगत की नई हलचल के साथ एक बार फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का ये अंक सम्पन्न होता है।

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत है प्रोग्राम सुबगाही। आज के प्रोग्राम में सुनिए घनश्याम दास का गाया हुआ ये भजन।

0: घनश्याम दास की आवाज में अभी अपने भजन सुना प्रोग्राम था सुबह का ही। अब आज का ये प्रोग्राम खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर आप हमें सुन रहे हैं। अब पेश है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: तो आइए अब हम अंत में बढ़ते हैं, कुछ जानी मानी शख्सियतों को याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं महाश्वेता देवी की। भारत की प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका थी। उन्होंने बांग्ला भाषा में बेहद संवेदनशील और वैचारिक लेखन के माध्यम से उपन्यास और कहानियों से साहित्य को समृद्धशाली बनाया। अपने लेखन कार्य के साथ साथ महाश्वेता देवी ने समाज सेवा में भी सदैव सक्रियता से भाग लिया और उसमें पूरे मन से लगी रही। स्त्री अधिकारों की बात हो या फिर दलितों की या फिर आदिवासियों के हितों के लिए उन्होंने हमेशा उस व्यवस्था से संघर्ष किया और इनके लिए सुविधा और न्याय का रास्ता बनाती रही। 1996 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1586 अगर बात की जाए तो इंग्लैंड से वापस लौटने पर सर थॉमस हैरियट ने यूरोप को आलू के बारे में परिचित कराया था, तो ऐसे में जो है इसकी शुरुआत हुई। और अब बात कर लेते 1741 की। कैप्टन बेरिंग ने माउंट सेंट एलियास अलास्का की खोज की। 1821 में पेरू ने स्पेन से स्वतंत्र की घोषणा की। 1866 की अगर बात की जाए तो अमेरिका में मापने की मीट्रिक प्रणाली को वैधानिक मान्यता मिली थी आज के दिन। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। और 1914 की बात की जाए तो एसएस कामागाता मारू को वैंकूवर से निकाला गया और भारत रवाना किया गया था।
2: एंड नाउ वी मूव इनटू द सेक्शन ऑफ आवर बर्थ एंड डेथ ऑफ फेमस पर्सनालिटीज। फरहत
1: जी बिल्कुल। और हम सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध सहायक अभिनेताओं में से एक इंद्र कुमार यानी इंदर कुमार की। भारतीय हिंदी सिनेमा में इनका काफी योगदान रहा। इन्होंने 20 से भी अधिक बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। इंद्र कुमार ने 1996 में फिल्म मासूम से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी।

0: कहीं अभिनेता सलमान खान के साथ तुमको न भूल पाएंगे और कहीं प्यार ना हो जाए जैसी सफल फिल्मों में भी काम किया। और श्रोताओं, अब हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके नाम 144 अलग अलग फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर बनने का रिकॉर्ड है। इससे पहले कि हम उनका नाम बताएं, आइए ये सुन लेते हैं।
1: तो मुनीम जी यहाँ बैठे तो और कोई नहीं था वहाँ पे?
2: जी नहीं
0: जी। तो हम बात कर रहे हैं जगदीश राज खुराना की। हिंदी फिल्मों में ये प्रसिद्ध अभिनेत्री अनीता राज के पिता थे और उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इनकी लोकप्रिय फिल्मों में दीवार, डॉन, शक्ति, मजदूर, ईमान धर्म, गोपीचंद जासूस, सिलसिला और आईना जैसी फिल्में शामिल हैं। और बताया जाता है कि जगदीश राज ने पुलिस इंस्पेक्टर किरदार निभाते निभाते खुद भी पुलिस की वर्दी सिलवा ली थी और जब भी किसी फिल्म को लेकर बात होती डायरेक्टर उन्हें फोन करते तो वो सीधे वर्दी पहनकर पहुंच जाते क्योंकि उनको ये आभार हो चुका था कि उन्हें जो ज्यादातर जो रोल हैं वो पुलिस इंस्पेक्टर के ही मिलने वाले हैं। और श्रोताओं, अब हम याद कर रहे हैं भारतीय अभिनेत्री कुमकुम जिनका असली नाम था जेमुनसा खान। उन्हें आंखें, ललकार, मदर इंडिया, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, दिल भी तेरा हम भी तेरे, सन ऑफ इंडिया, कोहिनूर, उजाला, नया दौर, श्रीमान फंटूश, एक सपेरा, एक लुटेरा, गंगा की लहरें, इन्हें बहुत सारी फिल्मों के लिए याद किया जाता है। अपने युग की कई फिल्मी नायिकाओं के साथ ये जोड़ी गई और किशोर कुमार के साथ भूमिकाओं में काफी लोकप्रिय रही। कुमकुम की खोज गुरुदत्त ने की थी। गुरुदत्त को अपनी फिल्म आर पार के लिए कभी आर कभी पार लगा तीर नजर गाना फिल्माया था और बाद में कुमकुम को प्यासा में एक छोटी सी भूमिका में देखा गया। इसके अलावा सीआईडी का प्रसिद्ध गीत ये है बॉम्बे मेरी जान गीता दत्त द्वारा ही गाया गया, उन पर ये फिल्माया गया था। तो हमने उन पर एक मेडली तैयार की है, आइए।

श्रोताओं, आज जन्मदिन है भारतीय फिल्म अभिनेत्री आयशा जुल्का का। जी हाँ, जो जीता वही सिकंदर की अंजलि हो या फिर अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ी में नेहा का किरदार उन्होंने बखूबी निभाया। उनका जन्म आज ही के दिन 1972 में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ। आयशा ने फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कदम रखा। साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म कैसे कैसे लोग में और उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया। इसके अलावा 1990 में तेलुगु फिल्म नेति सिद्धार्थ से लीड एक्ट्रेस के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। और 1992 में रिलीज हुई जो जीता वही सिकंदर ने आयशा की किस्मत बदल दी। आमिर खान के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई और फिल्म का गाना भी काफी लोकप्रिय हुआ। तो आइए सुन लेते हैं उसी फिल्म का ये गीत।

0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप फहीम अहमद से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई शोबे में भारत के फरोग पाते हुए प्राइवेट इको निजाम की सताइश की है। वज़ीर आज़म ने विक्रम 1 की कामयाबी के तनाजुर में स्काईरूट एयरोस्पेस के बानी एहलकारों से मुलाकात की। बिहार और आसाम की सरकारों ने नीट मामले पर एहतजाज करने वाले अफराद के खिलाफ केस वापस लेने और मुख्तलिफ इल्जाम में गिरफ्तार किए गए अफराद को रिहा करने का ऐलान किया है। एनडीए पार्लियामानी पार्टी आज नई दिल्ली में अपनी हफ्तावार मंगल मिलन मीटिंग का एहतमाम करेगी। सियाद की वजारत ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत आलमी सतह पर भारत को तरजीही सियाती मुल्क के तौर पर फरोग देने की खातिर एयर इंडिया के साथ मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। भारत और चीन ने सरहद पर अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत का इरादा किया है और दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनकर ने खवातीन के शॉट पुट मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एयरोस्पेस के बानी पवन चंदाना और नागा भरत डाका के साथ गुफ्तगू की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि उनकी बातचीत में विक्रम 1 की कामयाबी नीज कई दीगर दिलचस्प मौजूदात पर खासतौर से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने इस कंपनी के दोनों बानी अफराद के सफर और मुस्तकबिल के उनके मंसूबों के बारे में वाकफियत हासिल करने के बाद मसर्रत का इजहार किया। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी तवानाई जोश और मुस्बत अंदाज फिक्र से भारत के खलाई शोबे के प्राइवेट इको निजाम के मुतालिक जज्बे की अक्कासी होती है। जनाब मोदी ने स्काई रूट एयरोस्पेस की पूरी टीम के तय नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म ने मन की बात के अपने प्रोग्राम में भी विक्रम 1 की कामयाबी की सताइश की थी। बिहार सरकार ने उन अफराद के खिलाफ केस और दीगर कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है जिन्होंने नीट यूजी इम्तिहान में मुबैना बेजाबतगियों के मामले पर एहतजाज में हिस्सा लिया था। बिहार के महकमे दाखिला की तरफ से जारी किए गए एक पब्लिक नोटिस के मुताबिक 26 जुलाई को शाम 6 बजे से कबल रियासत में कहीं भी एहतजाज में हिस्सा लेने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ कोई ताजीरी इंतकामी या नामुआफिक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस मुद्दत तक दर्ज कराई गई सभी FIR फौजदारी शिकायतों और वजह बताओ नोटिस वापस लेने के लिए कानूनी अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। सरकारी बयान के मुताबिक वक्त की मजकूरा हद से कबल दाखिल किए गए केसों के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए अफराद को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाएगा। सरकार ने यह यकीन दहानी भी कराई है कि इस मुद्दत से पहले के वाकयात के सिलसिले में मुस्तकबिल में कोई बराह

या बिलवास्ता कार्रवाई नहीं की जाएगी। आसाम के उम्र दाखिला और सियासी उम्र के महकमे ने भी कहा है कि नीट यूजी इम्तिहान का पर्चा मुबैना तौर पर लीक होने के मामले पर एहतजाज के सिलसिले में रियासत में केस दर्ज किए गए थे और 13,000 को गिरफ्तार किया गया था। अलबत्ता रियासत सरकार ने यह फैसला किया है कि इन मुजाहरों में शामिल होने वाले अफराद के खिलाफ रियासत के अंदर पुलिस की तरफ से किसी भी तरह की कोई नामुआफिक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की पार्लियामानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतल्लिक हफ्तावार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में होने वाली है, जिसे अब मंगल मिलन कहा जाता है। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है, जिसका मकसद एनडीए के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। इस महीने की 21 तारीख को गुज़श्ता मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पूरे मुल्क में आइंदा होने वाले इम्तिहानात में पेपर लीक होने के वाकयात की रोकथाम के लिए सभी मुतालिका इदारों की जानिब से मरबूत कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया था। वज़ीर आज़म ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के हालिया वाक़े में मुलव्वज़ अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुल्क के नौजवानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के तहत सरकार के अहद को दोहराया था। तृणमूल कांग्रेस से अलहदा होने वाले ग्रुप के अरकान पार्लियामेंट नई तश्कील दी गई। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई को भी एनडीए की मीटिंग में शिरकत के लिए मदो किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सेहत की वजारत ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत आलमी सतह पर भारत को तरजीही सियाती मुल्क के तौर पर फरोग देने की खातिर एयर इंडिया के साथ मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। सेहत और सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में नई दिल्ली में इस समझौते पर दस्तखत किए गए। इस इश्तराक का मकसद आलमी सतह पर भारत की सियाती झलक को उजागर करने के लिए वजारत के इकदाम के साथ साथ एयर इंडिया के वसी अंदरूनी मुल्क और बैन अल-अक़वामी नेटवर्क को बरुएकार लाना है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब शेखावत ने कहा कि इस साझेदारी से अहमियत के हामिल बैन अल-अक़वामी मार्केट्स में भारत की मौजूदगी को मुस्तहकम बनाने के लिए भारत के मुतनव्वे सियाती सलाहियत उजागर हो सकेगी। सरकार ने खिलौनों के शोबे को तकवीत पहुंचाने और खिलौनों के आलमी मार्केट में 2032 तक भारत की हिस्सेदारी 5% तक पहुंचाने में मुआवनत के लिए एक टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान किया है। कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में सनअत और दाखिली तजारत के फरोग के महकमे के जेर एहतमाम खिलौनों के शोबों के बारे में एक मीटिंग से खिताब करते हुए यह ऐलान किया। कॉमर्स और सनअतों की वजारत ने कहा है कि यह टास्क फोर्स आलमी वैल्यू चेन के साथ मुल्क की खिलौनों की सनअत को मरबूत करने, मैन्युफैक्चरिंग सलाहियत को मुस्तहकम बनाने और कारोबार करने में सहूलत पैदा करने पर तवज्जो मरकूज करेगी। इस मौके पर जनाब पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की खिलौनों की सनअत की तरक्की से विकसित भारत के मकसद की मुल्क की पेशरफ्त की अक्कासी होती है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बीजिंग में चीन के नायब वजीर खारजा हुआ चुनिंग से मुलाकात की और बामी तालुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लिया। जनाब मिश्री ने इस नजरिए को आगे बढ़ाने के तौर तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया कि भारत और चीन साझेदार हैं और तजारती और इकतसादी राबतों में बामी तौर पर मुफीद नतीजों के जरिए एक दूसरे के लिए मौके दस्तयाब करा सकते हैं। चीन में भारतीय सफारतखाने के मुताबिक दोनों अहदेदारों ने भारत चीन सरहदी इलाकों में अमन इस्तेकाम बरकरार रखने की अहमियत को तस्लीम किया। इससे कबल जनाब मिश्री ने बीजिंग में चीन की पीपुल्स सियासी सलाहकार कॉन्फ्रेंस के 14वीं कौमी कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हांग लियांग के साथ अपनी मीटिंग के दौरान सियासी और अवाम से अवाम के राबतों की सतह पर भारत और चीन के दरमियान बामी तबादलों को वसअत देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग में चीन में भारत के सफीर विक्रम दुराई स्वामी भी मौजूद थे। उत्तराखंड में मौसमियात के महकमे ने आज रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर वार्निंग जारी की है। हमारे नामा निगार ने बताया है कि रियासत में कई मकामात पर कल रात से लगातार बारिश होने की वजह से सड़क रास्ता बंद हो गया है।

0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बनी नौ इंसान की बहबूद फितरत को महफूज रखने और इसका ख्याल रखने में पिना है। एक संस्कृत श्लोक शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क की रवायत भी सभी को इंसाफ के रास्ते पर चलने की तरगीब देती है। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज पेरू के यौम आज़ादी के मौके पर वहां के हुकूमत और आवाम को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत पेरू के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने का ख्वाहिशमंद है। वज़ारत ख़ारिजा ने तजारती जहाज एमवी ओमोर्फी पर हमले के बाद कल भारत में यूक्रेन के सफीर डॉक्टर अलेक्जेंडर पोलोशोक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय शहरी हलाक हो गया। इस वाकये पर उन्हें अपनी शदीद तशवीश से आगाह करते हुए वजारत ने तजारती जहाजों पर इस तरह के हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनकर ने ग्लासगो में 9.81 मीटर की सीजन की बेहतरीन कारकर्दगी के साथ खवातीन शॉर्ट पुट F57 मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। आखिर में खास खास करने एक बार फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई शोबे में भारत के फरोग पाते हुए प्राइवेट इको निज़ाम की सताइश की है। वज़ीर आज़म ने विक्रम 1 की कामयाबी के तनाजुर में स्काई रूट एयरो स्पेस के बानी एहलकारों से मुलाकात की। बिहार और असम की सरकारों ने नीट मामले पर एहतजाज करने वाले अफराद के खिलाफ केस वापस लेने और मुख्तलिफ इल्जाम में गिरफ्तार किए गए अफराद को रिहा करने का ऐलान किया है। एनडीए पार्लियामानी पार्टी आज नई दिल्ली में अपनी हफ्तावार मंगल मिलन मीटिंग का एहतमाम करेगी। सियाहत की वजारत ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत आलमी सतह पर भारत को तरजीह सियाहती मुल्क के तौर पर फरोग देने की खातिर एयर इंडिया के साथ मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप हमारी नशरियात सुन रहे हैं। अब पेश खदमत है अखबारी जरिए का प्रोग्राम शम्मी फरोजा।
2: कुछ लोग ताकत व कुव्वत, जाह व जलाल, दौलत व सरवत और शान व शौकत को बड़ा और अजीम होने की अलामत समझते हैं। हालांकि बड़ा और अजीम होना जिस्म जुस्से और जाहिरी वजूद के एतबार से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक अजमत किरदार से है। इंसान खुद अजीम नहीं होता, बल्कि उसका किरदार अजीम होता है। कोई इंसान जिस्म से बड़ा नहीं माना जाता, बल्कि उसके बेहतरीन अखलाक, उसके औसाफ हमीदा, उसकी इंसानों के तई हमदर्दी, उसकी इंसानियत नवाजी और उसकी फेज रसानी उसे बड़ा बनाती है। ये दुनिया कभी भी ऐसे अजीम और बड़े लोगों से खाली नहीं रही जिन्होंने अपनी सखावत, दरियादिली, इंसान दोस्ती, गुनागुन फजाइल व कमालात, नीज इल्मी, अदबी, सियासी, समाजी और मुआशरती खिदमात से दुनिया को फैजियाब किया। अगर कोई शख्स मालदार है, उसके पास दौलत और सरवत के अंबार हैं, असबाब व वसाइल की फरावानी है, लेकिन वो बखील है, कंजूस है, उसका माल और दौलत जरूरतमंदों के काम नहीं आता, वो खिदमत खल्क और रफाही कामों से आरी है, तो दुनिया उसे पैसे वाला तो कहती है, लेकिन कोई उसे बड़ा या अजीम नहीं कहता। इसी तरह अगर कोई शख्स बड़ा ताकतवर है, बहुत बड़ा पहलवान है, बहुत बहादुर है, लेकिन उसका फौलादी जिस्म लोगों के काम नहीं आता, तो लोग उसे बहुत बड़ा पहलवान तो कहते हैं, लेकिन उसे अजीम और बड़ा नहीं कहते। इसी तरह अगर कोई बादशाह या हाकिम है, जिसकी सल्तनत बहुत वसी है, जिसके रौब दबदबे से दुनिया कांपती है, लेकिन वो बादशाह या हाकिम जालिम है, इंसाफ परवर नहीं है, अपनी रियाया का ख्याल नहीं रखता, कमजोरों, लाचारों, गरीबों, मोहताजों, यतीमों और बेवाओं की खबरगीरी नहीं करता, तो दुनिया उसे बादशाह तो कहती है, लेकिन कोई उसे बड़ा या अजीम नहीं कहता। ऐसे लोग वक्ती

0: इस गजल के साथ ही आज का हुस्न गजल प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है पूर्वोत्तर डायरी।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूँ कमल कुमार प्रजापति।
3: खोलते हैं और पूर्वोत्तर राज्य के एक खास राज्य की हम सैर पर आपको लिए चलते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं सिक्किम राज्य के बारे में। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में बसा एक समृद्ध संस्कृति और विविधता वाला राज्य है। यहाँ की संस्कृति, परंपराएं, विविधता और पर्यटन का आकर्षण पर्यटकों को अपनी ओर बरबस खींच लेता है। आइए ले चलते हैं आपको

समाज अलग अलग समुदायों, धर्मों और परंपराओं का संगम है। यहाँ मुख्य रूप से लेप्चा, भूटिया और नेपाली समुदाय निवास करते हैं, जो सदियों से अपने सांस्कृतिक धरोहर को सजोए हुए हैं। लेप्चा समुदाय, जिन्हें राज्य का मूल निवासी माना जाता है, कीर्ति पूजक रहे हैं। भूटिया समुदाय तिब्बती मूल के हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जबकि नेपाली समुदाय में हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के अनुयायी शामिल हैं। सिक्किम में मनाए जाने वाले त्योहार राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं। लोसार जो तिब्बती नववर्ष है, लुसोंग, सागा दावा, फांग लैप्सोल, दशैन और तिहाड़ दिवाली यहाँ के दूसरे प्रमुख त्योहार है। इन उत्सवों के दौरान पारंपरिक नृत्य, संगीत और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं, जो राज्य की सांस्कृतिक विविधता को प्रस्तुत करते हैं। सिक्किम में नेपाली, भूटिया, लेप्चा, लिम्बू, हिंदी और अंग्रेजी प्रमुख भाषाएं हैं। नेपाली भाषा यहाँ की सबसे आम भाषा है, जबकि अंग्रेजी और हिंदी भी व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है। इसके अलावा तिब्बती, शेरपा और अन्य स्थानीय भाषाएं भी प्रचलित हैं, जो राज्य की भाषाई विविधता को दर्शाती हैं। इस राज्य की हस्तशिल्प परंपरा समृद्ध और विविधताओं से भरी है। यहाँ के कारीगर ऊनी कालीन, चौकसी टेबल, थंका चित्रकला और बांस बेत के उत्पादों के निर्माण में निपुण हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थित कुटीर उद्योग संस्थान इन हस्तशिल्प वस्तुओं के उत्पादन और इन्हें प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस राज्य का भोजन भी पारंपरिक है, जो नेपाली, तिब्बती और भूटानी व्यंजनों का मिश्रण है। यहाँ के प्रमुख व्यंजनों में मोमो, थुक्पा, गुंडक, सिंकी, बांस शूट और कलित सोयाबीन से बने व्यंजन शामिल है। चावल यहाँ का मुख्य भोजन है और स्थानीय लोग तुंगबा, जो कि बाजरा से बना एक पेय होता है, उसका भी भोजन में इस्तेमाल करते हैं। सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहाँ हम कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों की चर्चा जरूर करना चाहेंगे। गंगटोक, जो सिक्किम की राजधानी है, 5,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से कंचनजंगा का शानदार दृश्य देखा जा सकता है। सोमगो झील गंगटोक से 38 किलोमीटर दूर स्थित है। 12,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये झील अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। पूर्वी सिक्किम में स्थित अरितार इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ खामचेंदोंगा का लुभावना दृश्य देखा जा सकता है। नाथुला दर्रा, भारत चीन सीमा पर स्थित नाथुला दर्रा ऐतिहासिक सिल्क रूट का हिस्सा है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। थुमथांग घाटी फूलों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। ये स्थान बसंत ऋतु में रंग बिरंगे फूलों से भर जाता है। सिक्किम की यात्रा के लिए मार्च से जून और सितंबर से दिसंबर का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना होता है और पर्यटक विभिन्न गतिविधियों का आनंद भी ले सकते हैं। सर्दियों में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए दिसंबर से फरवरी का समय भी उपयुक्त है। सिक्किम राज्य अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें कई दुर्लभ प्रजातियाँ भी शामिल हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, राज्य की जैव विविधता का प्रमुख केंद्र है। तो यदि आप सिक्किम की यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो इस समृद्ध राज्य को अपनी पर्यटन सूची में जरूर शामिल करें। पूर्वोत्तर डायरी के लिए विशाल शर्मा। हमारी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया, अपने प्राण निछावर किए। पूर्वोत्तर भारत में भी ऐसी महान विभूतियां हुई हैं, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है। ऐसे ही एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व है रानी गाइडेनल्यू। रानी गाइडेनल्यू पूर्वोत्तर भारत की वो प्रेरक विभूति है, जिन्होंने एक छोटी सी आयु में ही ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लोहा लिया और पूर्वोत्तर भारत की जनजातीय संस्कृति की रक्षा की, पूर्वोत्तर भारत की संप्रभुता की रक्षा की और स्वतंत्रता संग्राम में
बड़े सुनहरे अक्षरों में उनका नाम आज लिखा जाता है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी सामाजिक कार्यों में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। समाज और देश की सेवा में उनके इस अतुलनीय योगदान से उन्हें आज हम एक बहुत बड़ी प्रेरणा के तौर पर याद करते हैं। तो आइए रानी गाइडिनलियो के व्यक्तित्व पर एक खास रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं और इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आप तक ये भी बात पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरह से पूर्वोत्तर भारत उन महान विभूतियों से सुशोभित है जिन्होंने देश सेवा राष्ट्र सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए ये विशेष रिपोर्ट सुनते हैं। भारत की स्वतंत्रता संग्राम की लंबी यात्रा में असंख्य वीरों और वीरांगनाओं ने अपना जीवन देश के नाम समर्पित कर दिया। पूर्वोत्तर की भूमि भी त्याग और बलिदान की गाथा से भरी पड़ी है। यह क्षेत्र न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है बल्कि यहाँ के लोगों में देशभक्ति की गहरी भावना हमेशा से रही है। इन्हीं में से एक थी रानी गाइडिनलियो जिन्होंने अपने साहस, नेतृत्व और अटूट विश्वास से

जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में हुआ था। वे ज़ेलियांगरोंग जनजाति से थी जो नागालैंड, मणिपुर और असम के कुछ हिस्सों में निवास करती है। बचपन से ही उनमें अद्भुत जिज्ञासा, तेज बुद्धि और नेतृत्व के गुण थे। उन्होंने अपने समुदाय के धार्मिक और सामाजिक सुधारक जादोनांग से प्रेरणा ली। जादोनांग उस समय ब्रिटिश शासन के विरोध में एक आंदोलन चला रहे थे। इसका उद्देश्य था

1946 में जब ब्रिटिश सरकार ने जादोनान को देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दी तो मात्र 16 वर्ष की आयु में कैदियों ने उस अद्भुत आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने क्षेत्र के युवाओं और ग्रामीणों को संगठित किया और हिरेका आंदोलन की अगुवाई की। इस आंदोलन का मूल उद्देश्य था विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष और अपने समुदाय को आत्मनिर्भर, एकजुट और जागरूक बनाना। कैदियों ने कहा था, हम अपने पर्वतों और नदियों की रक्षा करेंगे क्योंकि यही हमारी पहचान है। उनके नेतृत्व में पहाड़ी इलाकों में कई गांवों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने छापामार शैली में काम किया, ब्रिटिश पुलिस चौकियों पर हमले किए और लोगों को स्वतंत्रता के लिए संगठित किया। उनकी लोकप्रियता इतनी बड़ी कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें खतरनाक महिला घोषित किया और उनके सिर पर इनाम रखा।

रानी गाइडिंग को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय वे केवल 17 वर्ष की थी। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये नागालैंड, गुवाहाटी और फिर आइजोल की जेलों में रखी गई। कारागार की कठिन परिस्थितियों में भी उनका मनोबल कभी नहीं टूटा। उन्होंने अपने साथियों को संदेश भेजा कि स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखनी चाहिए। महात्मा गांधी ने रानी गाइडिंग के साहस और नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए उन्हें भारत की बेटी कहा था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि दी थी। यही कारण है कि वे बाद में रानी गाइडिंग के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब वे रिहा की गई। उस समय उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता केवल दिल्ली या मुंबई तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे हर गांव और हर पहाड़ी तक पहुंचना चाहिए। अपने जीवन के शेष वर्ष अपने समाज के उत्थान में लगाए।

समान रूप से महत्वपूर्ण है। रानी दादिल्लू का जीवन हमें ये सिखाता है कि स्वतंत्रता केवल मैदानों में लड़ी गई लड़ाई का नाम नहीं, बल्कि उन दूरस्थ पहाड़ियों में भी लड़ी गई थी जहां लोग अपने विश्वास, अपनी संस्कृति और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। वे पूर्वोत्तर की महिलाओं के लिए एक आदर्श बन गई। उन्होंने ये साबित किया कि नारी शक्ति किसी भी परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए आगे आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत में ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं जिन्होंने इतिहास में अमर स्थान पाया। असम की कनकलता बरुआ ने तिरंगा थामे गोली खाई। मणिपुर की यशमना पारंबुला ने अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन चलाया। नागालैंड की जादोनांग ने विदेशी शासन को ललकारा और अरुणाचल प्रदेश के मोमिन राय जैसे योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। यह क्षेत्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की उस अदृश्य परंतु सशक्त धारा का प्रतीक है जिसने पूरे देश में आत्मबल जगाया। रानी दादिल्लू का निधन 17 फरवरी 1993 को हुआ। वे लगभग 78 वर्ष की थी। भारत सरकार ने उनके योगदान को सम्मानित करते हुए 1996 में उनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया। मणिपुर और नागालैंड में उनके नाम से कई स्मारक और संग्रहालय स्थापित किए गए हैं। स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं तब हमें ये याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता केवल कुछ महानगरों की देन नहीं बल्कि उन पहाड़ों, वादियों और गांवों की भी देन है जहां रानी दादिल्लू जैसी वीरांगनाओं ने अपने जीवन की आहुति दी।

0: त्रिपुरा के बारे में विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि त्रिपुरा हमारे देश का किस तरह से एक अभिन्न राज्य है और यहाँ की संस्कृति, परंपरा, कला, खान पान और यहाँ की जीवन शैली किस तरह की है। तो आइए सुनते हैं त्रिपुरा के बारे में ये खास विवरण।
1: भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा सबसे छोटा राज्य अपनी अनूठी सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। ये राज्य विविधता और परंपराओं का एक ऐसा मेल है जो हर किसी को आकर्षित करता है। त्रिपुरा का नाम संस्कृत के त्रिपुर शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है तीन शहरों का राज्य। ये राज्य कभी त्रिपुरी राजवंश का हिस्सा था जिन्होंने लगभग 500 वर्षों तक यहाँ शासन किया। सन 1949 में त्रिपुरा भारत का हिस्सा बना और तब से ये अपनी विशिष्ट पहचान बनाए।

0: पहचान यहाँ की आदिवासी जनजातियों से भी जुड़ी है। यहाँ कुल 19 आदिवासी जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनमें चिपनी, रियांग, जामतिया और चकमा प्रमुख हैं। प्रत्येक जनजाति की अपनी भाषा, परंपरा, पोशाक और जीवन शैली है, जो राज्य को एक सांस्कृतिक रंगमंच बनाती है। इन जनजातियों के त्योहार, नृत्य और संगीत त्रिपुरा की संस्कृति का अभिन्न अंग है। त्रिपुरा की कला और हस्तशिल्प भारत भर में अपनी अनूठी शैली और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। बांस और बेंत से बने उत्पाद जैसे टोकरियाँ, फर्नीचर और सजावट का सामान त्रिपुरा की शिल्प कला के अनमोल धरोहर है। यहाँ के कारीगर अपनी कला में माहिर हैं और हर वस्तु को हाथ से बनाते हैं, जो इसे खास बनाता है। त्रिपुरा का हथकरघा उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ की रेशमी और सूती साड़ियाँ, खासकर रिसा और रिगनाई, न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लोकप्रिय हैं। त्रिपुरा के लोक संगीत और नृत्य यहाँ की आत्मा है। यहाँ का होजागिरी नृत्य रियांग जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें वे मिट्टी के बर्तन और दिए लेकर अद्भुत संतुलन बनाते हुए नृत्य करती हैं। ये नृत्य फसल कटाई के बाद खुशी और उत्सव के अवसर पर किया जाता है। गौरिया नृत्य भी त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। इन नृत्यों में दिखने वाली ऊर्जा और जीवंतता त्रिपुरा की संस्कृति का प्रतिबिंब है। त्रिपुरा का ऐतिहासिक महत्व इसकी वास्तुकला और स्मारकों में भी झलकता है। जयंत महल, जो अगरतला में स्थित है, त्रिपुरा के राजाओं का शाही निवास था। इस महल की वास्तुकला, बगीचे और भव्यता इसे त्रिपुरा का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाते हैं।
1: पूर्व भारत, जिसे हम भारत का रत्न भी कह सकते हैं, न केवल अपनी संस्कृति, परंपराओं और भाषाई विविधताओं के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ के लोग खेलों के क्षेत्र में भी भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। यहाँ की मिट्टी में ऐसी सादगी और कठोरता है, जो खिलाड़ियों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है। यहाँ के पारंपरिक खेल आज भी गाँव कस्बों में जीवित है, और वहीं से निकलते हैं ऐसे खिलाड़ी जो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का परचम लहराते हैं। उत्तर भारत के 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में विविध पारंपरिक खेल देखने को मिलते हैं, जो स्थानीय संस्कृति, त्योहारों और जीवन शैली से गहराई से जुड़े हैं। असम में पारंपरिक खेलों का प्रमुख उदाहरण है दोंधी बियो, जो दो टीमों के बीच खेले जाने वाला एक तेज गति वाला खेल है। वहीं कबड्डी और गिल्ली डंडा जैसे खेल ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं। मणिपुर का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक खेल है सगोल कांगजी, जिसे आधुनिक पोलो का प्रारंभिक रूप माना जाता है। यहाँ के लोग सदियों से इस घुड़सवारी खेल को खेलते आए हैं। इसी राज्य से पोलो का अंतर्राष्ट्रीय सफर शुरू हुआ। थांगता और सरित सरक मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट्स हैं, जिनमें शारीरिक क्षमता, लयबद्धता और मानसिक संतुलन की जरूरत होती है। रग्बी लगती मणिपुर का एक पारंपरिक खेल है, जो रग्बी जैसा होता है, लेकिन इसमें तेल से लिप्त नारियल का उपयोग गेंद की तरह किया जाता है। ये खेल खासकर त्योहारों पर खेला जाता है और इसके पीछे धार्मिक महत्व भी है। मेघालय में जट्रा और वाई कुपर जैसे पारंपरिक खेल देखे जाते हैं, जो पारंपरिक समुदायों के बीच आपसी सहयोग

और संतुलन को बढ़ावा देते हैं। यहाँ आर्चरी यानी तीरंदाजी बहुत लोकप्रिय है, विशेषकर तेलशिला नामक खेल जिसमें दैनिक जीवन की कुशलता झलकती है। मिजोरम में इंटर विलेज फुटबॉल टूर्नामेंट आज भी पारंपरिक गौरव का विषय रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किट्टल और सुपेक जैसे खेल खेले जाते हैं जिनमें शरीर के लचीलेपन और तीव्रता की परीक्षा होती है। नागालैंड में खो खो और सीसी जैसे पारंपरिक खेल युवाओं को न केवल शारीरिक रूप से दक्ष बनाते हैं बल्कि सामुदायिक भावना भी सिखाते हैं। नागा रेसलिंग यहाँ का एक अत्यंत लोकप्रिय खेल है जो ताकत, संतुलन और तकनीक पर आधारित होता है। अरुणाचल प्रदेश में एपटानी जनजाति का डीमो खेल और मिश्मी जनजाति का कट्टा फाइटिंग आज भी पारंपरिक मेलों में दिखते हैं। यहाँ के बोंग गेम्स और लोकल एथलेटिक्स स्पर्धाएं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में खेले जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन की कमी के बावजूद खिलाड़ी पूरी ऊर्जा के साथ खेलते हैं। त्रिपुरा में मुकना और थांगुट जैसे कुश्ती आधारित खेल स्थानीय युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। बम्बा और नटुआ जैसे खेल भी विभिन्न जनजातियों में खेले जाते हैं। सिक्किम में याक रेसिंग और थोड़गे जैसे खेल पारंपरिक त्योहारों का हिस्सा है। सिक्किम की ऊंचाई और कठोर मौसम के बीच ये खेल खिलाड़ियों की मानसिक और शारीरिक क्षमता की परीक्षा लेते हैं। ये पारंपरिक खेल न केवल सांस्कृतिक पहचान के वाहक हैं, बल्कि खेल भावना, अनुशासन और परिश्रम के बीज भी बोते हैं। यही कारण है कि आज इन राज्यों से निकलकर कई युवा खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर कर रहे हैं। उत्तर पूर्व भारत के खिलाड़ी अब किसी भी खेल मंच पर केवल भाग लेने नहीं जाते बल्कि पदक जीत कर लौटते हैं। इस क्षेत्र की मेहनती और अनुशासित जीवन शैली ने यहाँ के खिलाड़ियों में एक विशेष मानसिक दृढ़ता पैदा की है जो खेलों में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उत्तर पूर्वी भारत के युवाओं में खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनका प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार की खेलो इंडिया योजना की, जिसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य स्कूली और कॉलेज स्तर पर खिलाड़ियों की पहचान करना और उन्हें प्रशिक्षण, पोषण, कोचिंग और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत मणिपुर, असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में खेलो इंडिया केंद्र खोले गए हैं। अकेले मणिपुर में 2023 तक 30 से अधिक खेलो इंडिया केंद्र खोले जा चुके हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत कई उत्तर पूर्वी खिलाड़ियों को सीधे आर्थिक सहायता मिल रही है। मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन और जेरेमी लाल विलुंगा जैसे खिलाड़ी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। क्षेत्रीय युवा संसाधन केंद्र के माध्यम से भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण शिविर और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। मणिपुर सरकार ने राज्य खेल नीति 2020 को लागू किया है, जिसके अंतर्गत खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार, सरकारी नौकरी और छात्रवृत्ति दी जाती है। मिजोरम सरकार ने स्टेट स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू की है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में बहुउद्देश्य इंडोर स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। मिजोरम में फुटबॉल के लिए मिजोरम प्रीमियर लीग शुरू की गई है। असम सरकार ने 2023 में मिशन टैलेंट हंट की शुरुआत की थी। गुवाहाटी में सरू सजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एथलेटिक्स, तैराकी, शूटिंग और फुटबॉल के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है। नागालैंड सरकार ने यूथ एम्पावरमेंट थ्रू स्पोर्ट्स कार्यक्रम चलाया है। कोहिमा में नागालैंड ओलंपिक्स का आयोजन अब नियमित रूप से हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान लागू किया है। वहीं त्रिपुरा सरकार की खेलो त्रिपुरा पहल और सिक्किम सरकार के याक गेम्स फेस्टिवल पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। पूर्वोत्तर भारत में भारतीय खेल प्राधिकरण के कई क्षेत्रीय केंद्र भी कार्यरत हैं। इम्फाल और गुवाहाटी के केंद्र वेटलिफ्टिंग, मुक्केबाजी और फुटबॉल के लिए प्रमुख माने जाते हैं। जहां एक ओर संसाधन सीमित है, वहीं दूसरी ओर लगन असीमित है। यही कारण है कि भारत की खेल नीति में अब उत्तर पूर्व एक केंद्रीय स्थान ले चुका है। पूर्वोत्तर डायरी डेस्क के लिए सरफिरोजी।

0: आज के कार्यक्रम का अंत यहीं तक। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। अगले सप्ताह पूर्वोत्तर भारत की कुछ और झलकियों के साथ हम आपके बीच होंगे पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के एक नए अंक में। हमें अनुमति दें, नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम पूर्वोत्तर डायरी। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। पेशा खिदमत है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

0: लोफर फिल्म का नगमा अभी आपने सुना, मोहम्मद रफीक का गाया हुआ। अब सुनिए लता मंगेशकर को, फिल्म है चुपके चुपके।
1: आपके सजन सावन में

अभिनेत्री फिल्म का नगमा भी अपने लता मंगेशकर की आवाज में सुना। इसके साथ ही आज का मेरी पसंद का ये शुमारा यहीं खत्म होता है। ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। अब पेश खिदमत है जनाब राजेंद्र पटवारी का तहरीर करदा एक फीचर, उनवान है हब्बा खातून।

0: परेशान थे। किसी नेक सीनियर बुजुर्ग के मशवरे अबू याथर अपनी बीवी के हमराह चरारे शरीफ जाकर हजरत शेख नूरुद्दीन उर्फ मुंदुशी के मजार पर हाजिरी देने पहुंचे।
1: मजार पर अकीदत की चादर चढ़ाने के बाद दोनों ने सजदे करते हुए औलाद के लिए दुआ मांगी। फिर दोनों ने मिलकर मन्नत का धागा बांधा।
0: ज़ियारत गाह से बाहर आकर चलते चलते वो एक ऐसे मलंग के पास पहुंच जाते हैं जो दूसरों से अलग नजर आ रहा था। उस फरिश्ता सीरत मलंग के पास पहुंचकर उनके कदम खुद ब खुद रुक गए और सिर अकीदत से उसके कदमों में झुक गए।

0: अल्लाह सुन ली, अल्लाह ने सुन ली, सुन ली अल्लाह ने सुन ली, अल्लाह अल्लाह सर के ऊपर जब चांद होगा मुराद पूरी होगी, पूरी होगी मुराद। अल्लाह अल्लाह अल्लाह
1: साल अदिर राठर की बीवी ने एक चांद जैसी लड़की को उस वक्त जन्म दिया जब आसमान में पूरा चांद जगमगा रहा था।
2: नौजायदा बच्चे का नाम जून रखा गया। यही जून जवान होकर हब्बा खातून के नाम से मशहूर हुई।
1: काफी नाजो नेमतों में होती रही।
2: उम्र के साथ साथ उसकी दिलचस्पी मौसीकी में बढ़ती रही। वो अक्सर आस पड़ोस के खेतों में अकेली जाकर घंटों खेतों में काम करने वाली औरतों और मर्दों के गाए कश्मीरी लोकगीत सुनने में मसरूफ और मसरूर रहती और उन्हीं गीतों को खुद भी गुनगुनाती रहती थी।
1: उसकी उम्दा जहानत पर फख्र करते हुए घर वालों ने उसे उतनी तालीम भी दिलाई जितनी उस दौर में किसी लड़की के लिए मुमकिन हो सकती थी।
2: बालिग होने पर वो एक हसीन और जमील दोशीदा बन गई जिसको देखकर कोई भी अपना दिल उसके कदमों पर निसार करने को तैयार हो जाता। नजदीक और दूर के कई दिल फेंक उसके गिर्द तवाफ करने लगे थे।

खुद हब्बा खातून किसी और के दामे मोहब्बत में गिरफ्तार थी, वो उसी से वसल के ख्वाब देख रही थी और वालदेन ने उसकी शादी कहीं और रचा दी। उसका मलाल उसे जिंदगी भर सताता रहा।

कहते हैं कि 70 साल तक गोशा नशीन की जिंदगी गुजारने के बाद हब्बा खातून लगभग 55 साल की उम्र में उसी मुकाम पर वफात पा गई जहां उसने अपने रहने के लिए झोपड़ी और इबादत के लिए एक मस्जिद तामीर करवाई थी। वो मस्जिद आज भी वही अतवाजन में मौजूद है और मस्जिद हब्बा खातून के नाम से

सलाहकार कॉन्फ्रेंस की 14वीं कौमी कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल होंग लियांग के साथ अपनी मीटिंग के दौरान सियासी और अवाम से अवाम के राब्तों की सतह पर भारत और चीन के दरमियान बाहमी तबादलों को वसत देने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। इस मीटिंग में चीन में भारत के सफीर विक्रम दुराय स्वामी भी मौजूद थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान पुरतशद्दुद झड़पों में एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बताया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हामियों की मुबैना फायरिंग में उसका एक कारकुन मुख्तार यूनुस मारा गया जबकि दो जख्मी हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूनुस की मौत पर रंजोगम का इजहार किया है। वहां ये बल्दियाती इंतखाबात एक ही दिन में कराए जाने थे लेकिन अब ये आज से लेकर अगले महीने की 10 तारीख तक 3 मरहलों में कराए जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दोनों ने एक दूसरे पर कई चुनाव हलकों में चुनाव में धांधली का इल्जाम आयद किया है। हरीफ पार्टी हामियों के दरमियान झड़पों की वजह से कुछ पोलिंग मराकज पर कुछ देर के लिए पोलिंग रोकना पड़ी। इधर साबिक वजीर आजम इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी चुनाव का बायकॉट कर रही है जबकि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इमरान खान की पार्टी ने दावा किया है कि गुज़श्ता महीने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहिरों के तनाजुर में पुरतशद्दुद झड़पों में 100 से ज्यादा अफराद मारे गए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। खत्म हफ्ता पर अमरीका और ईरान की जानिब से फौजी हमले रोके जाने के तनाजुर में खाम तेल की आलमी कीमतों में तकरीबन 7% की गिरावट आई है। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 7.2% घटकर $89.74 फी बैरल पर आ गई जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत 6.6% की गिरावट के साथ $83.36 फी बैरल पर आ गई। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज पेरू के योम आजादी के मौके पर वहां की हुकूमत और आवाम को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत पेरू के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने का ख्वाहिशमंद है। आसाम में सैलाब की सूरत हाल में मजीद बेहतरी आई है और अब मुतासिरा जिलों की तादाद घटकर 6 रह गई है। सरकारी इतलात के मुताबिक शिवसागर, गोलाघाट, चराईदेव, जोरहाट, नागांव और कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले अब भी सैलाब से मुतासिर हैं। 21 रेवेन्यू हलकों के तहत आने वाले 631 गांवों में मजमूई तौर पर 4,45,000 से ज्यादा अफराद पर सैलाब का असर पड़ा है। इधर हुक्काम मुतासिर इलाकों में राहत और बहाली के इकदाम कर रहे हैं। रियासत के बेशतर हिस्सों में सैलाब का पानी उतर रहा है। उत्तराखंड में मौसमियात के महकमे ने आज रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर वार्निंग जारी की है। हमारे नामा निगार ने बताया है कि रियासत में कई मकामात पर कल रात से लगातार बारिश होने की वजह से सड़क रास्ता बंद हो गया है। उत्तराखंड में देहरादून और कई दीगर हिस्सों में कल रात से लगातार बारिश हो रही है। देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में सभी स्कूल और आंगनबाड़ी मराकज आज बंद हैं। लगातार बारिश होने से पहाड़ी खित्तों में दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। मौसमियात महकमे के मुताबिक रियासत में अगले चंद रोज तक मानसून के सरगर्म रहने का इम्कान है। बेशतर इलाकों में हल्की से लेकर औसत बारिश होने जबकि कई मकामात पर तेज बारिश होने की भी पेशगोई की गई है। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने आज छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और साहिली कर्नाटक के हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। दौलत मुश्तरक खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो में 9.81 मीटर की सीजन की बेहतरीन कारकर्दगी के साथ खवातीन शॉर्ट पुटर F57 मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इस कामयाबी के साथ ही शर्मिला दौलत मुश्तरक खेलों में सोने का तमगा हासिल करने वाली पहली पैरा एथलीट बन गई हैं। सर्वे जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दौलत मुश्तरक खेलों में शर्मिला धनखड़ के सोने का तमगा जीतने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खलाई शोबे में भारत के फरोग पाते हुए प्राइवेट इको निजाम की सताइश की है।

अभिलाषा फिल्म का नगमा आपने मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में सुना। अब सुनिए लता मंगेशकर और मनहर को फिल्म है

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में सीता और गीता फिल्म का नगमा अभी आप सुन रहे थे। प्रोग्राम की अगली पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। फिल्म का नाम है धूल का फूल।

0: लता मंगेशकर के साथ आपने नितिन मुकेश को सुना फिल्म थी बेमिसाल। फिल्मी दो गानों का ये प्रोग्राम अभी जारी रहेगा। वक्त हो गया है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है अमारू।
1: हिंदुस्तान की कदीम तहजीब का तस्करा किया जाए तो इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने हजारों बरस पुराने तहजीबी विरासत पर फख्र करते हुए नायबी परख्त होने का सबूत देते हैं। अभी हिंदुस्तान की तहजीबी अजमत का अंदाजा करते हुए हमें ज़माने हाल की उस दुनिया का भी एहसास रहता है जिसे इल्म फन की बेपनाह तरक्की का जमाना कहा जाता है। लेकिन हजारों बरस पहले अगर हमें इल्म फन की ऐसी रवायात का पता चले जिनकी मुमासलत आज के अहद में मौजूद हो तो हम जरूर कह सकते हैं कि हमारा माजी और उसकी बेहतरीन माहिराना खसूसियात हमारे आज के अहद का भी हिस्सा है। संस्कृत के कदीम शायर अमारू का नाम आए तो उसकी शायरी का ख्याल आता है और फिर हजारों बरस पहले तख्लीक का हक अदा करने वाले उस शायर के फन को आज के तनाजुर में देखने की ख्वाहिश होती है। सबसे पहले तो अमारू के अहद की बाबत को सुन लीजिए। दरअसल अमारू की कोई सवाले मौजूद नहीं है। एक आम रवायत यह है कि वो विक्रमाजीत के अहद में हुआ था। विक्रमाजीत का अहद सन 380 ईस्वी से 413 तक का अहद है। चूंकि अमारू के बारे में कोई सवाले ही शहादत मौजूद नहीं है इसलिए अमारू को कदीम हिंदुस्तान के आजमाना वस्ता का शायर कह दिया जाता है। यह वो जमाना था जब दुनिया की किसी दूसरी जुबान में ऐसा बाज़ाब्ता अदब तख्लीक नहीं हुआ था जिसमें इंसानी नफ्सियात की उन खसूसियात को बयान किया गया हो जिनकी तहकीकात नफ्सियात के नए इल्म के जरिए मुमकिन हुई। जमाने के बदलते मौसमों ने अमारू की शायरी को पूरी तरह गुमनामी में छुपाया तो नहीं लेकिन अमारू की तख्लीकात का बड़ा हिस्सा महफूज नहीं है। ताहम हिन्दुस्तानी अदबियात को फख्र है कि अमारू की तकरीबन 100 नज़में आज तक मौजूद हैं और इन्हें हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की इश्किया शायरी में एक खास इम्तियाज हासिल है। अमारू की शायरी ने संस्कृत अदब में पहली बार इस हकीकत को मनवाया कि सिर्फ मोहब्बत ही को शायरी का बुनियादी मौजू बनाकर गुना गुनक में छेड़े जा सकते हैं। मरीज अमारू की शायरी ही से मोहब्बत की गजलिया नज्मों ने बाकायदा बंद की हैत इख्तियार की। एक बंद की महदूद वसत में मोहब्बत के किसी एहसास को मुकम्मल तौर पर बयान करना अमारू की शायरी का मकसद है। लेकिन एहसास की ऐसी नक्काशी कोई आसान काम नहीं है क्योंकि इसमें चंद मुख्तसर लफ्जों और चंद नपे तुले फिक्रों में एक एहसास की शिद्दत और एक जज्बे के तासुर की तर्जुमानी करना होती है।

0: चाहिए कि इस नगमे में हर मात्रा को अलहदा नहीं कर दिया जाता, बल्कि नापतोल के बावजूद उनकी बाहमी आमेजिश इस तौर पर रखी जाती है कि जहन को वही लज्जत हासिल हो जो कई राग से लबरेज धुन को सुनने से होती है। अवारों की नज़में पांच छोटे छोटे हिस्सों में मुनकसिम हैं। पहला हिस्सा मर्द के जज्बात पर मुश्तमिल है, दूसरा औरत के एहसासात पर, तीसरे हिस्से में मर्द और औरत की बातचीत और नोकझोंक है, चौथे में औरत के मुतालिक जज्बात है और पांचवें हिस्से का उन्वान मुशाहदात है। कदीम नकाद आनंद वर्धन की राय में अवारों की नज़में शायरी के अमृत से लबरेज हैं। अवारों का कलाम फनी लिहाज से भी बहुत बुलंद और काबिल तवज्जो है, चुनाचे संस्कृत के तमाम उलमा और कवायदा फनी और लिसानी वजाहतों के लिए अवारों की मिसालें देते हैं। संस्कृत के तखयली और तखलीकी अदब में अवारू एक नई शेरी रवायत का लंबरदार है। अवारू की नज़मों के हिस्से मुशाहदात में से एक नज़म यहाँ मिसाल के तौर पर सुनाई जाती है। आरजू एहसास और बेसब्री से लरसते हुए वो लंबे सफर के बाद अपनी महबूबा के मकान में दाखिल हुआ और उसने देखा कि उसकी सखियां उसे घेरे हुए हैं। उसकी सखियों को अपनी मुलाकात बढ़ाने में एक तीखा मजा आता था, लेकिन उसकी महबूबा उससे भी ज्यादा मशाक थी और ये चिल्लाते हुए ये क्या काट गया, उसने घूंघट से अकेले दिए की लौ को बुझा दिया जो वहां चल रहा था और अंधेरे की वजह से उसकी सखियां रुख्सत लेकर चल दी। अवारों की नज्म का ये नस्ली तर्जुमा है, असल शायरी की खसूसियात तर्जुमे में मुंतकिल नहीं हो सकती, लेकिन इस मुख्तसर सी नज्म से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवारों ने हजारों बरस पहले इंसानों में इश्क की उन नफ्सियात को शनाख्त किया था जिसकी तफसीर में अब तक हजारों सुफात लिखे जाते रहे, लेकिन इंसानी जज्बे के उस लम्हे का हक अदा नहीं हुआ जिसे तख्लीक और शेर का आला तखयल ही बयान कर सकता है। माजी के धुंधलकों में कौम अवारों की शख्सियत एक ऐसे एहसास और तारीख साज फनकार की शख्सियत है जिसने इंसानी एहसास की लतीफ तरीन लहरों को बिल्कुल उसी तरह महफूज करने की कोशिश की जिसे आज की साइंसी तरक्यात का जमाना भी पूरी तरह बयान करने से कासिर है।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम तारीख साज। आज का मौजू था अमारू, तहरीर थी महमूद हाशमी की और रावी थे अब्दुल जब्बार। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर जारी है उर्दू सर्विस की नशरियात।

哼，闹着呀，并不是一同行，哼，留下个男朋友。

0: लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम को आपने सुना फिल्म थी मैंने प्यार किया। इसके साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ और अब पेश है प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सख्ती की नई पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व सदस्य और शिक्षाविद प्रोफेसर सुषमा यादव, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
0: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया और ये विधेयक का लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण कानून 2024 में संशोधन करेगा। ये विधेयक का परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक के महत्व और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं शिक्षाविद और यूजीसी की पूर्व सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव। प्रोफेसर यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
2: धन्यवाद और सबको नमस्कार।
0: प्रोफेसर यादव, जो ये विधेयक आज पेश किया गया लोकसभा में, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, इसके महत्व को आप वर्तमान परिदृश्य में कैसे आंकती हैं? किस तरह से हमारे ये पब्लिक एग्जामिनेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने की ओर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है?
2: जी देखिए, एक तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अभी जो हम युवा पीढ़ी को थोड़ा असंतुष्ट, थोड़ा परेशान, एजिटेटेड देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से, और प्रधानमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि सरकार इसको रोकने में पीछे नहीं हटेगी, ये उस आश्वासन की तुरंत पूर्ति है। लेकिन यह संशोधन विधेयक है, सरकार 2024 में भी पहले ये विधेयक ला चुकी है और क्योंकि उसके बाद भी प्रश्न पत्र लीक हुए और एक नहीं अनेक स्थानों पर लीक हुए और उससे बच्चों का विश्वास परीक्षाओं से लगभग उठने लगा था, इसलिए यह विधेयक संशोधन आया है और विशेष तौर पर यह सार्वजनिक और प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाले कदाचार, धोखाधड़ी, अनुचित साधनों के प्रयोग पर प्रभावी रोक लगाने का उद्देश्य रखता है। और परीक्षा प्रणाली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल अगर आप देखें अपने आसपास तो युवा को बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती है, उनकी भी गलती नहीं है अगर वो कहीं असंतुष्ट होते हैं तो, क्योंकि एक तो वो जो आप परीक्षा पास करते हैं अपनी डिग्री के लिए, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक कहीं प्रवेश परीक्षा है, कहीं प्रतियोगी परीक्षा है, और चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे वो सार्वजनिक नौकरियों के क्षेत्र में हो, इसलिए शिक्षाएं महत्वपूर्ण है। तो इस परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाना, निष्पक्षता लाना और सबसे बड़ी बात उसमें विश्वसनीयता लाना, ताकि यह पीढ़ी उन पर विश्वास कर सके, ताकि प्रत्येक प्रतियोगी और अभ्यर्थी को समान अवसर मिल सके, वह इस विधेयक का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
0: जी,
2: साथ ही ये रोक लगाने का भी काम करना चाहता है, नकल पर रोक, प्रश्न पत्र के लीक होने पर रोक, क्योंकि वो बड़ी गंभीर चुनौतियां बन गई हैं इस समय, और उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई, मतलब मुझे तो बहुत ही कड़ी लग रही थी ये कार्रवाई जब मैंने इन प्रावधानों को पढ़ा, क्योंकि बेईमानी करते समय थोड़ा डरे व्यक्ति
0: जी,
2: मैं जब तक आऊं इसमें से उससे अधिक मेरा दंड में लग जाएगा, ये शायद एक भय उनके मन में ये विधेयक लाना चाहता है। और फिर एक इम्पर्सनेशन बहुत बढ़ने लगा है, जो ये हमारी युवा पीढ़ी है आसानी से चीजें प्राप्त भी करना चाहती है, तो मैं नहीं मेरी जगह ये परीक्षा दे ले, विशेष तौर पर दोज कैन अफोर्ड इट, उस पर भी सख्ती से रोक लगाने की बात है और दोनों को सजा देने की भी बात। फिर अब मात्र ये व्यक्तिगत मामला नहीं रह गया है, जब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट आ गए हैं एक प्रकार से ये पूरी इंडस्ट्री बन गई है, तो संगठित शिक्षा कदाचार भी बड़ी समस्या है और बड़ा अपराध भी हो गया है। तो यदि कोई गिरोह या संगठित समूह प्रश्न पत्र लीक कराए, नकल में या परीक्षा में धोखाधड़ी जैसी गतिविधियां आरंभ करे या उनमें शामिल हो जाए

0: का तुरंत निवारण हो, उस संदर्भ में जिस तरह से आपने एक तो आपने जिक्र किया कि जो जेल टर्म्स हैं या जो जुर्माना है उनको काफी हद तक बढ़ाया गया है, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो या इंस्टीट्यूशन हो, हरेक कैटेगरी में उनको बढ़ाया गया है ताकि एक डर हो ऐसा कुछ भी ऑफेंस करने से पहले, जो हमारे सारे लाखों छात्रों को प्रभावित करता है। और दूसरा जो जिस तरह से जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, उसको त्वरित करने की जो बात की गई है, उसको एफिशिएंट बनाने की बात की गई है, उसको आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की बात की गई है और उसमें डे टू डे बेसिस पर, ये नहीं कि दो या तीन हफ्ते बाद की तारीख होगी, डे टू डे बेसिस पर ट्रायल्स, और वो तीन महीने में उन ट्रायल्स को पूरा करना, इस एस्पेक्ट को आप कैसे देखते हैं?
1: देखिए, बिल जो है वही कहता है कि जो कोर्ट्स होंगे वो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में काम करेंगे। डे टू डे हियरिंग ट्रायल्स टारगेटेड टू कंक्लूड, तीन महीने के अंदर वो समाप्त हो जाए चार्जशीट होने के, और एक सेंट्रल स्पेशल टास्क फोर्स की भी बात करता है ताकि हाई स्टेक्स पेपर लीक जो होते हैं या इंटर स्टेट और क्रॉस स्टेट पेपर लीक जो होते हैं अंतर्राज्यीय होंगे, उनको ये देख सके और उन माल प्रैक्टिसेस को देख सके, और साथ ही स्पेशलाइज प्रोसिक्यूटर्स की भी बात करता है, हुआ डेडिकेटेड टू एग्जामिनेशन माल प्रैक्टिस केसेस। और एक और बात भी है, एक नया अपील मैकेनिज्म की भी ये बात करता है, किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सके डिविजन बेंच और हाईकोर्ट में या फिर हायर कोर्ट में विद इन थ्री मंथ्स ऑफ एडमिशन, क्योंकि आप ये माना जाता था जो सिविल केसेस होते हैं भारत में, उन सिविल केसेस में कोई जल्दबाजी करता ही नहीं है
0: जी।
1: और जब तक आप पुलिस को भी संतुष्ट कर लें तो फिर वो और देरी हो जाती है, और आप जानते हैं कि जिस प्रकार की व्यवस्था बनी है उसमें यदि संगठित गिरोह हो तो बड़ी आसान व्यवस्था को भी प्रभावी कर लेते हैं और कुछ नहीं तो डिले तो कर ही सकते हैं। अब इसमें यदि देर होता है तो नेचुरली बच्चों के तो साल जा रहे हैं ना
0: जी,
1: उनका हर साल, उनका हर महीना महत्वपूर्ण है, इस रूप में ये एक बहुत त्वरित न्याय का आश्वासन देने वाला कानून है, विधि है, और संशोधन ऐसे ही किए गए हैं ताकि जो पुरानी हमने देखी थी कहीं कहीं ढील है उस विधि में या कानून, उसको दूर किया जाए और बच्चों को और युवा पीढ़ी को, और मात्र युवा पीढ़ी को नहीं उनके माता पिता को भी, पूरे समाज को भी विश्वास हो कि पेपर लीक की समस्या या नकल रोकने की समस्या कोई छोटी सी समस्या नहीं है, बड़ा अपराध, उसको बड़े अपराध देखा जाए, यह इस विधि का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और इसकी सजा भी बढ़ाई है, देखिए
0: तीन
1: से पांच, पहले वो पांच से दस साल कर दी है, उससे भी अधिक जो फाइन बढ़ाया है वो तो बहुत ही अधिक बढ़ा दिया गया है, यानी डिटरेंस के रूप में, निवारण के निवारक प्रभाव ये पैदा करे, यह इसका उद्देश्य है, और प्रक्रियाओं में देरी भी कम होगी। लेकिन एक बात यहाँ मैं कहना चाहती हूँ, भारत संघीय व्यवस्था है, ये रखा गया है कि स्पेशलाइज्ड प्रोसिक्यूटर्स हों राज्यों

0: में देरी भी कम होगी, लेकिन एक बात यहां मैं कहना चाहती हूं, भारत संघीय व्यवस्था है, ये रखा गया है कि स्पेशलाइज प्रोसिक्यूटर्स हों राज्यों में भी, यूपीज में भी, अपील मैकेनिज्म भी मजबूत हो, और साथ ही साथ सभी राज्य सरकारें भी इस प्रकार की कानून यदि पास करेंगी तो सच में इसका अर्थ युवाओं के लिए और पूरे समाज के लिए और समाज के बाहर में कभी राष्ट्र के लिए बस बन पाएगा।
1: जी बिल्कुल, और जैसे आपने

0: के लिए भी उनको कहा है कि उन्हें आपको 4 साल के बजाय 8 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा पब्लिक एग्जाम कंडक्ट करने से। ये आपको लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर लेवल पर जो है इस तरह की रोकथाम लगाई जाए?
1: जी, इसका मैं स्वागत करती हूँ, क्योंकि अभी जिस प्रकार का विशाल और विस्तृत परीक्षा व्यवस्था हमारी बन गई है, ये पूरी संस्था बन गई है, तो उसमें जो संस्थाएं परीक्षा करवाती हैं वो नेचुरली अपने आप में पर्याप्त नहीं होती, उनको बहुत सारे सेवा प्रदाताओं की आवश्यकता पड़ती है। आपने देखा होगा सीयूईटी में, नीट में, नेट में, सभी में बहुत सारे, इवन फॉर यूपीएससी फॉर दैट मैटर, तो इन सभी में हमें बहुत सारे सेवा प्रदाताओं की आवश्यकता होती है। उसमें प्रिंटिंग, डिजिटल सेवाएं, तकनीकी सहायता, परिवहन, अन्य सेवाएं प्रदान करने वाली बहुत सी एजेंसियां इसमें उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब उनकी मिलीभगत से, उनकी लापरवाही से, उनके लालच से, उनकी ग्रीड से कहीं भी इस सेवा में बाधा आ सकती है, इसलिए उन सेवा प्रदाताओं को भी इसमें उत्तरदायी बनाया गया है और उनके लिए भी निवारक प्रभाव कठोर दंड से पैदा करने का प्रयास किया गया है। नहीं तो ये मान लिया जाता है कि हमारा क्या, बिकॉज ओनली सर्विस नोटिस, और अभी तक उनको कोई सोचता भी नहीं था, इनकी भी जिम्मेदारी की गई है। और एक चीज जो अभी तक मैं भी नहीं कह पाई हूँ, तो साइबर अपराध जो इसमें अब शामिल हो गए हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं, डिजिटल तकनीकों का अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं
0: जी,
1: तो डेटा सुरक्षा, सर्वर सुरक्षा, इंक्रिप्शन, डिजिटल निगरानी, इन जैसे उनके लिए आवश्यकता पड़ गई है, क्योंकि साइबर अपराध मात्र राशि के क्षेत्र में या पैसों के क्षेत्र में नहीं बढ़ रहे हैं। साइबर अपराध जहां हम तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, डिजिटल सेवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, वहां वहां ये बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम डिजिटल सेवाओं की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं एक क्वेश्चन भी यहां देना चाहती हूं कि हमें सरकार ने वादा किया है कि अगली बार से ये कंप्यूटर पर होंगी परीक्षाएं, तो वहां भी हमें डिजिटल सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, इनके विशेष प्रावधान बनाने होंगे, रखने होंगे, इनका ध्यान रखना होगा, क्योंकि मशीन अपने आप में तो कुछ नहीं करती, लेकिन मशीन को यूज करने वाले, मशीन का रख रखाव करने वाले तो व्यक्ति ही होते हैं, संस्थाएं ही होती हैं, तो उन संस्थाओं में और उन व्यक्तियों में भी अंततः इस विधि का, इस कानून का डर हो, भय हो, और साथ साथ इससे भी बड़ी बात, अगर आप थोड़ा और समय दें मुझे, तो इससे भी बड़ी बात कहना चाहती हूँ, ये तो विधि है, ये दंड है, ये अपराध है और उसको रोकने की व्यवस्था है, परंतु इन सबसे बड़ी नैतिकता है। जब तक वो नैतिकता व्यक्तियों और संस्थाओं में नहीं आएगी, तो शिक्षा विद्वान के कारण मैं भी अपराधी महसूस करती हूँ कई बार स्वयं को, क्योंकि जो पीढ़ी निकाली है, और तो ये पीढ़ी हमारे बाद की पीढ़ी है, जो पीढ़ी नहीं है उसमें नैतिकता और शॉर्टकट चुनने की जो एक इच्छा हमेशा बनी रहती है, ये जब तक हम बच्चों में नहीं लाएंगे, और मात्रा में बड़े स्वप्न देखने की इच्छा और उन स्वप्नों को बच्चों के माध्यम से पूरा करने की इच्छा, वह भी बच्चों आकांक्षाएं हैं, वो सपने हैं वो, लेकिन उन सपनों से भी कहीं ना कहीं बच्चों पर भार पड़ता है, और फिर ये सब कर एक ऐसे पर्यावरण का निर्माण करते हैं जहां अपराध होते हैं, पेपर लीक, नकल करना आसान लगता है, इंपर्सनेशन टाइम नहीं लगता, अनैतिक नहीं लगता, और अंततः कोई भी शॉर्टकट मिल जाए, चाहे वो पैसे के माध्यम से मिले, चाहे वो प्रभाव के माध्यम से मिले, हर व्यक्ति उस तरफ चलना चाहता है, तो बच्चों को इनसे भी रोका जाए, माता पिता भी पर बोझ न डालें, मैं समझती हूँ अपराध से मुक्ति अधिक आसानी से मिल सकती है।
0: आपने बहुत ही एक गंभीर बात कही और बहुत ही अहम पहलू है इस पूरे जो प्रकरण है उसका। एक और मैं आपका जो ध्यान जिस तरफ आकर्षित करना चाहूंगी, आज सुबह पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने सभी एमपी से अपील किया था कि जो भी विपक्ष के हो, पक्ष के हो, सब जो डिस्कशन है एग्जाम रिफॉर्म बिल पर उसमें हिस्सा लें, अपनी ओपिनियंस दें, और उनके आधार पर जो है जो व्यवस्था है वो और ज्यादा मजबूत बनेगी, उसमें जो भी अगर हम कुछ और चेंजेस आप सजेस्ट करेंगे तो उनको भी पूरा तरह से कंसिडर किया जाएगा। तो आपको लगता है कि ये एक जिम्मेदारी सारे सांसदों की भी बनती है कि वो इस पर एक मीनिंगफुल डिस्कशन करें विदाउट डिस्ट्रप्शन?
1: जी बिल्कुल बनती है। देखिए, ये राजनीतिक विषय तो हो सकता है
0: जी,
1: लेकिन इस पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट डू पॉलिटिसाइजेशन ऑफ दिस, क्योंकि ये बुनियादी जरूरत है और बुनियादी अधिकार भी है, और उस बुनियादी अधिकार की सुरक्षा और सब तक उसे पहुंचाना सभी सांसदों का, संपूर्ण सरकार का, हमारी पूरी विधायिका का,

0: रहे हैं। सुषमा जी, लोकसभा में आज पेश लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर इस समग्र चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद और सबको नमस्कार एक बार फिर।
2: अभी आप सुन रहे थे लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सख्ती की नई पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व सदस्य और शिक्षाविद प्रोफेसर सुषमा यादव। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात जारी हैं। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल मालिक से आलमी खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई शोबे में भारत के फरोग पाते हुए प्राइवेट इको निजाम की सिफारिश की है। वज़ीर-ए-आज़म ने विक्रम 1 की कामयाबी के तनाजुर में स्काई रूट एरोस्पेस के बानी एहलकारों से मुलाकात की। सियात की वजारत ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत आलमी सतह पर भारत को तरजीही सियाती मुल्क के तौर पर फरोग देने की खातिर एयर इंडिया के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। भारत और चीन ने सरहद पर अमन और इस्तेकाम बरकरार रखने की अहमियत का इरादा किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में बलदियाती इंतखाबात के दौरान पुरतशद्द झड़पों में एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई दीगर जख्मी हुए हैं। और दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनकर ने खवातीन के शॉटपुट मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के बानी पवन चंदाना और नागा भारत डाटा के साथ गुफ्तगू की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि उनकी बातचीत में विक्रम 1 की कामयाबी नीज कई दीगर दिलचस्प मौजूदात पर खास तौर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस कंपनी के दोनों बानी अफराद के सफर और मुस्तकबिल के उनके मंसूबों के बारे में वाकफियत हासिल करने के बाद मुसर्रत का इजहार किया। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी तवानाई जोश और मुस्बत अंदाज फिक्र से भारत के खलाई शोबे के प्राइवेट इको निजाम के मुतालिक जज्बे की अक्कासी होती है। जनाब मोदी ने स्काई रूट एयर स्पेस की पूरी टीम के प्रति नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात के अपने प्रोग्राम में भी विक्रम 1 की कामयाबी की सिफारिश की थी। सियात की वजारत ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत आलमी सतह पर भारत को एक तरजीही सियाती मुल्क के तौर पर फरोग देने की खातिर एयर इंडिया के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। सियात और सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में नई दिल्ली में इस समझौते पर दस्तखत किए गए। इस इश्तराक का मकसद आलमी सतह पर भारत की सियाती झलक को उजागर करने के लिए वजारत के इकदाम के साथ साथ एयर इंडिया के वसी अंदरून मुल्क और बैन अवी नेटवर्क को बरूएकार लाना है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब शेखावत ने कहा कि इस साझेदारी से अहमियत के हामिल बैन अवी मार्केट्स में भारत की मौजूदगी को मुस्तकम बनाने के लिए भारत की मुतनव सियाती सलाहियत उजागर हो सकेगी। भारत और चीन ने सरहद पर अमन और इस्तेकाम बरकरार रखने की अहमियत का इरादा किया है। कल बीजिंग में खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री की चीन के नायब वजीर खारजा हुआ चुनयिंग से मुलाकात के दौरान इस बात को तस्लीम किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत में दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तकम बनाने, तबादलों को वसअत देने और तिजारत सकाफत और अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की गई। उन्होंने दो तरफा ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लिया। उन्होंने इस नजरिए को आगे बढ़ाने के तौर तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया कि भारत और चीन तरक्की में साझेदार हैं। इससे कबल जनाब मिस्री ने पीजिंग में चीन की पीपल्स सियासी सलाहकार कॉन्फ्रेंस की 14वीं कौमी कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल होंग लियांग के साथ अपनी मीटिंग के दौरान सियासी और अवाम से अवाम के रबतों की सतह पर भारत और चीन के दरमियान भावी तबादलों को वसत देने के तौर तरीकों पर भी तबादला खर्च किया। इस मीटिंग में चीन में भारत के सफीर विक्रम दोराईस्वामी भी मौजूद थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में बलदियाती इंतखाबात के दौरान पुरतशद्द झड़पों में एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई दीगर जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीएमएलएन के हामियों की मुबैना फायरिंग में उसका एक कारकुन मुख्तार यूनुस मारा गया जबकि दो जख्मी हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूनुस की मौत पर रंजोखम का इजहार किया है। वहां ये बलदियाती इंतखाबात एक ही दिन में कराए जाने थे लेकिन अब ये आज से लेकर अगले माह की 10 तारीख तक 3 मरहलों में कराए जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दोनों ने एक दूसरे पर कई चुनाव हलकों में चुनाव में धांधली का इल्जाम आयद किया है। हरीफ पार्टी हामियों के दरमियान झड़पों की वजह से कुछ पोलिंग मराकज पर कुछ देर के लिए पोलिंग रोकना पड़ी। इधर साबिक वजीर आजम इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी चुनाव का बायकॉट कर रही है जबकि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इमरान खान की पार्टी ने दावा किया है कि गुज़िश्ता महीने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहरों के तनाजुर में पुरतशद्दुद झड़पों में 100 से ज्यादा अफराद मारे गए। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। खत्म रफ्तार पर अमरीका और ईरान की जानिब से फौजी हमले रोके जाने के तनाजुर में खाम तेल की आलमी कीमतों में तकरीबन 7% की गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 7.2% घटकर $89.74 फी बैरल पर आ गई जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत 6.6% की गिरावट के साथ $83.36 फी बैरल पर आ गई। सरकार ने खिलौनों के शोबे को तकवीत पहुंचाने और खिलौनों की आलमी मार्केट में साल 2032 तक भारत की हिस्सेदारी 5% तक पहुंचाने में मुआवनत के लिए एक टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान किया है। कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में सनअत और दाखिली तिजारत के फरोग के महकमे के जेर एहतमाम खिलौनों के शोबे के बारे में एक मीटिंग से खिताब करते हुए यह ऐलान किया। कॉमर्स और सनअतों की वजारत ने कहा कि ये टास्क फोर्स आलमी वैल्यू चेन के साथ मुल्क की खिलौनों की सनअत को मजबूत करने मैन्युफैक्चरिंग सलाहियत को मुस्तकम बनाने और कारोबार करने में सहूलत पैदा करने पर तवज्जो मरकुज करेगी। इस मौके पर जनाब पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की खिलौनों की सनअत की तरक्की से विकसित भारत के मकसद की समत मुल्क की पेशरफ्त की अक्कासी होती है। असम में सैलाब की सूरत हाल में मजीद बेहतरी आई है और अब मुतासर जिलों की तादाद घटकर 6 रह गई है। सरकारी इतलात के मुताबिक शिवसागर गोलाघाट चराई दियो जोरहाट नागांव और कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले अब भी सैलाब से मुतासर हैं। 21 रेवेन्यू हलकों के तहत आने वाले 631 गांव में मजमुई तौर पर 4,45,000 से ज्यादा अफराद पर सैलाब का असर पड़ा है। इधर हुकाम मुतासर इलाकों में राहत और बहाली के इकदाम कर रहे हैं। रियासत के बेशतर हिस्सों में सैलाब का पानी उतर रहा है। सियात की वजारत ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत आलमी सतह पर भारत को तरजीही सियाती मुल्क के तौर पर फरोग देने की खातिर एयर इंडिया के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। सियात और सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में नई दिल्ली में इस समझौते पर दस्तखत किए गए। इस इश्तराक का मकसद आलमी सतह पर भारत की सियाती झलक को उजागर करने के लिए वजारत के इकदाम के साथ साथ एयर इंडिया के वसी अंदरून मुल्क और बैन अवी नेटवर्क को बदलकार लाना है। दौलत मुश्तका खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनकर ने ग्लासगो में 9.81 मीटर की सीजन की बेहतरीन कारकर्दगी के साथ खवातीन शॉटपुट F57 मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इस कामयाबी के साथ ही शर्मिला दौलत मुश्तका खेलों में सोने का तमगा हासिल करने वाली पहली पैरा एथलीट बन गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने दौलत मुश्तका खेलों में शर्मिला धनकर के सोने का तमगा जीतने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया ने कहा कि दौलत मुश्तका खेलों में भारत की तरफ से पैरा एथलीट्स में पहली बार सोने का तमगा हासिल करके शर्मिला ने तारीखी कामयाबी हासिल की है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने खवातीन के 38 किलोग्राम जुमरे में कांसे का तमगा हासिल करने पर दिव्या रानी देवी सोरो खैबम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जहां मोदी ने कहा कि दिव्या रानी देवी ने अपनी सख्त मेहनत और पुख्ता आजम की बदौलत ये कामयाबी हासिल की है। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने खलाई शोबे में भारत के फरोग पाते हुए प्राइवेट इको निजाम की सताइश की है। वजीर अजम ने विक्रम 1 की कामयाबी के तनाजुर में स्काईरूट एरोस्पेस के बानी एहलकारों से मुलाकात की। भारत और चीन ने सड़क पर अमन और इस्तेकाम बरकरार रखने की अहमियत का इरादा किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में बलदियाती इंतखाबात के दौरान पुरतशद्दुद झड़पों में एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई दीगर जख्मी हुए हैं। और दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनकर ने खवातीन के शॉटपुट मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही आलमी खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
3: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज़ोनी आयार और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं। पेश है अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई शोबे में भारत के फरोग पाते हुए प्राइवेट इको निज़ाम की सताइश की है। वज़ीर-ए-आज़म ने विक्रम 1 के कामयाबी के तनाजुर में स्काईरूट एरोस्पेस के बानी एहलकारों से मुलाकात की।

सियाहत की वजारत ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत आलमी सतह पर भारत को तरजीही सियाहती मुल्क के तौर पर फरोग देने की खातिर एयर इंडिया के साथ मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। भारत और चीन ने सरहद पर अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत का इरादा किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के इलाके में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान पुरतशद्दुद झड़पों में एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हुए और दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनकर ने खवातीन के शॉटपुट मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर अभी तक आप सुन रहे थे उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात। 1:15 होने को है, पहली मजलिस का वक्त अब खत्म होता है। दिन में 3 बजे दूसरी मजलिस के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

पर बात है इस गीत से कि हल्की सी नोक झोंक, थोड़ी सी मां की उम्मीद और दिल से निकली सच्ची मोहब्बत, यही तो इस दौर के गीतों की पहचान हुआ करती थी। आरजू की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जहाँ दो दिल मिलते हैं मगर किस्मत उन्हें बार बार पहुंचती है। राजेंद्र कुमार और साधना की जोड़ी में एक सादगी है, एक अपनापन है जो सीधे दिलों तक पहुंचता है।

करूँगी सिर्फ की आवाज में ये गीत आपने सुना। और इस गीत ने उस दौर के एहसासों को अपने शब्दों और खूबसूरत धुन ने हम सभी के सामने इस तस्वीर की प्रस्तुत की आज के फिल्म का ये पहला गाना। और आइए सुनते हैं एक और दिलकश नगमा जो अपने शब्दों में ही पूरी तरह उस भावना की तस्वीर खींचता है। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत हम आपको सुना रहे हैं।

दोस्तों इस बीच में कितनी खूबसूरती से प्यार का इजहार है, बिना किसी दिखावे के, बस दिल की सीधी सी बात। फिल्म में फिरोज खान का किरदार कहानी में एक अलग रंग भरता है और यहीं से रिश्तों की राह थोड़ी उलझने लगती है। दरअसल सूरज, जिसका पहले नाम गोपाल होता है, राजेंद्र कुमार की बात में कर रहा हूँ, वो छुट्टी में कश्मीर जाते हैं और वहां पर अपने असली नाम नहीं नकली नाम के साथ वो आगे बढ़ते हैं और उन्हें हो जाता है प्यार उषा यानी साधना से, जो सूरज नाम से, कद्दू नाम से उनसे मिलते हैं। और एक एक्सीडेंट में उनके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना होती है कि उनके पैर खो जाते हैं, वो अपाहिज हो जाते हैं और फिर वो उषा यानी साधना से दूर होने लगते हैं ताकि वो अपने जीवन में खुश रह सके। और फिर एंट्री होती है फिरोज खान की, जिसका जिक्र मैंने किया, रमेश की, और यहाँ पर प्रेम त्रिकोण का ये उल्झन की उल्झन यहाँ इस फिल्म की पटकथा को और जो दर्शक होते हैं उनके प्रति उनके उनको अपने प्रति आकर्षित करती हुई नजर आती है। कार्यक्रम का जो अगला गीत है उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं बल्कि उन एहसासों की रास्ता है जहाँ जुदाई भी है और जुदाई भी उतनी ही सच्ची लगती है जितना मिलन। और जब दर्द शब्दों में ढलकर सुरों में मिलता है तो वो गीत हमेशा के लिए याद बन जाते हैं। तो अब सुनिए एक ऐसा ही गीत जिसमें इंतजार और तड़प की गहराई साफ झलकती है और लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज।

सरसद जयपुरी के बोलों को सुंदर संगीत शंकर जयकिशन के साथ मधुर आवाज लता मंगेशकर की और आरजू फिल्म आप आरजू फिल्म के गाने सुन रहे हैं। इसी फिल्म से जो अंतर्गत और दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने हर भाव के लिए अलग रंग की धुने रची जो आज भी श्रोताओं के साथ श्रोताओं को गीतों के साथ गुनगुनाने को बाध्य करती है। और जिस गीत को हम सुन रहे हैं उसके हर एक शब्द में सच्चाई है, एक खामोश पुकार है जिसे हसरत जयपुरी ने महसूस करते हुए लिखा। और इसीलिए जब कोई सुनता है तो वो भी उन भावों के पीछे वो दर्द, वो कहानी, वो एहसास महसूस कर पाता है। शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के शब्द जब सीधे दिलों के साथ जुबान तक पहुंचते हैं तो मधुर गीत बन जाते हैं। आइए एक और गीत सुनते हैं, बहुत ही प्यारा सा नगमा ये भी है और इस गीत को फिल्माया गया है राजेंद्र कुमार और साधना पर।

0: शबनमी है खाली मेरा पैमाना।
1: श्रोताओं, आरजू का हर गीत अपने आप में एक एहसास है, कभी मुस्कान देता है तो कभी आंखें भी नम कर देता है। यह फिल्म उस दौर की याद दिलाती है जब मोहब्बत में सादगी थी, इजहार में संकोच था और इंतजार में सुकून। आज के तेज दौर में भी ये गीत हमें थोड़ी देर ठहर कर दिल की आवाज सुनने का मौका देते हैं। आरजू के मधुर गीतों के साथ आज का ये सुरीला सफर अब अपने समापन की ओर है और अब कहानी का वो पहलू इस गीत के माध्यम से जो इस पूरी फिल्म की पटकथा को एक नया मोड़ देता है। ये गीत अदाकारा साधना से उनके मन में चल रहे तूफानों को प्रतिबिंबित करता है और ऐसा लगता है जैसे खुद उनका दिल उनसे सवाल कर रहा है और साधना यानी उषा अपने ही सवालों से बचने की कोशिश कर रही है। कव्वाली की तर्ज पर आइए सुनते हैं आज का भोसले और मुबारक बेगम के स्वर में।

पूरे फिल्म जितने भी गाने थे सभी गानों में अलग अलग तरह का संगीत, अलग अलग के भाव मूड, और शंकर जयकिशन ने ऐसा चाहा होगा कि शायद आखिरी गाने में सभी गानों की एक झलक, सभी गानों की धुनों की झलक हम दे देंगे। तो आशा भोसले और मुबारक बेगम के स्वर में इस गीत के साथ ही और आसम की आवाजों के साथ ही आज का एक ही फिल्म के फिल्म के इस कार्यक्रम को अब सम्पन्न करने की मैं देवेंद्र त्रिपाठी चाहूंगा अनुमति। उम्मीद करता हूँ आज भी फिल्म की कुछ छोटी मोटी बातें और ये गाने आपको पसंद जरूर आए होंगे। फिलहाल दीजिए अनुमति, लेकिन आप लगातार बने रहिए आकाशवाणी।

आकाश मणि दिल्ली का इंद्र प्रस्तुत चैनल है मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 की हर्ट्ज पर 1:40 होने को है। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे पंजाबी में।

0: किया जाएगा। एयर इंडिया ने अमृतसर एयरपोर्ट पर पंजाब को 27 आलमी मकामात से जोड़ने वाले इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का आगाज किया है। झारखंड में 16 माओनवाजों ने, जिनमें चोटी के 6 कमांडर भी शामिल हैं, हिफाजती दस्तों के साथ खुद सुपर्दगी की। हुकूमत ने 18 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में साइबर क्राइम केसेस में E0 FIR दर्ज करने का निजाम शुरू किया। और IMD ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा में इंतहाई शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुजाहिरा करने वाले उन तलबा को रिहा करने की हिदायत दी है जिनकी उम्र 18 साल से कम है और उनका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है। अदालत ने हुक्काम से यह भी कहा है कि वो नीट पेपर लीक के मामले पर हालिया मुल्कगीर मुजाहिरों से मुतालिक इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल शवाहिद भी महफूज रखें। अदालत ने यह भी कहा है कि पिछले हफ्ते तलबा के मुजाहिरों के दौरान तलबा और पुलिस अफसरान के जख्मी होने के इल्जाम की एक शफाफ और आजादाना तफ्तीश कराए जाने की जरूरत है। दरखास्तों के एक जत्थे की समाअत करते हुए, जिनमें मुजाहिरों के दौरान पुलिस का मुबैना तौर पर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उबूरी हिदायत जारी की है। नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई के मामले पर अपोजिशन के शोरगुल के तनाजुर में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आज दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने 23वें दौलत मुश्तरका खेलों में सोने का तमगा जीतने पर पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ को मुबारकबाद दी। बाद में जनाब ओम बिरला ने सवालों के वक्फे की कार्रवाई चलाने की कोशिश की तो अपोजिशन अरकान ने एहतजाज के दौरान तलबा के खिलाफ पुलिस की मुबैना कार्रवाई के मामले पर नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर मौसूफ ने कहा कि ऐवान में कामकाज खुशसलूबी के साथ होना चाहिए और पब्लिक इम्तहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर बामकसद बहस मुबाहिसा होना चाहिए। जनाब बिरला ने सरकार और अपोजिशन दोनों पर जोर दिया कि इत्तेफाक राय कायम करके मजकूरा बिल पर बहस शुरू की जाए।
1: आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा और मेरा आपसे आग्रह है, कितना भी गतिरोध हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लेकिन प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए। पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक दिशा जाए कि संसद में चर्चा होती है।
0: जब शोरगुल होता रहा तो स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। उधर राज्यसभा में भी इसी मामले पर हंगामा आराई के तनाजुर में ऐवान की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने आज कहा है कि एनडीए की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग के दौरान अरकान पार्लियामेंट को मुख्तलिफ मुल्कों के साथ भारत की तिजारत और आजाद तिजारती समझौतों के मुतालिक ताजा तरीन हालात के बारे में मालूमात फराहम की गई। पार्लियामेंट के इहाते में नामनिगारों से बात करते हुए बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ने उम्मीद जाहिर की कि सभी सियासी पार्टियां सरकारी इम्तहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के 2024 के कानून में तरमीम के बिल पर लोकसभा में होने वाले बहस मुबाहिसे में तामीरी रुख अपनाएंगी।
2: आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
0: राज्यसभा में बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल ने रियासत में बार बार मुबैना पेपर लीक के वाकयात के बारे में पंजाब सरकार की नुक्ताचीनी की और पंजाब के वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा किया। पार्लियामेंट के इहाते में नामनिगारों से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि पिछले 5 साल के दौरान पंजाब में पेपर लीक और नकल के 6 बड़े वाकयात हुए। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने आज कहा है कि अपोजिशन पब्लिक इम्तहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के 2024 के कानून में तरमीम के बिल पर लोकसभा में होने वाले बहस मुबाहिसे के तई पुरउम्मीद है। पार्लियामेंट के इहाते में नामनिगारों से बात करते हुए उन्होंने पूरे निजाम का जायजा लेने और उसमें बेहतरी लाने की जरूरत पर जोर दिया।
3: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं, सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं, सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण, पूरे सिस्टम को आप देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
0: कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की पार्लियामानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तेवार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद हुई, जिसे अब मंगल मिलन कहा जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा

राजनाथ सिंह और दीगर रहनुमा इस मीटिंग में मौजूद थे। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है, जिसका मकसद एनडीए के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। तृणमूल से अलग होने वाले अरकान पार्लियामेंट के धड़े एनसीपीआई ने भी इत्तेहाद की इस मीटिंग में शिरकत की। इस महीने की 21 तारीख को गुज़श्ता मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पूरे मुल्क में आइंदा होने वाले इम्तिहानात में पेपर लीक के वाकयात की रोकथाम के लिए सभी मुतालिका इदारों की जानिब से मरबूत कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया था। वज़ीर आज़म ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के हालिया वाकये में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुल्क के नौजवानों के मफादात के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के तई सरकार के अहद को दोहराया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आसाम के अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात की और रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह मालूमात फराहम करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मरकज मुतासरीन की मदद के लिए आसाम सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने हरेक की हिफाजत और खुशहाली के लिए भी दुआ की। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी बैन अलावी हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एनस्पोक मॉडल के आगाज के साथ पंजाब का राबता शिमाली अमरीका, बरतानिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 मकामात से कायम हो गया है। अमृतसर से रोजाना 2 इजी कनेक्ट परवाजें रवाना होंगी। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोदी नायडू ने कहा कि अमृतसर शिमाली भारत के लिए बैन अलावी गेटवे बन जाएगा। पंजाब, जम्मू व कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत बहुत से इलाके अमृतसर के जरिए मुंसलिक होंगे। हुकूमत ने 10 और 20 रुपए की कदर के प्लास्टिक के बैंक नोट शुरू करने की भारतीय रिजर्व बैंक के तजवीज को मंजूरी दे दी है। लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में खजाने के वजीर ममलकत पंकज चौधरी ने बताया कि आरबीआई ने 10 और 20 रुपए की कदर वाले 1-1 अरब रुपए चलन में लाने के लिए हुकूमत को एक तजवीज भेजी है। झारखंड की नई दिशा नई पहल नक्सल मुखालिफ मुहिम को आज बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि कोल्हान और लातेहार खित्तों से ताल्लुक रखने वाले 16 सरगर्म माओनवाजों ने रांची में झारखंड पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी है। खुद सुपुर्दगी करने वालों में एक इलाकाई कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सतह के अरकान शामिल हैं। इनमें इलाकाई कमांडर संतोष

0: पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। इससे पंजाब 27 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेगा। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी की चेतावनी जारी। और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज FIR की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह चर्चा का जवाब दे रहे हैं। आइए सुनते हैं।
1: And for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished.
0: राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले सदन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि NDA संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी गई।
2: जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दुनिया से, वो 2013-14 तक भारी हेवी ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज ये जान करके खुशी होगी कि लगभग दुनिया के वो सभी विकसित देश भारत के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। आज जो बिल आ रहा है उस पर

0: सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
1: भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
2: पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं और चीटिंग स्कैम्स हुए हैं। अभी भी 19 जुलाई को पंजाब के फार्मेसी एग्जाम में बहुत मेजर चीटिंग हुई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे जेंजी को ये बोलते हैं कि भाई सड़क पे आइए, नेपाल बनाइए भारत को, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट युवा पंजाब में करते हैं तो उनपे बर्बरता से अरविंद केजरीवाल लाठी चलाते हैं। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका हर हाल में रेजिग्नेशन होना चाहिए।
1: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
3: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे सिस्टम को अब देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
1: सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
4: गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के मामलों, खासकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के जरिए मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अपने आप में E0 FIR दर्ज हो जाएगी। इसके बाद इसे तुरंत संबंधित इलाके के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को E0 FIR को नियमित FIR में बदलने के लिए 3 दिनों के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन जाना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापो राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। इसी तरह लगभग 1.5 लाख यात्री विदेश से दिल्ली आते हैं और फिर अमृतसर की यात्रा करते हैं।
5: हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब और अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहां से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी है। एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
1: नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और एयर इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष विपिन कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हब विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक यात्रा करने में आसानी होगी। इस शुरुआत के साथ अमृतसर से प्रतिदिन 2 इजी कनेक्ट उड़ानें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की।
6: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष ऐसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहें।
1: राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का भी उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी क्षेत्र और समर्थ आंगनवाड़ी सहपालन शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने बाल परिसर में बच्चों से बातचीत भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी कर्मियों और उनके परिवारों के लिए दो महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की जानकारी दी। इन नीतिगत सुधारों का उद्देश्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देना है। झारखंड सरकार की नई दिशा नई पहल नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली। कोल्हान और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में एक रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सदस्य शामिल हैं। इनमें 15 लाख रूपये का इनामी रीजनल कमांडर संतोष उर्फ वासुदेव भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने हवा के गहरे दबाव के कारण राज्य में तेज वर्षा हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
7: मौसम विभाग ने अगले महीने की 2 तारीख तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझर और संबलपुर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। बालेश्वर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश के कारण 86 इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कांसाबांसा और गमई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से भद्रक जिले में बाढ़ की नई लहर आ गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को 24 घंटा सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया है कि आज दोपहर कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने अरियाके सागर और यात्सुशिरो सागर के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। क्योशू रेलवे कंपनी ने कहा कि भूकंप के बाद क्योशू शिंकानसेन सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। भारत के पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं हमें स्टूडियो की घड़ी में। इस समय 2:30 हुए हैं। समय है आपके अपने कार्यक्रम एक ही कलाकार का। हर बार की तरह हिंदी सिने जगत की किसी महान हस्ती की बात करते हैं हम अपने इस कार्यक्रम में। तो शुरू करें अपना कार्यक्रम, उससे पहले आपके लिए

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: स्वागत अभिनंदन आपका हमारे शो एक ही कलाकार के इस सफर में। आज हूँ आपके साथ मैं, यानी स्वीकारें मेरा मनीषा बोस का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, एक ही कलाकार की करें बात, उससे पहले क्यों ना आप ही लगाएं कयास इस तराने से। जरा पहचानिए तो कौन है हमारे आज के कलाकार।

जी हाँ, आज आपको लेकर चलेंगे 1940 से 1960 के दशक की ओर। तब हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग में एक उर्दू शायर, लेखक और गीतकार का नाम उभरा, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कई

0: स्मरणीय गीत दिए। नाम था संवाद लेखक और गीतकार राजा मेहंदी अली खां। शायद ही ऐसा कोई हो जिन्होंने इनके लिखे गीत को ना सुना हो। लग जा गले आपकी नजरों ने समझा और मेरे पिया गए रंगून जैसे कई अमर और सदाबहार गीत हिंदी सिनेमा में इनकी ही देन है।
1: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ।

राजा मेहंदी अली खान साहब का जन्म हुआ झेलम जिले में, जो पाकिस्तान का हिस्सा है। अब महज 4 साल की उम्र में ही पिता का साया उनके सर से उठ गया और माँ हेबा साहिबा, जो उर्दू शायरा थीं, उन्हीं से विरासत में मिला उन्हें लेखन का हुनर। बेहतरीन लेखन शैली और भाषा

पर मजबूत पकड़ के हुनर ने उन्हें 1942 में दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो में बतौर लेखक स्थापना दी और इसी दौरान राजा मेहंदी अली खान की मुलाकात कथाकार सआदत हसन मंटो से हुई, जो हिंदी फिल्म जगत में उस दौर में बड़ा रुतबा रखते थे। उनके ही कहने पर राजा मेहंदी अली साहब मुंबई आ गए और वहां पर अभिनेता अशोक कुमार की सहायता से उन्हें मिली फिल्म 1946 की पहली फिल्म 8 दिन, जिसके लिए उन्होंने न सिर्फ संवाद लिखे दोस्तों बल्कि अभिनय भी किया। और उसके बाद उन्हें मिली दूसरी फिल्म 1947 की फिल्म 2 भाई, जिसके गीत लिखकर उन्होंने एक सफल गीतकार के रूप में अपनी पहचान बनाई।

एक ही कलाकार में आज हमारे कलाकार हैं गीतकार राजा मेहंदी अली खां। बहुत ही कम समय में राजा मेहंदी अली खां के गीत हिंदी फिल्मी जगत को एहसास का नया मुकाम देने वाले वो गीत बने जिसे हम आज भी याद करते हैं। और संगीतकार मदन मोहन जी के साथ उनकी जोड़ी ने तो ऐसा कमाल किया कि मदन मोहन के कर्णप्रिय संगीत की जुगलबंदी वाले गीत आज भी हम सभी के एहसासों में ताजगी का एहसास कराते हैं और हमारे दिल की बगिया को महकाते हैं।

बहुत ही कम समय में और हिंदी सिनी जगत में ऊंचा मकाम उन्होंने हासिल किया था, राजा मेहंदी अली खां। संगीतकार राजा मेहंदी अली खां, 1964 की वो फिल्म कौन थी के गीत लिखे और उसमें संगीत दिया उस दौर के मशहूर संगीतकार और गजलों के बेताज बादशाह मदन मोहन जी ने। फिर तो फिल्म के सभी गीत सुपरहिट होने ही थे क्योंकि उनकी जोड़ी ही इतनी कमाल की थी, विशेषकर लग जा गले जी वो गीत था जिसे कई रियलिटी शो में गाया गया था और इसे बहुत पसंद किया गया था। उसी तरह इसी फिल्म का एक और गीत था, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। चलिए सुनते हैं वो गीत।

सचिन देव बर्मन, ओपी नैयर और इकबाल कुरैशी सभी के साथ राजा मेहंदी अली खां के सभी गीत बड़े मकबूल हुए दोस्तों। और ये जो गीत आप सुन रहे थे, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, ये गीत बरसात के इस रिमझिम फुहारों में हमें प्रकृति के नजारों की याद करा जाते हैं, है ना। और ये जो गीत है वो प्रकृति की मुस्कान के साथ हमें वहीं ले जाता है जहां इस गीत का फिल्मांकन हुआ था। जी हाँ, शिमला में ही पिक्चराइज किया गया था ये गीत। और उनकी एक फिल्म आई थी शहीद, और उसमें भी ये गीत था, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, जो उस दौर में बहुत लोकप्रिय हुआ था। सन 1951 में मदहोश, मेरा साया, अनपढ़, वो कौन थी, सभी फिल्मों में राजा मेहंदी अली खां साहब के बोल थे और मदन मोहन साहब का संगीत था। इस जोड़ी ने ऐसा कमाल किया कि उनके गीत इतने मशहूर हुए कि वो आज भी हमारे दिलों में गूंजते हैं।

अभी आप सुन रहे थे आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार। और साथियों, इस समय स्टूडियो की घड़ी में 2:59 हो चुके हैं और

अच्छा, कुछ ही देर के बाद यानी 3:05 पर खबरें नशे की जाएंगी और 3:15 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम मेरी पसंद। सहप्रहर 3:30 प्रोग्राम पेश किया जाएगा आदब नुमा और शाम 4 आप लुत्फानंदोज होंगे फिल्मी मौसीकी से। इन आंखों का प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। पर खबरें नशे की जाएंगी और शाम 5 उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामने ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशो नाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। सहपहर के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशे की जाएंगी।
1: रजी अहमद से खबरें सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने उन एहतजाजी तलबा को रिहा करने की हिदायत दी है जिनकी उम्र 18 साल से कम है और उनका कोई मुजरमाना रिकॉर्ड नहीं है। एयर इंडिया ने अमृतसर एयरपोर्ट पर पंजाब को 27 आलमी मकाम से जोड़ने वाले इजी कनेक्ट हब एंड एक्सपोक मॉडल का आगाज किया है। झारखंड में 16 मौनमाजों ने, जिनमें चोटी के 6 कमांडर भी शामिल हैं, हिफाजती दस्तों के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी है। हुकूमत ने 18 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में साइबर क्राइम केसेस में E0 FIR दर्ज करने का निजाम शुरू किया है। IMD ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा में इंतहाई शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुजाहरा करने वाले उन तलबा को रिहा करने की हिदायत दी है जिनकी उम्र 18 साल से कम है और जिनका कोई मुजरमाना रिकॉर्ड नहीं है। अदालत ने हुक्काम से यह भी कहा है कि वो नीट पेपर लीक के मामले

सामिन, कुमकुम ने पंडित शंभू महाराज से कथक की तालीम हासिल की थी और उन्होंने अदाकार दिलीप कुमार के साथ फिल्म कोहिनूर में अपनी इस सलाहियत का भरपूर मुजाहिरा किया। मौसीकार नौशाद के लिए आशा भोसले के जरिए गाया गया नगमा हाय जादूगर कातिल हाजिरा मेरा दिल और मधुबन मेरा दीवाना चाहिए उन्हीं पर फिल्माया गया था। और इसके अलावा कुमकुम फिल्म साज हिदायतकार अमन सागर की पसंदीदा अदाकाराओं में से एक थी और उन्होंने 1968 की सुपरहिट फिल्म आंखें में धर्मेंद्र की बहन के रूप में कुमकुम को कास्ट करने का फैसला किया था और 1970 में गीत फिल्म में एक छोटा सा रोल भी रामन सागर की फिल्म कुमकुम ने निभाया था और 1972 के हिट फिल्म ललकार में वो चार खास अदाकारों में से एक थी और धर्मेंद्र के साथ उनकी जोड़ी बनी थी। जलते बदन में कुमकुम किरण कुमार के साथ नजर आई। 1973 में धमकी में वो विनोद खन्ना के साथ थी और ड्यूट जो सॉन्ग था चांद क्या है रूप का दर्पण बहुत मकबूल हुआ था और इसके अलावा प्रकाश मीरा के जरिए बनाई गई फिल्म एक कुंवर एक कुंवारी में वो प्राण के साथ नजर आई जो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी।

फिल्मों के अलावा भोजपुरी फिल्मों में भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। गंगा मैया, तोहे पियर चराइबो से जो शुरुआत हुई थी, उसके अलावा लागी नहीं छोटे राम, बलमा, बड़ा नादान, नैहर छूटो जाए, भौजी और गंगा जैसी फिल्मों में अदाकारी करके एक अलग मकाम उन्होंने हासिल किया था भोजपुरी फिल्मों में। 28 जुलाई सन 2020 में मुंबई में उन्होंने 86 साल की उम्र में आखिरी सांस ली।

0: बहुत शुक्रिया, और ये शेर भी समाप्त करें।
1: जी जरूर इरशाद।
0: दुनिया में बनाया है एक छोटा सा घर मैंने,
1: जी
0: दुनिया में

0: और फिर एक शेर आपकी नज़ करने का दिल कर रहा है
1: जी जरूर इशा।
0: बदली हुई दुनिया की, बदली हुई बातें, बदली

0: और ये शेर भी आपको अर्ज करती हूँ,
1: नवाजिश,
0: जितने भी साफी हजरात हैं जो भी सुनने वाले पत्रकार हमारे वहां तक पहुंचाते, सुनिएगा कि हाथ

0: बात, क्या बात, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत खूबसूरत,
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हालात की मजबूरी
0: शमशीर
1: न बन जाए,
0: क्या उम्दा शेर ये।

मेरे भाईजान से भी अच्छा जैसा वो चाहती है। और आज आठ बरस बाद जब मैं बम्बई से अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ वापस आया हूँ तो मुझे पता चला है नीलूफर ने शादी कर ली एक नाकाबिले बर्दाश्त आदमी के साथ। क्या वो उससे मोहब्बत करती थी? मैंने अपने आप से कई बार ये सवाल किया, क्योंकि फनकारों का भरोसा क्या है? कोई शहजादी किसी मजदूर पर कब आशिक हो जाए, भरोसा क्या है? मैंने फिर पूछा, क्या वो उससे मोहब्बत करती थी? नहीं, ताहिरा ने उदासी से कहा था, उसने तो फैसला करने से पहले उसे देखा भी न था। नीलूफर ने जब मेरे भाई के लिए इनकार किया था तो मम्मी ने उससे छोटी बहन ताहिरा को काशिफ भाई के लिए मांग लिया था, और अब ताहिरा मेरी भाभी थी। भाई की शादी में शिरकत के लिए मैं भी चंद दिनों को लखनऊ आया था, और तब नीलूफर मुझे बहुत थकी थकी सी लगी थी। उसकी अम्मी को मैं भी अम्मी कहा करता था। उन्होंने मुझे बताया कि इस वक्त भी उसके कई बहुत अच्छे प्रपोजल्स हैं, मगर वो किसी को खातिर में नहीं ला रही। मुझे शक हुआ वो जरूर किसी को पसंद करती है और अपनी पसंद को छिपा रही है, लेकिन मैंने पूछा तो वो हंस पड़ी थी। ये तुम्हारी गलतफहमी है अर्शद, अगर मैं किसी को पसंद करती तो उसे हासिल भी कर सकती थी। मैंने सोचा वाकई कौन बेवकूफ नीलूफर के हुसूल से इनकार कर सकता है, मगर अर्शद अब मैं थक गई हूं, ये चाहता है अपना घर हो। अच्छा, मैंने हैरत से पूछा, तो फिर इंतखाब कर लो, तुम्हारे पास तो कई अच्छे प्रपोजल्स हैं, वो फैसला कैसा रहेगा? वो तो तुमने बड़ी दिलचस्पी लेता रहा है। उसने बुरा सा मुंह बनाया और बोली, देखा नहीं, हंसते है तो सारी शख्सियत मात पड़ जाती है। फिर उसने कदर संजीदगी से कहा, अगर फैसल जैसा ही कोई आदमी मुंतखब करना था तो जाने कब का ब्याह कर चुकी होती। उसकी हंसी मेरी तबीयत पर गिरा गुजरती है। मैं उसके नाजुक मिजाज और हुस्न परस्त तबीयत से वाकिफ था। उसके ख्वाबों का शहजादा मुकम्मल आदमी होना चाहिए। चलने में, बोलने में, सोने में, हंसने में वो कोई मामूली सी कमी भी अपने शहजादे में नहीं देखना चाहती थी। उसने किसी मामूली कमी के बिना पर बेशुमार लोगों को रद्द कर दिया था। ऐसा करने में वो हक बजानिब थी। उसे खुदा ने फुर्सत के लम्हों में अपने हाथों से बनाया था। उसने एम ए किया था एंशेंट हिस्ट्री में। कदीम तहजीबों के मुताले में उसे खास दिलचस्पी थी। अपने शौक की खातिर तस्वीरें बनाती थी। ब्यूटिशियन और इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स भी किया था। कपड़े और कागज के बहुत खूबसूरत फूल बनाया करती थी। हाथों में कलम और सामने कागज हो तो बेख्याली में भी गुलबूटे बनाया करती। खाना तो बहुत उम्दा बनाती थी, लेकिन शायद ही कभी उसकी मम्मी ने किचन में उससे कोई काम लिया हो। ताहिरा तो फिर भी खाना बना लिया करती थी। उसने जब मेरे भाई के लिए इनकार किया था तो मैंने उससे बहुत पूछा था, आखिर क्या कमी है मेरे भाई में? उसने सिर्फ इतना कहा था, मुझसे मत पूछा करो अर्शद, मैं कुछ नहीं कह सकती। मैंने सोचा शायद कामिल को पसंद करती हो, लेकिन जब उसके बारे में पूछा तो हंस पड़ी। हाँ अर्शद, कामिल हर तरह से अच्छा है, लेकिन हंसता मुस्कुराता। यकीन करो, जब संजीदा होता है तो बिल्कुल बोंगा लगता है। इस तरह एक एक करके वो सबको रद्द करती रही। मैंने उसे एक बार प्यार से डांटा था, नीलूफर तुम किसी फरिश्ता सिफत आदमी की तलाश में यूं ही पूरी जिंदगी गुजार दोगी। वो एक लम्हे को मुस्कुराई और फलसफियाना अंदाज में बोली, डियर, किसी नापसंदीदा आदमी के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि पसंदीदा आदमी की तलाश में जिंदगी गुजार दी जाए। फिर उसने बड़े एतमाद से कहा, अर्शद, अगर मैं अपने तौर पर सही हूं तो मुझे वो जरूर मिलेगा। और अब इस बात से आठ बरस बाद जब मैं अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ मुंबई से लौटा हूं तो भाईजान और ताहिरा भाभी ने मुझे उसके ब्याह की इत्तला दी है। ताहिरा भाभी ने अफसुदगी से कहा था, अर्शद, आपा बिल्कुल पागल हो गई हैं। हम सब उनसे नाराज हैं। हमारी नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं, कोई वक्त नहीं जिसे उन्होंने सर पर बिठा लिया है। और अर्शद, वो नीलूफर का शौहर एक अखबार के दफ्तर में मामूली सा नौकर है, भाईजान आहिस्ता से मुस्कुराकर बोले। और फिर भाईजान अपनी गाड़ी में मुझे नीलूफर के दरवाजे पर उतार गए थे। चूना पोती हुई सफेद दीवारों और छोटे नीले गेट वाला घर जिस पर बोगनवेलिया की बेलें लिपटी हुई थीं। मैंने घंटी बजाई तो उसने खुद ही गेट खोला था। एक लम्हे को तो उसने मुझे पहचाना ही नहीं, लेकिन फिर चीख पड़ी, ओ अर्शद, तुम मुंबई से कब आए? आज ही सुबह। मैंने उसे गौर से देखा, उसके बदन पे मामूली कपड़े मैले हो रहे थे। वो लड़की जो अपने कपड़ों पर एक जरा सा धब्बा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, अब अपने हुस्न नफासत पर सरापा धब्बा थी। उसके पेट की तरफ नजर गई तो महसूस हुआ कि उसमें दूसरा वजूद

क्यों नहीं थी? मैंने जरा नाराज होकर कहा। इतना क्या देती, मुझे मालूम था बाकी लोगों की तरह तुम भी ये पसंद नहीं करोगे। तुमने ऐसा क्यों किया नीलोफर? आखिर उस शख्स में क्या है जिसने तुम्हें मुतासिर किया? कुछ तो है अरशद, वो इत्मीनान से बोली। क्या तुम्हें उससे मोहब्बत थी? मैंने लब दबाकर पूछा। मोहब्बत बिल्कुल नहीं, वो हंस पड़ी। फिर क्या देख के तुमने उससे शादी की थी? मैंने झुंझला कर कहा। मोहब्बत तो अब हुई है अरशद, पहले तो मैं उससे मिली भी नहीं थी। बातें करते हुए मैंने देखा उसके नाजुक हसीन हाथ गंदे बर्तन धोते हुए कितने अजीब लग रहे थे। मैंने उसकी तरफ इशारा करके कहा, मगर तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं था। पसंद पसंद कुछ नहीं होती अरशद, इंसान आदी हो जाए तो सब अच्छा लगने लगता है। क्या वो वाकई पागल हो गई है जैसा कि ताहिरा भाभी ने मुझसे कहा था? मुझे उकताहट सी होने लगी। मैंने उससे कहा, मैं अंदर बैठता हूँ, तुम बर्तन धोकर आ जाओ। ठीक है, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ, तुम अंदर बैठो। उसके मकान के सिर्फ दो कमरे थे, एक को उसने बेडरूम और दूसरे को डाइनिंग रूम बनाया हुआ था। मैं डाइनिंग रूम में सोफे पर बैठा उसके कमरे का जायजा ले रहा था। सामने दीवार पर उसकी बनाई हुई पेंटिंग थी, खूबसूरत शानदार पेंटिंग, जिसे देखते हुए लम्हा भर को मैं सब कुछ भूल गया। नीलोफर की आवाज ने ही मुझे चौंकाया, वो कॉफी की ट्रे हाथ में लिए खड़ी थी। कॉफी पीते हुए मैंने पूछा, अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये फैसला क्यों किया, खुद से थककर या अपने घर वालों की चाह में? खुद से थककर नहीं डियर, क्योंकि उन दिनों मेरे पास शादी के कई प्रपोजल्स थे। दो बिजनेसमैन, एक डॉक्टर और एक कंप्यूटर इंजीनियर था। मैं सबसे मिली थी लेकिन कोई मेरी पसंद का नहीं था। मैंने तंज के लहजे में पूछा, अपने शोहर की क्या चीज तुम्हें पसंद आई? अरे वो सारा ही मुझे पसंद है, जिसे तुम सब लोग बदसूरत कहते हो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी हंसी बड़ी खूबसूरत है। जब वो संजीदगी से सोचता है तो उसके माथे की लकीरें बहुत अच्छी लगती हैं। जब वो चलता है तो बहुत अच्छा लगता है। जब वो सो जाता है तो ऐसा मासूम दिखाई देता है जैसे कोई फरिश्ता हो। सच बात यह है अरशद, वो अंदर से बहुत हसीन है, वो मुसलसल बोले जा रही थी। ताहिरा की शादी के बाद मम्मी की फिक्रों ने मुझे परेशान कर दिया। उन्हीं दिनों राजेंद्र भवन में मेरी तस्वीरों की नुमाइश हो रही थी। आदिल ने यह नुमाइश देखी थी, वहां मुझे भी देखा था। उसने मुझे खत लिखा, मैंने आपकी तस्वीरों की नुमाइश देखी, आपको भी देखा। मैं आमतौर पर इस तरह खत नहीं लिखता, लेकिन आपको और आपकी तस्वीरों को देखकर अंदर से ये ख्वाहिश हुई कि आपको खत लिखूं। फिर राजेंद्र भवन के मुलाजमीन के जरिए मुझे उसके कई खतूत मिले। उसने लिखा था, आप फनकार हैं नीलोफर, फनकार हुस्न परस्त होता है, लेकिन इस हकीकत से आप इनकार नहीं कर सकती, फनकार हसास भी होता है और एक हसास फनकार कभी किसी का दिल तोड़ना गवारा नहीं करता। आप बहुत हसीन हैं मिस नीलोफर, हुस्न परस्त हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हुस्न किसी बदसूरत इंसान में नहीं हो सकता? और अरशद, मैंने उसी लम्हे उसके लिए बहुत कुछ सोच लिया। मैंने उसे लिखा, हाँ मिस्टर आदिल, मैं इकरार करती हूँ कि असल हुस्न इंसान के अंदर होता है। मुझे उसका जवाब मिला, आप बहुत अजीम हैं मिस नीलोफर, और मैं अखबार के दफ्तर में काम करने वाला एक मामूली आदमी, अगर आप हुस्न बातिन की कदरदान हैं तो क्या आप मुझे कबूल कर सकती हैं? मैंने

जी साड़ी को अगला खत पहुंचा है गांधी चौक रोपड़ तो हरदेव बलविंदर जय टेक तेना दे सारे परिवार दा इस सुनना चाहते ने सुरिंदर कौर ते प्रकाश कौर की आवाज दे विच मावा तितिया एक और गीत जिहड़ा अज भी जिहड़ा भी सुनता है उहदी अखां च हंझू जरूर लेके आ जाता है एक ऐसा भावात्मक गीत जिहड़ा हर ती ते मां दे दिल नूं टोह लैंदा है।

太累了。

तो सांजर पे कोई शहने बलिए जान में अपनी देना सोने दाके पौना कुड़िए पाल प्यार दा गहना।

ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰ ਗਏ।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से आकाशवाणी का जलंधर केन्द्र है। इस वेले शाम दे 6:30 बज चुके ने। हुन पेश है देहाती प्रोग्राम।

0: अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। यह विधेयक लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता न होने देने के संकल्प की पुष्टि करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुनिश्चित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। सरकार ने इस साल 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देशभर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर हर सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपा पोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है।
0: भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इस रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनाला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि स्कूल के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी कार्य को असहनीय बोझ न डालें। न्यायालय ने कहा कि आयोग की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जाए।

0: करना चाहिए। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की वृद्धि हुई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा है कि जून महीने में सभी चार बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। चीन में आईएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में यह पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुने कार्यक्रम कृषि जगत।

कृष्ण जी का कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम। तो आज कार्यक्रम में कुछ बातें करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, सूचनाएं देंगे, साथ में कल के कार्यक्रम के बारे में ही बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एक रिपोर्ट के बारे में। आप तो इस बात को पहले सुन लेते हैं कि जलवायु परिवर्तन और खरीफ फसलों की सुरक्षा किस तरीके से हो, और इस पर डॉक्टर ओपी सिंह जो कि पूर्व प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, उनसे बात कर रहे हैं श्री नंदन लाल जी। तो आइए सुनते हैं ये।

कुछ और है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसे कि जलवायु परिवर्तन का जो मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने के कारण हमारी जो फसलें हैं और उनमें खरीफ की फसलों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और अभी हमने देखा है कि हमारे दिल्ली और एनसीआर के एरिया में लगभग 28 जून को बरसात आती है, लेकिन किसी कारणवश वो लगभग 8 से 10 दिन देरी से हुई है और इसकी वजह से जो हमारी खरीफ की फसलें हैं उन पर उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। और अभी हम देख रहे हैं कि जैसे ज्यादा तापमान होता है या ज्यादा भारी बारिश होती है और सूखे की स्थिति भी बनती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को कम समय की उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए और साथ ही जैसे मल्चिंग या खेतों की मेड़बंदी है उसको करके हम खेतों के अंदर जल का भी संरक्षित कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी एक भारतीय योजना है भारत सरकार की, यदि हमें फसलों से नुकसान होता है तो उन फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी लाभ उठा सकते हैं किसान भाई। और इसके अलावा यदि हम देखें तो खरीफ की फसलों से जो होने वाले नुकसान है उनमें मुख्य रूप से जो है यदि देखें तो उसमें अनियमित वर्षा है या सूखा है उसकी वजह से खरीफ की फसलों में नुकसान होता है। और उनमें जो मुख्य फसलें हैं उनमें जैसे धान की फसल है उसमें सबसे ज्यादा

0: सकता हो तो। और मानसून में गौरी हमेशा यात्रियों के कारण ये फसल सूख जाती है और पैदावार में इसका भारी गिरावट आती है। इसके अलावा भी हम देखें कि अत्यधिक बारिश हो रही है या बाढ़ है, उसके अलावा भी अचानक भारी बारिश होने से या जल भराव जिसको वाटर लोडिंग कहते हैं, उससे फसलों की जड़ सड़ जाती है और पौधे नष्ट होते हैं, जिससे हमें पैदावार में गिरावट आती है। यदि हम देखते हैं कि तापमान जैसे बढ़ रहा है तो जिसको हीट वेव कहते हैं या उच्च तापमान है, इसके कारण जो प्राइजिंग की प्रक्रिया है फसलों में वो भी बाधित होती है और दामों का विकास ठीक से नहीं होता है। इसके अलावा अभी हम बात करेंगे जैसे कि फसलों की हम सुरक्षा के कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं, जलवायु के अनुकूल जो किस्में हैं उनका हमें चुनाव करना चाहिए, जो लंबे समय तक पानी की कमी झेलने वाली या कम अवधि में तैयार होने वाली जैसे धान की फसल है, मक्का की है, बाजरे की है, इन किस्मों का चयन करना चाहिए। साथ ही जो जल संरक्षण है और उसका उचित प्रबंधन पे भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसमें खेतों के चारों ओर मजबूत मेहरबंदी करें ताकि बारिश का पानी वो खेत में ही संचित रहे और भारी बारिश की स्थिति में अतिरिक्त पानी निकालने के लिए ड्रेनेज की भी उचित व्यवस्था करे, यानी कि जल निकास की। जैसे भारी बारिश की स्थिति है तो उसके अलावा पानी निकालने के लिए हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही यदि हम देखें तो हमारे जो ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति है, उसका भी उपयोग करें ताकि सूखे की स्थिति में जो सीमित पानी है उसका उपयोग करके हम अपनी फसलों से पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। और जो मिट्टी की उर्वरता है उसको भी बढ़ाने के लिए हमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसे यदि आप जान रहे और बहुत सुचारू रूप से दिनों से इस पर जोर दे रहे कि किसान भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग करें और उसके द्वारा जो सुझाई गई उर्वरकों की मात्रा है उसका ही अपनी फसलों में प्रयोग करें ताकि हमारी फसलों से अधिक उत्पादन मिल सके और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे। और जैसे कि जैविक खाद है, आप जानते हैं कम्पोस्ट खाद है या वर्मी कम्पोस्ट है, केचुआ खाद है, उसका उपयोग करें जिससे कि मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ती है और उससे हमारी फसलों में ज्यादा पैदावार भी मिलती है। इसके अलावा यदि हम देखें फसल विविधीकरण जिसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, इसमें पानी की कमी होने से उसमें केवल जैसे धान की फसल है उस पर निर्भर रहने की बजाय हमें अन्य खरीफ फसलों का चुनाव करना चाहिए, जिनमें जैसे दाल वाली फसलें हैं, दलहन की फसलें मूंग है, उड़द है, तिलहन है, या मोटे अनाज में आप देख रहे हैं बाजरा है, ज्वार है, रागी है, इन फसलों का हमें चुनाव करके हमें उनका अपने खेतों में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके उत्पादन लेना चाहिए। जैसे आपने कहा तो ज्यादा एकदम बरसात हो जाती है और किसान ने फसल बो रखी है तो उसके कारण है
1: जिस किसान ने फसल बो रखी है हम देखेंगे खेत में पानी ज्यादा भर जाता है तो जल निकास की उचित व्यवस्था करें, एक तो यह है। दूसरा यह है कि यदि कुछ फसलें ऐसी है जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है, उसमें जड़े उसकी जल जाती है या फसल मरने की संभावना रहती है, तो उसमें पानी का निकास जितना हो सके वो करें और नहीं तो जैसे ही वो खेत में फसल हो जाए उससे अनाज को नहीं मिलेगा लेकिन उसकी जुताई करके उससे हरी खाद के लिए उसको उपयोग खेत में कर सकते हैं। साथ ही जो है यदि हम देखें कि हमारे पास अगर तालाब की व्यवस्था है पीने की तरफ तो उस पानी को उसमें भी निकास करके वहाँ पे इकट्ठा करके हम रबी के लिए उसको उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो आसपास में बोरिंग है कुएं हैं उनमें जल की मात्रा बढ़ती है और वो रबी की

क्या ध्यान रखें। देखिए जहाँ देखते हैं कि जहाँ आमिर वर्षा की आवश्यकता है वहाँ पर वर्षा नहीं हो रही है, सिंचाई के साधन भी नहीं है किसानों के पास, तो ऐसी अवस्था में उनको कम पानी वाली फसलों का चुनाव करना चाहिए जिनमें पानी की कम आवश्यकता हो। यदि सूखे की स्थिति पड़ती है तो उसमें हम जो है जैसे हमारी मोटा अनाज उन्होंने बताया ज्वार है, बाजरा है, रागी है, इन फसलों को बो सकते हैं। बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है और कुछ दलहन की फसलें हैं उनका

0: उनके पास है तो ऐसी स्थिति में अगर फसल खेत में खड़ी है और बारिश नहीं हो रही है और सूखे की स्थिति घर में बढ़ रही है तो फसल के लिए अगर अतिरिक्त सिंचाई का कहीं साधन है तो उसको हम सिंचाई कर सकते हैं। और यदि ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो हमें बारिश का इंतजार करना ही पड़ेगा।
1: कभी कभी किसानों की फसल तैयार होती है

0: स्थिति में यही है कि जैसे हमारी फसल तैयार है और बहुत ज्यादा बारिश हो गई है या और कोई जैसे जलवायु परिवर्तन जैसी कोई समस्या आ गई है जिससे कि फसल में पैदावार में नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में यही है कि एक तो भारत सरकार ने जो है एक योजना चलाई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करके यदि उस फसल के लिए बीमा करवा दें तो आपको उसको नुकसान की भरपाई सरकार के द्वारा दी जा सकती है। और साथ ही यदि हम देखें कि ऐसी स्थिति में हम ये कर सकते हैं कि जैसे उनको नुकसान हुआ है तो अगली फसल में फसल चक्र को अपनाए के या और दूसरी फसल चले उसकी भरपाई को क्या है। तो दूसरी यह है कि यदि एक फसल बीमा करके हम विविधीकरण फसल चक्र है तो उसमें यह होगा कि एक फसल से भी नुकसान हो रहा है तो दूसरी फसल से उसकी भरपाई हो सकती है, जैसे बागवानी हम कर सकते हैं। तो बागवानी के साथ अगर हम खेती करेंगे तो हमें जो फसल को नुकसान होता है सूखे की वजह से या ज्यादा बारिश की वजह से तो वो दूसरी फसल से उसकी भरपाई की जा सकती है। और साथ ही मैंने बताया कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसका भी लाभ उठाए और उसको आपको नुकसान से बचा जा सकता है।
1: फसल बीमा योजना का आपने फसल बीमा योजना अगर किसी ने फसल बिजाई करी है बीमा उसका उचित समय होता है क्या प्रक्रिया है उसकी?
0: उसकी प्रक्रिया के लिए यही है कि वो जाके अपने स्वास्थ्य जो कृषि विभाग है वहाँ पे अपना आधार कार्ड और अपनी फसल का फसल नंबर लेके उस पर बात के जो कृषि अधिकारी है उनके यहाँ पे उसका पंजीकरण करवा सकते हैं और साथ ही फसल का नाम लिखवा सकते हैं और खेत का एरिया लिखवा सकते हैं। यदि किसी कारण छोटे की होते या ज्यादा बारिश की होते फसल को नुकसान होता है तो उनको उसकी भरपाई हर सुरक्षा के तौर पर सरकार के द्वारा उनको दी सकती है जिससे कि उनकी पैदावार से जो होने वाली आमदनी को नुकसान होता है वो भरपाई हो सकती है।
1: मैं तो डॉक्टर जो फसल बीमा योजना में कुछ किसानों से भी कुछ प्राप्त है
0: हम किस्त जैसे आते हैं तो वो किस्त में उसको वो भरते हैं। उसका भी टाइम होता है यदि किसी कारण में फसल को नुकसान होता है तो वो किस्त को अगर दूसरे सीजन में उनको

उसके लिए यह है कि अभी आप किसान भाइयों को लगता है कि हमारी फसल को नुकसान हुआ है और आल्टाइन मिला तो उसकी एक प्रक्रिया है, वो सरपंच के माध्यम से अपने जिले के कृषि अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और उनके द्वारा जो जिला के जो कृषि अधिकारी हैं या जो गांव स्तर के जो कृषि अधिकारी काम कर रहे हैं जैसे पटवारी वगैरह, उनको अपने आवेदन देकर के उसको अपनी फसल का आकलन सही करवा के उसका

हम तो किसान भाई को यही सलाह देंगे कि जैसे कि हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन आज कल आप देख रहे हैं कि कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, अनियमित बारिश होती है, या कहीं पे हमें जब जरूरत होती है कम नहीं होती है, समय बारिश होती है। तो उसके लिए बचाव के लिए यही है कि किसान भाई जो ऐसी फसलों का चुनाव करें जिससे कि उन्हें नुकसान कम हो और साथ ही अपनी फसलों में ज्यादा विविधीकरण अपने फसल चक्र का पूरा उपयोग करें और बरसात के मौसम में खेतों की ऊंचाई से मेहरबंदी करके वही फसल लक्षित करें जिससे कि खेत का पानी खेत में रहे और उसके अगली फसल को उनसे ज्यादा पैदावार उसकी मिल सके। तो इसके लिए और भी जो है किसान भाई है कि बागवानी का चुनाव करें, पशुपालन रखें। तो उससे क्या है कि यदि हमें किसी कारण से फसल से नुकसान होता है या व्यवसाय से तो दूसरे व्यवसाय से उसकी भरपाई हो सकती है। तो यही किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आप फसलों का विविधीकरण करें, फसल चक्र अपनाएं और हमारी जो उन्नत कृषि प्रणालियां हैं या उन्नत किस्म की प्रजातियां हैं या कृषि तकनीक है उसका उपयोग करें। और जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे हमारा जो फसल विविधीकरण है या जो हमारा फसलों का जो एक फसल के बाद दूसरी फसल ऐसे दे तो उससे हमें नुकसान होता है और उसके लिए दूसरी फसल उसको भरकर उसको हो सकते हैं सब्जियां लगाएं। अगर पानी ज्यादा है तो मछली पालन भी कर सकते हैं और बागवानी भी लगा सकते हैं। ये रास्ता आपने कहा।

बिल्कुल, तो जलवायु परिवर्तन से कैसे फसलों को बचाएं, इस पर आप ये पूरी रिपोर्ट सुन रहे थे। और शिव नंदन लाल जी बात कर रहे थे, डॉक्टर ओपी सिंह, पूर्व प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा। और अब बात करेंगे किसान सुविधा मोबाइल ऐप, ये क्या है, क्या उद्देश्य है इसका, और कैसे हमारे किसान भाई इसके बेनिफिट ले सकते हैं, सरकार उस चीज को लेकर क्या है, क्या कुछ सारी चीजें बात करेंगे। लेकिन इसका उद्देश्य देखिए ये है कि भारत सरकार की तरफ से ये एक मोबाइल ऐप डेवलप किया गया है, किसान सुविधा मोबाइल ऐप, जिसका उद्देश्य किसानों को कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। वैसे तो हमारे किसान भाइयों को ये मालूम है, वो इस्तेमाल खुद कर रहे हैं, ये ऐप किसानों को वैज्ञानिक खेती अपनाने और सही समय पर निर्णय लेने में मदद करता है। आप इसका ऐप का उपयोग किसान खेती से जुड़ी सही जानकारी के साथ ही मौसम का पूर्वानुमान मिल जाता है, इससे किसान अगले कुछ दिनों के मौसम की जानकारी भी ले सकते हैं इस ऐप से। इसके अलावा बारिश, तापमान, आर्द्रता, हवा की गति जैसी जानकारी भी इस ऐप के जरिए मिलती है। और इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि ऐप में मंडी के भाव की जानकारी भी उपलब्ध रहती है। किसान विभिन्न मंडियों में अपनी फसलों के वर्तमान बाजार भाव देख सकते हैं, इससे किसान अपनी उपज बेचने का सही समय और स्थान चुन सकते हैं। ऐप में फसल सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी जाती है, फसलों में लगने वाले रोगों और कीटों की पहचान करने में इससे सहायता मिलती है, रोग और कीट नियंत्रण के उपाय भी बताए जाते हैं, साथ में पौध संरक्षण के लिए आवश्यक सुझाव उपलब्ध है। हालांकि कृषि विशेषज्ञों की सलाह प्राप्त करने की सुविधा भी इस ऐप के जरिए मिलती है। किसान अपनी समस्याओं का समाधान विशेषज्ञों से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप में उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी होती है, आधुनिक खेती के तरीके और नई तकनीकों का विवरण इसमें उपलब्ध रहता है। उसके अलावा बीजों की जानकारी भी ऐप में उपलब्ध रहती है, उन्नत किस्म के बीजों की जानकारी, उर्वरकों के सही उपयोग की जानकारी, कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग, मृदा स्वास्थ्य यानी सॉइल हेल्थ से संबंधित जानकारी, किसान मिट्टी परीक्षण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नजदीकी कृषि केंद्र, इसके अलावा सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी आप इस ऐप के जरिए हासिल कर सकते हैं। तो बड़े एक काम का ये ऐप है, और जिन्होंने इसको नहीं डाउनलोड किया है तो वो किसान भाई ऐप से डाउनलोड करके और अपने खेती संबंधित तमाम फायदे जो हैं वो ले सकते हैं, उठा सकते हैं। और आइए एक सुनते हैं ब्रजपाल सिंह करोड़ा जी से, कह रहे उठ बंदे जागरे, ये क्या कह रहे हैं, क्यों जगा रहे हैं, वो पहले सुनते आइए।

और अब बात कर लेते हैं इस वक्त कृषि कार्य में इस तरीके से जो कृषि वैज्ञानिक है वो क्या कुछ सलाह दे रहे हैं इस वक्त करने के लिए। तो वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सभी किसानों को ये सलाह दी जाती है कि किसी प्रकार का छिड़काव ना करें, साथ ही खड़ी फसलों और सब्जी नर्सरियों में उचित प्रबंधन करें, दलहनी फसलों और सब्जी नर्सरियों में जल निकास की उचित व्यवस्था करें। इसके अलावा धान की फसल में

पौधे का रंग पीला पड़ गया हो तो पौधे की ऊपरी पत्तियों पीली और नीचे की हरी हो तो इसके लिए जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट 21% ये 6 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से 300 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। इसके अलावा किसानों को सलाह दी जाती है कि बाजरा मक्का सोयाबीन सब्जियों में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई का कार्य जो है वो मौसम साफ हो तो शीघ्र करें और सभी फसलों को सफेद मक्खी और चूचक कीटों की नियमित निगरानी करें। तो इसी के साथ कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हो रहा है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक सुनंदन लाल।

सुबह अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत या आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब गजल कव्वाली के कार्यक्रम के अंतर्गत सुनते हैं चंद खूबसूरत सी कव्वालियां।

Yeah.

0: श्रोताओं गीत गजल के कवाली के कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने सुनी ये खूबसूरत सी कवालियां। यह आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए कांवड़ समितियों की आर्थिक सहायता बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दिल्ली के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी कामों पर असहनीय बोझ न डालें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर सभी लोगों से प्रकृति संरक्षण को जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। ये जानकारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रूपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि योजना का पोर्टल अगले महीने की 1 तारीख से पंजीकरण के लिए खोल दिया जाएगा।
3: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किस्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना का लाभ 21 साल से 60 साल तक की उन महिलाओं को मिलेगा जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि कुछ श्रेणियों की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। इनमें पहले से किसी अन्य आर्थिक सहायता योजना या पेंशन ले रही महिलाएं, आयकर देने वाली महिलाएं, सरकारी कर्मचारी महिलाएं और आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाली महिलाएं शामिल हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है बल्कि इसके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जिम्मेदारी और महिलाओं के समग्र विकास को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इस साल की कांवड़ यात्रा के लिए कांवड़ समितियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 20,000 वर्गफुट से अधिक क्षेत्र के 6 से 12 दिन तक संचालित होने वाले बड़े कांवड़ शिविरों को अब अधिकतम 15 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। साथ ही कांवड़ समितियों को पहले की तरह 1200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा मिलती रहेगी। उन्होंने बताया कि अन्य सभी श्रेणियों के शिविरों की अनुदान राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकार का उद्देश्य कांवड़ समितियों को पर्याप्त सहयोग देकर श्रद्धालुओं के

0: ये बेहतर, सुरक्षित और सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए दिल्ली मेट्रो नमो भारत कॉरिडोर पर इस महीने की 30 तारीख से लेकर अगले महीने की 14 तारीख तक हर रोज 52 अतिरिक्त ट्रेन फेरे चलाने का निर्णय लिया है। NCRTC ने बताया कि अतिरिक्त ट्रेन फेरों की शुरुआत के साथ अब नमो भारत ट्रेनें हर 8 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध हुआ करेंगी। निगम ने कहा कि तेज, समयबद्ध और विश्वसनीय सेवा के कारण नमो भारत इस अवधि में यात्रियों के लिए प्रभावी विकल्प साबित होंगी। दिल्ली सरकार ने आज विश्व प्रकृति संरक्षण के दिवस के अवसर पर असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में एक वृक्षारोपण अभियान चलाया। इस अभियान में राजधानी के 5 विद्यालयों के 430 से अधिक विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भाग लिया। इस अवसर पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली के हरित भविष्य के निर्माण में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी के माध्यम से सरकार आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ, हरित और पर्यावरणीय रूप से अधिक सशक्त राजधानी के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग ECI को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि स्कूल के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी काम का असहनीय बोझ न डाला जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि आयोग की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। दिल्ली में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए सरकारी, नगर निगम और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को बूथ स्तर के अधिकारियों और जनगणना कर्मचारियों के रूप में बड़े पैमाने पर तैनाती को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां की गईं।
1: मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि हालांकि चुनाव आयोग को चुनाव संबंधी कार्यों के लिए शिक्षकों की मांग करने का संवैधानिक अधिकार है, फिर भी उसे बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 के तहत दिए गए जनादेश का ध्यान रखना चाहिए। ये गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों की तैनाती को नियंत्रित करता है और केवल जनगणना, आपदा राहत और चुनाव संबंधी कार्यों के लिए ही ऐसी नियुक्ति की अनुमति देता है। न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान शिक्षकों को चुनाव संबंधी कार्य सौंपते समय शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दिए गए वैधानिक जनादेश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि स्कूल में 6 से 8 घंटे बिताने के बाद शिक्षकों से चुनाव संबंधी कार्य करवाना उनके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से काफी तनावपूर्ण हो सकता है। इसके जवाब में निर्वाचन आयोग ने एक विस्तृत हलफनामा दायर किया। इसमें कहा गया कि स्कूल के घंटों के दौरान SIR ड्यूटी के लिए किसी भी शिक्षक को तैनात नहीं किया जा रहा था और ये अभ्यास सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के सख्त अनुपालन में किया जा रहा था। शिवान की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं प्रशांत कुमार।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति पद के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का उल्लेख किया।
2: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि पिछले 4 वर्षों में समावेशी विकास के साथ साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आत्मगौरव की भावना पुनर्जीवित हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य पूरे देश में भारतीयता की भावना को और मजबूत करना रहा है। पिछले 4 वर्षों में कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की गई हैं, जिनसे औपनिवेशिक मानसिकता के अवशेषों को मिटाने में सफलता मिली है। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति संपदा के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी नामक खेल क्षेत्र और समर्थ आंगन सहपालन शामिल है। राष्ट्रपति मुर्मू ने हरित और समावेशी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक निशुल्क इलेक्ट्रिक बस सेवा, राष्ट्रपति भवन एक्सेस एंड हेरिटेज इंटरसेप्टर राही का भी शुभारंभ किया। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि भारत का संवैधानिक लोकतंत्र उन संस्थाओं की मजबूती पर आधारित है जो अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए एक दूसरे का सम्मान करती हैं। ये बात श्री गुप्ता ने आज युवा जनसंपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली विधानसभा के।

0: भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करना, संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने और संसदीय संस्थाओं की गरिमा की रक्षा करने में विधायिका की भूमिका पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके अलावा श्री गुप्ता ने संसदीय परंपराओं, विधायी प्रक्रियाओं और देश की सेवा में संवैधानिक संस्थाओं की साझा जिम्मेदारी के महत्व पर भी बल दिया। शिवांकी रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज द्वारका के सेक्टर 29 में एक आधुनिक डॉग शेल्टर की आधारशिला रखी। श्री संधू ने बताया कि लगभग 6000 से अधिक वर्ग मीटर में फैली ये सुविधा आवारा कुत्तों के लिए सुरक्षित आश्रय, देखभाल और पुनर्वास की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि ये केंद्र आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ दिल्ली नगर निगम द्वारा विकसित किया जाएगा, जिसमें आवारा कुत्तों की सेहत का ध्यान रखा जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज जनसेवा सदन से रोहिणी तक डीटीसी बस में यात्रा कर क्षेत्र का व्यापक स्तरीय निरीक्षण किया। इस दौरान श्रीमती गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न मार्गों पर यात्रा कर मॉनसून के दौरान शहर की जमीनी स्थिति का आकलन किया और नागरिक सुविधाओं से जुड़े महत्वपूर्ण कामों की समीक्षा की।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जन सेवा सदन से बस द्वारा निरीक्षण यात्रा प्रारंभ की, जो मधुबन चौक होते हुए रोहिणी सेक्टर 33 के डीडीएस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक पहुंची। यात्रा के दौरान उन्होंने मार्ग में लैंडफिल साइटों पर चल रहे कचरा निष्पादन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। श्रीमती गुप्ता ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि राजधानी में कूड़े के पहाड़ों को समाप्त करने के लिए चल रहे अभियान में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री गुप्ता ने वर्षा के कारण संभावित जल भराव वाले क्षेत्रों, प्रमुख सड़कों की सफाई व्यवस्था और सड़क किनारे जमा मलबे और कचरे की स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सड़कों के चौड़ीकरण, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और गड्ढों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर दिल्ली कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह समेत संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर सभी लोगों से प्रकृति संरक्षण को अपनी जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि जल, वायु, वन और भूमि का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का आधार है। उन्होंने सभी लोगों से प्रकृति संरक्षण के प्रति अपने संकल्प को और सशक्त करने तथा हरित, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल दिल्ली के निर्माण में साझा जिम्मेदारी निभाने को कहा। मुख्यमंत्री ने आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर सभी लोगों से हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए समय पर जांच, टीकाकरण कराने और आवश्यकता पड़ने पर उचित उपचार लेने का आह्वान भी किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सही जानकारी और समय रहते उठाया गया कदम अनेक जीवनों की रक्षा कर सकता है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने सभी लोगों से स्वास्थ्य के प्रति सजग जीवन शैली अपनाने को कहा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के एक मामले में दिल्ली लोक निर्माण विभाग के एक सहायक अभियंता और एक निजी कंपनी के दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनमें उसी कंपनी का प्रतिनिधि और एक कर्मचारी भी शामिल है। जांच एजेंसी के अनुसार लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता अपने पद का दुरुपयोग कर रोहिणी स्थित एक निजी कंपनी को विभाग की ओर से सौंपे गए विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन में अनुचित आधिकारिक लाभ पहुंचा रहे थे। राजधानी के नरेला क्षेत्र में दिल्ली मादक पदार्थ नियंत्रण विभाग ने हरियाणा के खाद्य और औषधि प्रशासन और दिल्ली पुलिस के साथ दो दिवसीय संयुक्त अभियान चलाकर नकली दवाओं के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इस अभियान के दौरान भारी मात्रा में नकली दवाइयां, रासायनिक कच्चा माल, मैन्युफैक्चरिंग उपकरण और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए गए। राजधानी दिल्ली में आज दिनभर तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 25.5 डिग्री सेल्सियस। विभाग ने कल भी तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए कांवड़ समितियों की आर्थिक सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन

0: निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दिल्ली के शिक्षकों पर चुनाव संबंधी कामों का असहनीय बोझ न डाला जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के 4 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर सभी लोगों से प्रकृति संरक्षण को जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए खूबसूरत से ये फिल्मी गीत। आइए इस खूबसूरत नगमे से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।

0: अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: गीत मालिका कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आइए कार्यक्रम मुख्य गति देते हुए एक और खूबसूरत से गीत की ओर लेकर चलते हैं और स्वर हैं सोनू निगम और अलका याग्निक के।
2: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बनाई। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
3: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होठों को छूने।

0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूं। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।
1: अच्छा। ला ला ला ला ला।

साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।

0: श्रोता भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत आपने ये खूबसूरत से फिल्मी गीतों का आज आनंद लिया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी, फिर अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
3: यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस गवर्नमेंट।
4: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है, ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
3: टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस।
2: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
5: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
2: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी निष्पक्ष परीक्षा का हकदार

0: तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
1: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
2: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
3: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
3: ओडिशा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उस पे सवार थे। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहां के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
0: इस वर्ष जून महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देशभर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी

0: कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपने सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उड़ीसा में लगातार हो रही मानसून की बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियां के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाश समाचार,
1: भुवनेश्वर। केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले केवल 6 जिलों में येलो अलर्ट लागू था, लेकिन शाम तक विभाग ने 4 और जिलों को अलर्ट की सूची में शामिल कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने तथा जारी परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए इस महीने की 31 तारीख तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रूपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का पोर्टल अगले महीने की 1 तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। और अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में धावक विशाल टीके और तैराक श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में पदक की उम्मीद बनाए रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त जबकि दूसरा 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से स्ट्रोक के बाद होने वाले वाचाघात एफेसिया के लिए मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया है। ये एक संगीत आधारित उपचार है जो स्ट्रोक के बाद ठीक हुए लोगों को दोबारा बोलने की स्थिति में लाने में मदद करता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सामने आपको बता दें, कुछ देर बाद रानी गजलों का प्रोग्राम होगा, एक फनकार। आज इस प्रोग्राम में आप समाप्त फरमाएंगे चंदन दास की गाई खैर फिल्मी गजलें। पौने दस बजे खबरें नशर की जाएंगे और 9:55 पर सुनिएगा कुछ बातें आपकी सेहत के हवाले से। रात 2 बजे पेश करेंगे प्रोग्राम मार्केट मंत्रा। फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आप सुन सकते हैं तामिल इरशाद 10:30 से लेकर 11:30 तक। इस दौरान 11 बजे सुनिएगा खबरें बड़े सगीर से। 11:30 पर हम पेश करेंगे प्रोग्राम सुर्खियों में। रात 12:45 बज मौसीक प्रोग्राम में समाप्त फरमाइएगा पंडित जजराज से राग जय जयवंती में ख्याल। 12:00 आलमी खबरें नशर की जाएंगी और 12:10 पर क्लासिक की मौसीकी प्रोग्राम में आज सुनिएगा पंडित श्री कृष्ण शर्मा से गिटार पर बजाया राग चारुकेशी। सदरा फिल्मी नगमों का लुत्फ आप ले सकते हैं रात 12:30 आखिर शब प्रोग्राम के तहत। यह प्रोग्राम जारी रहेगा 12:50 तक। 12:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 1:00 हमारी आज की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने तक मुख्तसर तारुफ हमारे यहां से नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। यह आकाशवाणी है, इस वक्त आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1073 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार। आज इस प्रोग्राम में समाप्त फरमाइए चंदन दास की गाई गजलें। आवाज कर रहे हैं प्याम सईदी के इस कलाम के साथ।

सुमा फरमा रहे थे प्रोग्राम एक फनकार। आज के इस प्रोग्राम में आप सुन रहे थे चंदन दास की गाई कुछ गैर फिल्मी गजलें। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। शब के 9:30 बजे हैं, अब खबरें नशर होंगी।

0: प्रमोशन हो जाती है, लेकिन पिता जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर, उसमें कैसे बन जाता है जबकि उसमें कोई चीज जा ही नहीं सकती?
1: गॉल ब्लैडर में बाइल की कंसंट्रेशन से बनते हैं, जिनके बॉडी में टेंडेंसी रहती है कि बाइल उनका ज्यादा गाढ़ा होता है। लीवर से जो जूसेस जाते हैं वो पहले गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होते हैं, वहां से जब हम कोई तली हुई चीज या हैवी खाना खाते हैं उस समय बाइल रिलीज होता है गॉल ब्लैडर की सिकुड़ने से। और गॉल ब्लैडर की वॉल में इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू जा सकता है और इन्फेक्टेड गॉल ब्लैडर में स्टोन्स जल्दी बनते हैं, और जिसका बाइल ज्यादा थिक है, गाढ़ा है, उनमें स्टोन्स ज्यादा बनते हैं। और कुछ डाइट के फैक्टर्स जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन, बिलिरुबिन स्टोन्स बनाते हैं, वो भी हो सकते हैं।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पर पहले हम चूंकि सिर्फ पित्त के बारे में बात कर लेंगे, उसके बाद फिर किडनी और प्रोस्टेट के बारे में बात करेंगे। आमतौर पर ये कहा जाता है कि साहब अगर इसमें पथरी हो जाए तो निकलती नहीं है, इसको सर्जरी करानी पड़ती है, ऑपरेट कराना पड़ता है, क्या इफेक्ट है?
1: गॉल ब्लैडर स्टोन में सर्जरी, गॉल ब्लैडर और स्टोन दोनों का रिमूवल एक साथ ही है। कुछ केसेस में गॉल ब्लैडर से स्टोन स्लिप करके अपने आप भी निकल जाते हैं, लेकिन ऐसे स्टोन्स जो स्लिप करके निकलते हैं वो जॉन्डिस, फीवर और प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, जिनसे बाद में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। यदि गॉल ब्लैडर में छोटे स्टोन्स हैं, बड़े स्टोन्स हैं, किसी तरह के भी स्टोन्स हैं, तो हमें गॉल ब्लैडर सर्जरी करा लेना ही अच्छा है। और स्पेसिफिकली सो जिन केसेस में सिम्टम्स ज्यादा हैं उनको तो जरूर कराना है, एसिम्टोमेटिक को फॉलोअप पे रहना चाहिए, जिन केसेस में जरूरत पड़ती रहे उनको ऑपरेट होते रहना चाहिए।
0: सिम्टम क्या क्या होते हैं डॉक्टर साहब इसके?
1: अपच सबसे कॉमन सिम्टम है,
0: इनडाइजेशन,
1: जिसको हम अपच कह सकते हैं, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं मैदा खराब है, पाचन शक्ति कम है, और तला हुआ और हैवी खाना जब भी खाएंगे तो तकलीफ होगी, उल्टी हो सकती है, डकार आ सकते हैं, पेट दर्द हो सकता है, और जब गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन होगा तो फीवर भी हो सकता है और पेन बहुत सीवियर भी होता है। इसमें स्टोन्स कई बार गॉल ब्लैडर की डक्ट में फंस जाते हैं तो पीलिया भी होता है।
0: अब आते हैं जरा किडनी की जानी, देखिए कुदरत ने हर इंसान के अंदर दो गुर्दे दे रखे हैं और उनका काम ही फिल्टर करना है, लेकिन जब वो खुद फिल्टर कर रहे हैं तो उनकी जाली में ऐसी क्या चीज फंस जाती है कि वो पत्थर बन जाती है और फिर बड़ी तकलीफ होती है?
1: बेसिकली स्टोन बनने का जो कारण है वो क्रिस्टल्स हैं, ऑक्सीडेट क्रिस्टल्स, फॉस्फेट क्रिस्टल्स, कैल्शियम क्रिस्टल्स, तो
0: पानी में होते हैं,
1: सिस्टीन, ये पानी में होते हैं और कंसंट्रेट हो जाते हैं जब यूरिन में, और एक जगह एक पार्टिकल डिपॉजिट होता है, उसको उसके ऊपर लेयर्स बनती चली जाती हैं, तो वो लेयर्स ही बनने के बाद स्टोन का रूप ले लेती हैं। बहुत बार स्टोन सिम्टोमेटिक होते हैं, बहुत बार दर्द भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, अंदर बनते चले जाते हैं। तो आमतौर पे इसमें एडवाइस किया जाता है कि पानी खूब पिए, उसका पर्पज यही होता है कि क्रिस्टल्स डिपॉजिट ही ना हो पाए, डिपॉजिट होंगे तभी बड़े होंगे, तभी स्टोन बनेंगे।
0: तो क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि किसी के एक किडनी में स्टोन हो तो दूसरे में भी हो जाए, या दोनों में
1: आपस में? इस बात की वजह से कि एक राइट में स्टोन है तो लेफ्ट में हो जाएगा, ऐसा नहीं है कोई।
0: अच्छा अब आते हैं प्रोस्टेट की जानी, कहते हैं प्रोस्टेट कैंसर के जो केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है?
1: प्रोस्टेट कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, इसको हम और तरीके से देखें तो जल्दी समझेंगे।
0: जी,
1: पहले से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, तो प्रोस्टेट कैंसर में साइंटिफिकली एस्टेब्लिश हो चुका है विद द एडवांसिंग एज इसकी इंसिडेंस बढ़ती है, प्रेवलेंस बढ़ती है। जितनी एज हमारी ज्यादा होती जाएगी उतने चांसेस होते जाएंगे प्रोस्टेट कैंसर मिलने के, और प्रोस्टेट कैंसर बहुत केसेस में एसिम्टोमेटिक विदाउट एनी हार्म पूरी लाइफ पड़ा रहता है और खत्म हो जाती है अपने आप बाद। प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण बहुत बार प्रोस्टेट के जो बेनाइन डिजीज है वैसे ही होते हैं, वही यूरिनरी प्रॉब्लम्स, रात को उठना, फ्रीक्वेंसी, ऑब्स्ट्रक्शन, रिटेंशन, वो सब चीजें होती है। बहुत केसेस में प्रोस्टेट कैंसर देर से प्रेजेंट करता है, तब तक वो बोन में जा चुका होता है, और कमर में दर्द और नीचे का पैरालिसिस या जोड़ों में कहीं दर्द जहां ज्वाइंट में पहुंच गया तो उससे भी प्रेजेंट करता है।
0: जरूरत इस बात की है कि हम अवेयरनेस लाए, हेल्थ अवेयरनेस, एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे से समझें। डॉक्टर साहब ने कुछ बहुत अहम बातें बताई हैं, उनको जहन में रखें, पानी बराबर पीते रहें, खाना हेल्दी खाएं, जो भी कुछ खा रहे हैं साफ सुथरा खाएं, ताकि आपका जहन, आपका जिस्म जो है सेहतमंद रहे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।
2: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ एके भट्टाचार्य. कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: नमस्कार. थैंक यू.
1: और सबसे पहले नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडस्ट्रीज एंड मार्जिनली डाउन. सेंसेक्स ड्रॉप्स 70 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्ड एट 23,985. इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोज बाय 7.3% इन जून दिस ईयर एंड मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडस्ट्रीज एंड इन द नेगेटिव टेरिटरी. साउथ कोरियाज कॉस्पी इंडेक्स प्लमट्स नियरली 11%.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली गिरावट. सेंसेक्स में 70 अंक की सुस्ती और निफ्टी 23,985 पर बंद हुआ. भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर जून महीने में 7.3% की बढ़त और अधिकतर एशियाई शेयर बाजार आज नकारात्मक रुख के साथ बंद हुए. दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में सबसे ज्यादा लगभग 11% का नुकसान.

0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और बढ़ता अब खबरों की तरफ, घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 70 अंक नीचे आकर 76,766 पर पहुंच गए, जबकि निफ्टी 11 अंक फिसलकर 30,985 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। मिड कैप सूचकांक में लगभग 0.1% की बढ़त हुई, जबकि स्मॉल कैप में 0.2% की सुस्ती आई। इससे पहले एशियाई शेयर बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के कारण बाजार आज 70 स्तर पर खुले। दोनों प्रमुख सूचकांकों में उतार चढ़ाव तो होता रहा और अंतर्देशीय सत्र के दौरान वे एक सीमित दायरे में कारोबार करते रहे।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड मार्जिनली लोअर टुडे। सेंसेक्स डिप बाय 70 पॉइंट्स टू क्लोज एट 76,766। निफ्टी ड्रॉप बाय 11 पॉइंट्स टू सेटल एट 23,985। द ब्रॉडर मार्केट एट द एनएससी डिस्प्लेड अ मिक्स्ड ट्रेंड। द मिड कैप 100 इंडेक्स rose nearly 0.1%, while the small cap 100 index fell over 0.2%. Earlier, the markets opened on a flat note, tracking weak cues from the Asian markets. Both the benchmark indices swung between gains and losses and traded within a narrow range during the intraday session.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों में आज बढ़त दर्ज हुई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में टीसीएस लगभग 4.5% ऊपर आ गया। एटर्नल के शेयर 4% चढ़ गए और टेक महिंद्रा में लगभग 3.9% की बढ़त दर्ज हुई। दूसरी ओर हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर लगभग 7% बढ़त गए। डीएल में 4.4% की गिरावट आई और एनटीपीसी के शेयर लगभग 2% नीचे आ गए।
0: इन द सेक्टोरल इंडस्ट्रीज ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 15 out of the 26 sectors ended in the negative zone. Among the top laggards, the capital goods dropped 2.4%, power dipped almost 2.4%, and utilities fell more than 1.7%. In contrast, focused IT advanced over 3.4%, IT rose 3%, and realty gained 2.2%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,629 companies declined, 1,626 companies advanced, and 169 companies remain unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 4 पैसे मजबूत हुआ और 1 अमेरिकी डॉलर की तुलना में 95.85 रूपये पर बंद हुआ। एटीबी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के बाजार पर अगर नजर डालते हैं तो बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव हमें देखने को नहीं मिला। एक मामूली गिरावट के साथ बाजार बंद हुए हैं, लेकिन

0: से बाजारों की तरफ देखें तो बड़ा गहरा असर हमें देखने मिला तमाम चीजों का। तो इसमें मुनाफा वसूली का कितना योगदान रहा या फिर जो जियो पोलिटिकल स्थितियां हैं उनका योगदान ज्यादा था या कुछ अन्य कारण रहे?
1: देखिए, अगर वो भारत की अगर बात कर रहे हैं तो समझता हूं कि जो भारत की जो आज की जो स्टॉक मार्केट में जो जो डेवलपमेंट्स हुई है वो अगर आप पहले सत्र दो तीन सत्र में देखें उसी आज के में तो उनमें काफी पॉजिटिव था। तो मुझे असेसमेंट मेरा ये है कि जो एशियन मार्केट में पर्टिकुलरली जो कोरियन मार्केट में जो चिप मेकर्स के साथ जो हंगामा जो हुआ चिप मेकर्स के ऊपर जो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई है लोगों ने एशियन मार्केट में ज्यादातर उसका प्रभाव थोड़ा बहुत हमारे मार्केट में भी आया है और उसीलिए जो गेन्स फर्स्ट हाफ में थी वो गेन्स न्यूट्रलाइज होकर थोड़ी बहुत मार्जिनल लॉस में 70 पॉइंट जैसे आपने कहा सेंसेक्स में हुआ है। पर देखने वाली बात यह है कि कल के जो रिकवरी हुई स्ट्रांग रिकवरी और आज के जो तेल के जो दाम गिरने के बाद भी स्टॉक मार्केट में जो एक स्टेबिलिटी जो आई है पर्टिकुलरली इन द आईटी सेक्टर में वो नोटिसेबल है और मैं समझता हूं कि अभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर जो इंटरनल जो एक जो पुल है इंटरनल मार्केट का वो ग्लोबल डेवलपमेंट को ऊपर ओवरकम करके वो दिखा रहा है।
0: पिछले सप्ताह में अगर बात करें तो लगातार पांच दिन तक गिरावट आई, कल एक बढ़िया दिन देखने को मिला कारोबार के नजरिए से, खरीदारी काफी है, लेकिन आज बड़ा नपा तुला रवैया देखने का मिला निवेशकों का।
1: उसका कारण यह है कि जो कल की जो रिकवरी थी बहुत ही शार्प रिकवरी थी और उसका कारण भी बहुत ही क्लियर था कि उसके कल जो है वो तेलों के दाम गिरने लगे क्योंकि ट्रंप साहब ने ऐलान किया था फ्राइडे को कि वो शायद ये जो युद्ध को और भी आगे ज्यादा एस्केलेशन नहीं करेंगे, शायद किस तरह से एस्केलेट करेंगे कैसे करेंगे वो मार्केट का जो सिग्नल जो था वो पॉजिटिव लगा मार्केट को, तो इसीलिए सारी काफी गेन्स आई। और जो साथ का तेलों के दाम $94 था वो कल बनाकर 84 में आ गया, आज भी वही चीज हुआ, तेलों के दाम नीचे आ रहे हैं, रुपया इसीलिए थोड़ा बहुत स्ट्रेंथन हो रहा है और इसीलिए मैं समझता हूं कि जो आज की जो स्टॉक मार्केट जो है वो सिर्फ वो जो साउथ कोरिया में जो और एशियन मार्केट्स में जो चिप मेकर्स की लेकर जो हंगामा जो हो रहा है उसके लिए थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हुआ है, बाकी कोई कारण नहीं है।
2: देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू माय क्वेश्चन। वन इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स वेंट अप बाय 3.32% द निफ्टी आईटी इंडेक्स एंड वी सॉ द shares rising between 4.5 and 3.9%, short covering in this sector. And you know, these tech stocks, their earnings, the revenue guidance seems to be quite good, including the net profitability, and their earnings are in foreign exchange as well. And there is also the question of the rupee to the dollar, and the dollar index is at 101.561. And what we are seeing right now is also action by the central bank at the same time, because they are saying that the inflows of FCNR, foreign currency non-resident accounts, have actually gone up by $32 billion because, you know, the interest on these fixed-term deposits, which is for 1 to 5 years, is between 3 and 7.4%. So it appears that the foreign exchange earnings of IT companies is a factor in the short covering that we're seeing right now, while at the same time, we're also seeing that the rupee is strengthening and the government is also saying that the central bank is saying that you also have healthy foreign exchange reserves. How do you see pair the rupee to the dollar while at the same time also look at the IT index?
1: Well, what is happening right now is at one level you are seeing that India's external sector is getting the benefit of some of the policy measures that were taken a few weeks ago, which is why the FCNRB deposits are expected to flow in. Many of the private sector banks banks, even the public sector banks are reporting decent amount of flows coming in. So as a result, India's balance of payment deficit, which was earlier expected or feared to be much larger, which will not be that much. So this is having a positive impact on the rupee, because this essentially means that India has the ability and the wherewithal and the muscle to deal with its import liabilities without much domestic problem. That is one level. And the other level is, if you refer to the IT sector's performance, the IT sector's performance in today's stock market has done very well. They've almost gone up by 3% or so. Now, this is the reason, is because the India's IT sector is dependent on earnings through their services exports and not so much on the AI boom. What we're seeing globally right now is a kind of almost like a bloodbath. There was a circuit breaker was triggered in the South Korean market.
2: There's a sell-off in those
1: there was a circuit breaker, which means that if it is close to 10%, that the trading comes to a halt. So this is what happened, and this was purely because the over exuberance or overconfidence in the chip industry's ability to come in with greater returns, that has been dashed, and the demand for chips, particularly of the Chinese companies launch of the new product, has also taken a bit of a hit. Whereas in the Indian IT sector has not been influenced by the chip and the AI thing. They are still the old play of services and IT services play, the global capability center play, which is why the Indian IT sector is still maintaining growth, whereas globally there is a bit of a mayhem there.
2: It's always a question of valuation. So now you have the IT index showing a high valuation. The RBI is saying that the rupee is currently undervalued, evidenced by the FCNR deposits as well. While at the same time, the Asian markets, the AI related boom is showing that those shares are actually overvalued. So clearly, this is a valuation story going on right now, IT and how the dollar is performing.
1: To a great extent, yes. Don't underestimate also the role that the crude oil prices have played here. The crude oil prices have also softened considerably in the last couple of days. So that has also contributed to India's external sector scenario or the outlook.
2: Was there a profit booking in the capital goods sector, which fell by 2.4%, because there is a leading company in the capital goods sector which has given good numbers in terms of revenue, earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, margin, order book and net profitability?
1: Whenever a company, in this case the company that you're referring to, if they come up with decent results, profit booking is par for the course. So I won't be ruling that out.
0: AKB, agar is pure mahine hum July ke mahine mein nazar dala, to ek sector rotation hume nazar aaya hai. Chahe FIIs ke nazariye se dekhe ya DIIs ke nazariye se dekhe, ek bada change hume dekhne ko mil raha hai. Aur aise samay jab monsoon hamare yahan par abhi monsoon ka season hai aur tamam cheeze ho rahi hai, to lagta hai ki ye jo change aa raha hai ye nivesh ki drishti se sahi hai ya iska logon ko fayda hoga, jo munafa vasooli करना चाहते हैं?
1: देखिए, बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं, तो जो आप बिकवाली की बात कर रहे हैं, आईपीओ के लिए भी हो सकता है. नंबर वन. नंबर टू, जो मानसून की जो बात आपने की, मानसून की जो हमारे जो डेफिसिट है, वो हालांकि वो 40% डेफिसिट अब नहीं रही है, अब घटकर 14% हो गई थी, फिर अब बढ़कर 18% हो गई है. तो मानसून में जो एग्रीकल्चर की जो एक इम्पैक्ट होने वाली थी, वो अभी भी जो लगता है कि थोड़ा बहुत सीमित है. और तीसरी बात यह है कि जो हमारे जो आईटी सेक्टर जो है, उसमें जो एक जोश दिख रहा है, वो एफआईआईस को अच्छा लग रहा है. इसलिए अगर आप जुलाई का पूरा अगर ट्रेंड देखेंगे, एफआईआईस उसमें आ रहा था, उसकी तरह पुल आउट नहीं किया उन्होंने इस मार्केट में वो रहने का तय किया. हालांकि उनको ये मालूम है कि फेड में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, और शायद ये मौका है कुछ पैसे बनाने का, क्या करने का. तो ये जो मैं मतलब ये बोलने का मेरा तात्पर्य यही था कि ये एक टेम्पररी चीज है, क्योंकि जो आप देखेंगे फेड अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो ये एफआईएस का रुख शायद बदल सकता है, तो कितने दिन तक ये टेंडेंसी ये सेंटिमेंट बरकरार रहे उसमें एक प्रश्न चिन्ह।

0: अगर हम बात करें तो स्टेट का जो जो भी रिजल्ट होगा वो कितना इम्पैक्टफुल आपको लगता है?
1: इम्पैक्टफुल तो जरूर होगा इस हमारे स्टॉक मार्केट में, FII से पुल आउट जरूर होगा और स्टॉक मार्केट को उसको उसकी जो जो डेवलपमेंट जो है इम्पैक्ट है उसको समझना पड़ेगा
0: जी। आगे बढ़ते हैं, हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने आज चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए अपने वित्तीय नतीजे जारी किए हैं। कंपनी की कुल आय सालाना आधार पर 9.8% से ज्यादा बढ़कर 17,529 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं वार्षिक आधार पर कंपनी का सकल लाभ 3% घटकर 2,673 करोड़ रुपए रह गया है।
2: एकेबी, माय क्वेश्चन इज ऑन द एफएमसीजी सेक्टर। वी सीइंग दैट द रेन्स आर बैक इन द मंथ ऑफ जुलाई आफ्टर डिफिशिएंट रेन्स इन द मंथ ऑफ जून। वी आर सीइंग इन एग्रीकल्चर द सोइंग ऑफ खरीफ क्रॉप्स, पैडी, पल्सेस, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड शुगर केन। सो व्हेन इज द जोश गोना कम बैक इन द एफएमसीजी सेक्टर?
1: Early, number one, because the demand outlook is still very muted, and if rains so far have held up, but it remains to be seen that how long these rains outlook continues to give confidence over agricultural output remaining what they were originally projected. So, FMCG sector is very, very sensitive to how the rural economy fares. So the rural economy does not do well, but in the manner in which it is happening so far, I think rural economy will not be largely affected. So to that extent, FMCG sector's outlook is not that bad. Josh may not come back, but the outlook is not that bad.
2: More news. Larsen & Toubro Limited today reported its financial results for the first quarter of the current fiscal year. The company's consolidated revenue from operations rose nearly 6.7% year-on-year to 67,942 crore rupees. The firm's net profit increased by around 14% to 4,123 crore rupees on an annual basis. AKB, we earlier discussed that capital goods sector actually fell by 2.4% in trading today, the Nifty index. Is it because engineering goods to some extent are being hit by all these protectionism by the US market in terms of its tariff policy? What is going to be the likely outlook for capital goods? Because as far as our net exports are concerned, one of the chief contributors is our exports of capital goods.
1: No, I am not at all that defensive on the capital goods sector, whatever may have happened in the stock market today. As long as the infrastructure sector is doing well, as long as the construction sector and the sign of construction sector doing well is the last to be results today. Is doing well. I don't see the capital goods sector faring poorly. So if you are betting on the capital goods sector, then I think you are betting the right sector.
0: आगे बढ़ते हैं, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की बढ़ोतरी हुई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने संबंध में आंकड़े जारी किए हैं। इससे पहले मई में विकास दर को थोड़ा कम करके 5% बताया गया था। हालांकि मंत्रालय ने कहा है कि जून महीने में सभी चार बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई। बिजली और गैस आपूर्ति में 10.6% तथा विनिर्माण में 7.8% की बढ़ोतरी है। जलापूर्ति, सीवरेज और कचरा प्रबंधन में 6.1% की तेजी आई। वहीं खनन और उत्खनन क्षेत्र में 1% की मामूली बढ़ोतरी हुई है। इतने ये जो आंकड़े आए हैं IIP के हमारे सामने हैं, किस तरह से इन्हें आप देखते हैं, खासतौर पे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से और भारत की जो स्टैंडिंग पोजीशन है राइट नाउ, उसके आधार पर आपको क्या एक्सपेक्टेशन है इसमें?
1: देखिए, इसमें अगर आप सेक्टर को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या हमारी इकोनॉमी की जो स्थिति है। जून का महीने का नंबर है ये
0: जी।
1: और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और गैस सप्लाई देखेंगे, उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है 10%। और अगर आप हमारी ट्रांसमिशन सेक्टर की परफॉर्मेंस, पावर सेक्टर की परफॉर्मेंस से जून के महीने में देखेंगे कि डिमांड ज्यादा बढ़ने के बाद भी मौजूद जो जिस तरह से पावर सप्लाई, जनरेशन और सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एकदम इंटैक्ट रही, उसी का प्रतिफलन आप देख रहे हैं कि 10.6% का ग्रोथ आपका इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो 7.8% ग्रोथ जो हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आईआईपी का जो शेयर है वो काफी ज्यादा है, तो मुझे लग रहा है कि ये जून के महीने में जो बरसात के आने के पहले जो एक हम

0: सर्च देखते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देख रहे हैं, और बाकी जो माइनिंग एंड क्वारिंग में है उसमें जरा मेरे ख्याल से शायद जून के महीने में लास्ट ईयर बहुत हाई लेवल बेस था, उसी का बेस इफेक्ट दिख रहा है। पर ऑन द होल जो परफॉर्मेंस आईआईपी के लिए परफॉर्मेंस है वो मैं समझता हूँ कि काफी आशाजनक।
1: देखिए इसमें पावर सेक्टर पर अगर हम नजर डालें तो शेयर मार्केट में परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा चढ़ते हुए ग्राफ में नहीं देखी गई है लास्ट कुछ मंथ की बात करें, कुछ दिन की बात करें, इसके पीछे क्या हो रहा है?
0: वो ये जो पावर की जो आईआईपी में जो आप देख रहे हैं वो पावर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में देख रहे हैं
1: जी।
0: पर मैं समझता हूँ कि जो पावर सेक्टर के स्टॉक मार्केट में जो है ज्यादातर कंपनियां वो पावर इक्विपमेंट और पावर सप्लाई में ज्यादा वो है, तो उनका जो नजरिया या उनका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी डिफरेंट है, वो जो है सप्लाई और प्रोडक्शन के ऊपर
2: Just my question on manufacturing. We have the figures for the month of July PMI, which is at 53.9, and June was slightly higher, 54.2. But right now, the government of India is also giving a massive push to manufacturing. For instance, we have the news on the toy industry. The Commerce and Industry Ministry has said that we are pushing for a 5% share of the global market when it comes to toys. Now, it's one of many manufactured items. How do you see this push towards China?
0: Well, I think that the China Plus strategy has not really paid us off in a big way. Where it has paid off is only in one sector, which is in the mobile phone manufacturing sector, through the Apple's mobile phone manufacturing, through Tata Electronics, and even the Chinese, the Taiwanese companies perform factories here. So I think the manufacturing sector performance is largely limited to a few sectors, and it is not widespread, and it is very necessary that the manufacturing sector growth not just shows up with a 7.8% growth, it should be in double digits. So this is, that is only will give you a kind of employment growth that this country needs.
1: अधिकतर एशियाई शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 10.8% नीचे आ गया, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच में निवेशकों ने काफी टेक शेयर बेचे। इससे पहले इस सूचकांक में 8% की अधिक गिरावट आई थी, जिसके कारण कोरियाई एक्सचेंज को सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ा और 20 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। यह साल 7वीं बार था जब एक्सचेंज ने सर्किट ब्रेकर लगाया। ताइवान का टैक्स 4.6% से ज्यादा टूट गया। जापान का निकेई 3.9% से अधिक नीचे आ गया। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक लगभग 1.2% की ओर गया। हालांकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ हांगकांग का हैंगसिंग इंडेक्स आज 0.4% के लाभ में रहा। एकेबी आज की बड़ी बात यह रही कि कोरियाई एक्सचेंज को सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ा, 20 मिनट की ट्रेडिंग रोकनी पड़ी, लेकिन जिस तरह से गिरावट हमने देखी है ऑलमोस्ट 11% के आसपास गिरावट, एक बड़ा नंबर है, बहुत समय बाद यह नंबर देखने मिला, इसे मुनाफे वसूली की वजह माना जा सकता है। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि टेक्स सेक्टर में कोई बड़ा करेक्शन आ चुका है, आने वाला है।
0: ये मुनाफा वसूली नहीं है, ये जो एक्सबेरेंस जो था, ओवर कॉन्फिडेंस जो था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर, स्पेशली जो चिप मेकिंग की जो डिमांड जो लोग कह रहे थे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, डेटा सेंटर्स को बनाना पड़ेगा और चिप की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ेगी, पिछले कई दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डिमांड के प्रोजेक्शन जो है उनकी एक बहुत बड़ी रिवीजन हुई है। उस रिवीजन से जो जिस डिमांड के तरे स्टॉक मार्केट में चिप मेकर की जो प्राइसेस बढ़ रही थी उसमें यह धक्का आया है, और मैं समझता हूं कि ये एक रियलिटी चेक है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड स्टॉक्स और चिप मेकिंग स्टॉक्स के ऊपर, और कोरियन मार्केट जो बहुत ज्यादा इसके ऊपर निर्भरशील है उनकी मार्केट, उसको ये पहला धक्का मिला है।
2: मूविंग ऑन टू द क्रूड ऑयल मार्केट, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस फेल टुडे। व्हेन क्रूड वाज ट्रेडिंग 1.7% डाउन एट $86.85 पर बैरल इन इंट्राडे ट्रेड। वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट WTI क्रूड वाज ट्रेडिंग 1.4% डाउन एट $81.41 पर बैरल व्हेन रिपोर्ट्स lost came in. AKB, all the news is centered around the Strait of Hormuz, where 20% of oil and gas flows through. But there is also the Red Sea. There is also action in the Black Sea. How do you see oil prices in the short to medium term, especially with India's reliance on imports?
0: Well, it is very difficult to estimate or project what kind of trajectory the Brent crude oil prices or the West Texan crude oil prices will take, for the simple reason that the global situation, particularly in West Asia, is so volatile, so uncertain. I mean, if the Brent crude oil prices came down a bit, that is because Mr. Trump decided not to escalate his offensive against Iran. So as a result of which, Brent crude oil prices come down. So as long as these things will continue, I think the crude oil prices will keep going up and down. And for us, for the Indian economy, it is necessary, and it has already done that, diversifying its sources, diversifying its supplies, and so therefore that's the way it will go on.
2: Let's move on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 1% down at 1,42,380 rupees per 10 grams, while silver was trading 2% down at 2,17,340 rupees per kilogram a short while ago.
1: मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 1% गिरकर 1,41,686 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, और सितंबर अनुबंध वाली चांदी 2.1% की गिरावट के साथ 2,16,420 रुपए पर थी। एक अभी कम्युनिटीज के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कैसा परफॉर्मेंस इस समय का उनका चल रहा है, और जो भी जिस तरह की स्थिति उनका कैसा असर है उस पर?
0: देखिए, इस वक्त जो फेस्टिवल सीजन एक महीने बाद शुरू हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो नरमी दिख रही है वो नरमी ज्यादा देर नहीं रहेगी। डिमांड बढ़ने वाली है, और वो डिमांड जब फेस्टिवल सीजन में डिमांड बढ़ेगी तो मैं समझता हूँ कि इनके जो जो जो येलो मेटल्स जो है इनकी भी डिमांड बढ़ेगी, और उनके दाम भी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट आएगी, इंक्रीज आएगी।
1: लेकिन इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडस्ट्रीज एंड मार्जिनली डाउन। सेंसेक्स ड्रॉप 70 पॉइंट्स। निफ्टी सेटल्ड एट 23,985। इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोज बाय 7.3% इन June this year, and most Asian stock market indices end in the negative territory. South Korea's Kospi index plummets nearly 11%. And that's it in this edition of Market Mantra for now.
1: Namaskar. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार क्योंकि अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत है फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामीली इरशाद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब।

और इमरान खान, कुमारगली कालीगांव से पांडू चंदन, उषा चंदन और प्रतीक्ष चंदन, और बड़ी अभी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय दर्द। ओहो मालवीय कुमार दर्द जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। बड़ी मुद्दत के बाद आपका मेल मिला है। त्रिभुवननाथ मालवीय और उनके अहले खाना, मोतला बाजार से बबलू ठेकेदार शेख वजीर और सुहेल शेख, भोपाल का राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और सुनीति छाबड़ा, इंजनब बांदा उत्तर प्रदेश से फहीम मंसूरी और फातिमा मंसूरी, मयूर काटिया दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा, अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर और मयंक गौहर, पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत और सुलोचना भगत, महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत, गौरव सिंह और जानवी राजपूत, बक्सर ब्याज से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और असलम अंसारी, रामरतन टाकीज कुंडलवाड़ी से गंगाधर सावनकर और विजय लक्ष्मी सावनकर। आप सबकी पसंद आपकी नजर है।

अलीगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नदीम इदरीसी और नईम इदरीसी, गांव बदरा ठाकुर पथारिया से मीनू मरावी, लता और उनके अहले खाना, और यूनियन जनाब चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, फुलांग निजामाबाद तेलंगाना से एम ए वहीद रूमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फसीह, अलीका डब्बाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार और कुलदीप गांधी, केथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा, और टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा, यह हमें सुन रहे हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। अगला मेल मिला हमें कालका से भेजने वाले हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, मोताला महाराज से विजय सोरलकर और रतनमाला सोरलकर, और जनाब सहारनपुर से सुरेश नारंग और आशु नारंग का मेल भी हमें मिल गया है, हमने शामिल कर लिया है। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश और राशि राजेश, करनाल से बलविंदर सिंह सोडी, पिंजौर से चंद्रमोहन और इंद्रमोहन, मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन और संजीव जैन, महेंद्रनगर उमरखेड़ महाराज से अभिजीत गवाहनकर, श्रीमती सरिता गवाहनकर और अर्जुन गवाहनकर, गांव पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुनूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी और शकील अहमद, आज गांव बाजार से करण रंजीत पुनकर और कुंडेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती और अभय गुजराती, भटापारा से बचकामल, डॉक्टर बसंत बिरगो और मोतीलाल यादव, अलीगढ़ से सलीम अख्तर और रेशमा बेगम।

आते हैं छोटी बलिया खंडित मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, नूराज अहमद फूलवाले और इमरान अहमद फूलवाले, नर्मदा पार्क मंगलबेड़ा जिला सोलापुर महाराज से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल, आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा और योगेश शर्मा, जी जनाब जयराज प्लोट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट और प्रयागराज भट्ट, छिबा कॉलोनी खंडवा से मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद अयूब खत्री और मोहम्मद शादाब खत्री, और ये जनाब गांव जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी और योगेश कुमार खटक, रेलवे रोड गंडुनवारा से नजमा बेगम राज, मोहम्मद कलीम जख्मी और बेबी फातिमा जावेद, जालना शहर से सागर माटोले, रेणुका माटोले और लक्ष्मी माटोले, ग्राम देगांव तहसील पूर्ण अमारा से सदाशिव धोरात, कविता धोरात और शेरिया धोरात, बदलापुर मुंबई से पंडिता सिद्धार्थ गवानकर और टुकटुक गवाहकर, करणवीर हाउस भूचुक केचिया बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा और करणवीर करण, छत्तीसगढ़ डोगर गांव से राजपाल गजभिये, राधिका गजभिये और तन्मय गजभिये, और साई की शिरडी से सुरेश मालोदे, वर्षा मालोदे और श्रद्धा मालोदे।

Tanguy. तहसील वरुण जिला अमरावती महाराष्ट्र से मुकेश कासलेकर. पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, सुल्तान अंसारी और असमानाज अंसारी. रहनपुर को अमरावती महाराष्ट्र से दिलीप रामिकर, हर्षा रामिकर और अक्षय रामिकर. और जनाब जवानगर दूर से आशी कामड़े, करुण और विपुल कामड़े. काशी निवास नागपुर से हर्षल लंबाडे, वैष्णवी लंबाडे और जानवी लंबाडे. बंगाली पंजाब महाराष्ट्र से प्रकाश लंबाडे और भारती लंबाडे. पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया. सुकमहा नेपाल से अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा, राहुल कुमार शर्मा. हाईकोर्ट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे और शुभम बेंडे. मारा गेट एटा से रवि हसन अब्बासी, पप्पू भाई और नवीद हसन अब्बासी. वरुण जोलकर से महेंद्र सरकटे, विजय सरकटे और मिलिंद सरकटे. कुमारेड़ा सहारनपुर से सईद मसूर, शाहिन हसन और नाजिया. शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, अक्षय सपकाल और विशाल सपकाल. वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस और पिंकी अरोड़ा. मैनीपट्टी मधुबन बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्य कुमारी. अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रेजा बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी. और यही जनाब गिरिडीह झारखंड से इम्तियाज इमाम आतिश, ताहिर परवीन आतिश और डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा. मानेवाला रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर और अनिकेत भटकर. और अगला मील कल्पना मदंजा, मानव और मयंक, निर्मला अपार्टमेंट, भिलाड़ वापी, गुजरात से. डिग्री मध्य प्रदेश से शबनम और अक्रम और शमीम. अच्छा, इन्होंने लिखा अक्रम और शबनम, अक्रम फरजाना. प्रोग्राम की अगली पेशकश गीता दत्त की आवाज में शर्त फिल्म का नगमा. मौसीकार हेमंत कुमार. सुनना चाहते हैं आप सब. नंदेश्वर नगर नरवेल विदर्भ से पीएस नावकर, निर्वाण नावकर और विशाल नावकर. अच्छा ले चुका हूं. हरियाणा जस्ट बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया और रजत भाटिया. और जुमानगर खंडवा से अल्तमज, समीना और फिरदौस. काफरासी सार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी. घास बाजार बांद्रा स्टेशन से रेहान मियां, मोहम्मद उमर फाजिल और फराज शेख. प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी और ध्रुवी जोशी. पुरानी भिलाई तीन चारोदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदीन सिद्दीकी और शाहनवाज अहमद सिद्दीकी. भगत बेल हुबली कर्नाटक के फैज अहमद, शाकिब मुल्ला जी और रफीक मुल्ला जी. और जी जनाब पश्चिम तो गंडवारा से मास्टर अलीम रजा सिद्दीकी, मास्टर मुनवर सिद्दीकी और फैज अलीम सिद्दीकी. कच्छ गुजरात से गंगावनकर, गोविंद, प्रीति और जूली. ग्रीन सिटी गांधी ग्राम गुजरात से परवीन सोनी, कलावती सोनी और प्रथम सोनी. हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन. चमनपुरा उदयपुर से सबिया खानम, फरीदा खानम, फरीदा शबनम और रईसा खातून. आप तमाम की पसंद आपकी नजर है.

0: में, यानी कि 200 केसेस में एक केस ऐसा होता है जिसमें लिवर फेलियर हो सकता है और मृत्यु की संभावना बनती है
1: जी।
0: तो वो एक अलग तरीके से फैलता है और हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो एक अलग तरीके से फैलता है और साइलेंट किलर हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से होते हैं
1: जी। मेरा आपसे दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि आज सरकार ने नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत नई ऑपरेशनल गाइडलाइंस और स्क्रीनिंग गाइडलाइंस जारी की हैं। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि इन नए दिशा निर्देशों में क्या बदलाव किए गए हैं और इनसे आम लोगों को क्या फायदा पहुंच सकता है।
0: इन गाइडलाइन में जो मुख्य इनका बिंदु है जिनपे हमें समझने की जरूरत है और वो ये है कि 2030 तक हमें जो हेपेटाइटिस है, जो लिवर की बीमारी है, उसको बहुत हद तक खत्म करना है और कम करना है। और इसमें हेपेटाइटिस बी और सी जो एक बार शरीर में घुस जाते हैं जैसे हमने बताया और लगातार रहते हैं, तो उनकी जांच का, उनके इलाज का और साथ ही साथ उनको फॉलो करने का, ये सारे का सारा जो इस नई गाइडलाइन के अंदर है और स्पष्टता से बताया गया है। और अब अनेक सरकारी स्थान पर ये सुविधाएं उपलब्ध है, खासतौर पे इस समय तक जो गर्भवती महिलाएं थी उनकी जांच हो रही थी, लेकिन अब लगातार जैसे कि पहले करीब 21 करोड़ लोगों की अभी तक जांच हो चुकी है, लेकिन अब धीरे धीरे ये जांच पूरी करनी है जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो हेपेटाइटिस बी या सी से प्रभावित है जल्दी बीमारी अधिक पढ़ने से पहले पकड़ा जा सके, क्योंकि आज इनका इलाज उपलब्ध है। एंटीवायरल ड्रग्स हमारे देश में उपलब्ध है, यहीं पे उनका निर्माण होता है, बाहर से नहीं मंगवाना पड़ता और वो बहुत ही प्रभावी दवाई है, तो इलाज किया जा सकता है और जिससे कि सिरोसिस से बचा जा सके और जिससे जो कार्सिनोमा कैंसर है लिवर का वो उससे बचा जा सके।
1: तो जैसा कि पहले उत्तर में आपने बताया कि किस प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं और किस प्रकार की चुनौतियां लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, तो उसी से जुड़ा मेरा प्रश्न है कि हेपेटाइटिस की वजह से हमें पता है कि 5 प्रकार बताए जाते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इनमें से भारत के लिए सबसे बड़ी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है वो कौन से प्रकार के हेपेटाइटिस से होती है और क्यों?
0: हमारी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के हिसाब से इसमें से 4 हेपेटाइटिस डी इतना कॉमन नहीं है। मैंने आपको बताया कि ए और ई पानी के दूषित होने से या भोजन के दूषित होने से होता है। जिस तरीके से डायरिया या दस्त की बीमारी होती है बिल्कुल उसी तरीके से हेपेटाइटिस ए और ई भी हो सकता है। और जैसे ही हमारा वातावरण में स्वच्छता आती है, चाहे वो पानी की है, भोजन की है, और जैसे कि स्वच्छ भारत कार्यक्रम हुआ, हर घर जल वाला कार्यक्रम आ रहा है, उसके वजह से सचमुच इन चीजों में बहुत कमी आई है। कुछ साल पहले तक, यानी मैं कहूंगा 10-15 साल पहले तक, हर थोड़े दिन में पता चलता है देश के किसी हिस्से में हेपेटाइटिस ई का खास तौर पर आउटब्रेक्स या एपिडेमिक होता था। और ये जो है इसकी वजह से बहुत सीवियर बीमारी होती है और खासतौर पे अगर गर्भवती महिलाओं में हेपेटाइटिस ई हो जाए तो मृत्यु की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो ये इन दोनों के लिए तो सफाई का है। हेपेटाइटिस बी और सी का होने का जो तरीका वो है, बी जो है मां से बच्चे, अगर गर्भवती महिला में हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे में होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसी तरीके से जीवन के पहले 5 सालों में अगर एक दूषित सिरिंज के द्वारा इंजेक्शन दिया जाता है या कोई ब्लड डोनेट दिया जाता है और उसके अंदर हेपेटाइटिस बी है, तो उसमें से 70-95% संभावना होती है कि हेपेटाइटिस बी की बीमारी उस बच्चे में हो जाएगी और वो फिर वायरस बाहर निकलता नहीं। हेपेटाइटिस सी जो है दूषित इंजेक्शन या ब्लड सैंपल से होता है, खासतौर पर ज्यादातर एक आम समझ के लिए ये जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ध्यान करना है, एक तरफ तो हमें खाने की और पीने की सफाई रखनी है और उसमें खास ध्यान रखना है, दूसरी तरफ जब भी इंजेक्शन लगा हो तो हमें देखना है कि नई इंजेक्शन और नई नीडल का इस्तेमाल होना चाहिए हमारे लिए। दूसरी उतनी महत्वपूर्ण बात है कि इंजेक्शन तभी लगाया जाए जब अत्यंत जरूरी है, क्योंकि तो देखा गया है विभिन्न अनुसंधानों के द्वारा, हमारे द्वारा किया गया, कि लगभग 60-75% समय हम जब प्राइवेट प्रैक्टिस में जाते हैं तो इंजेक्शन लगाया जाता है जिसकी जरूरत नहीं हो।

0: क्योंकि आजकल ओरल दवाइयों से पूरा लाभ वैसे मिल जाता है, तो इंजेक्शन की कमी होनी चाहिए, इंजेक्शन कम से कम लगने चाहिए, और जब इंजेक्शन लगाना पड़े तो नए इंजेक्शन और सिरिंज होने चाहिए। और ब्लड सैंपल जब भी चढ़ाया जाए, जब ब्लड किसी को चढ़ाने की जरूरत है, तो उसमें हेपेटाइटिस बी और सी की जांच कहीं होनी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि मेरे श्रोता इस बात को अपने डॉक्टर से या अपने चिकित्सा कर्मी से पूछे कि भैया इसमें हेपेटाइटिस बी सी और एचआईवी की जांच हो गई है कि नहीं हो गई। गर्भवती महिलाओं में आजकल जो है प्रसव से पूर्व जो जांच होती है उसमें हेपेटाइटिस बी की पूरी जांच की जाती है, और अगर हेपेटाइटिस बी मां को है तो उसका इलाज तो अलग से करना होता है जब प्रसव हो जाता है। लेकिन प्रसव के 24 घंटे के अंदर ही अगर बच्चे को, जो नवजात शिशु है, उसको हेपेटाइटिस बी का टीका लगा दिया जाए तो बच्चे में हेपेटाइटिस बी का संक्रमण बच जाता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 5 साल से कम अगर हेपेटाइटिस बी का संक्रमण किसी बच्चे में हो, खासतौर पे नवजात शिशु में और पहले साल में, तो लगभग 95% संभावना है कि वो हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे को पता है कि माँ को हेपेटाइटिस बी है तो वो उसको मैं टीका लगा दूं तो फिर टीके से बचाव हो जाए।
1: जी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम जो सरकार ने शुरू किया था, इससे आम लोगों को कितना फायदा मिला है और कैसे उनके लिए एक सुविधाजनक इलाज सरकार ने दिलवाया है?
0: स्वच्छ भारत की वजह से हेपेटाइटिस ए और ई में एक बहुत शार्प गिरावट आई है। अब हमें हेपेटाइटिस ए और ई के केसेस या आउटब्रेक्स या एपिडेमिक महामारी के तौर पर बहुत ही कम दिखाई देते हैं, और पिछले कई सालों में हमने नहीं सुना है कि बहुत बड़ा कोई आउटब्रेक हुआ। हेपेटाइटिस बी और सी के लिए क्योंकि गर्भवती महिलाओं में जांच हो रही है, और इसके अलावा जब नवजात शिशु है, आज की डेट में लगभग 90% से ऊपर प्रसव जो है स्वास्थ्य केंद्रों पे होते हैं, तो उसी समय नवजात शिशु को हेपेटाइटिस बी का टीका लगा दिया जाता है। तो इस टीका लगा जाने से अगर मां को हेपेटाइटिस बी है भी तो हमारे बच्चे को उससे बचाया जा सकता है और बच जाता है। और इसका फायदा ये हुआ है कि हेपेटाइटिस बी का टीका लग जाने से समय के साथ जहां हमारे हेपेटाइटिस बी और सी के 2 से 3% लोग संक्रमित थे, वो अब 1% से कम, लगभग 0.85 और 0.9% जो है वो प्रभावित होते हैं। हेपेटाइटिस सी जो है वो लगभग 0.3%, यानी कि अगर मैं कहूं कि 1000 में 3 बच्चे जो है, 3 व्यक्ति जो है हेपेटाइटिस सी, और ये खास तौर पे संक्रमित इंजेक्शन या ब्लड सैंपल और खास तौर पे इंजेक्शन की वजह से होता है, तभी मैंने कहा कि इंजेक्शन। तो अब ये जो कार्यक्रम हुआ है, और ये कार्यक्रम हर एक सरकारी चिकित्सा संस्था है, चाहे वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, पीएचसी है, सीएससी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, इन सभी में हेपेटाइटिस बी और सी की जांच उपलब्ध है आज की डेट में। वही हाथ के हाथ आपकी जांच हो जाती है, और उससे एक बार जांच हो जाए तो उसके हिसाब से फिर ध्यान किया जाता है, और साथ में इंजेक्शन के बारे में विशेष ध्यान दिया जाता
1: है। हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसका समय पर पहचान और इलाज संभव है। सरकार मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज, टीकाकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के माध्यम से 2030 तक हेपेटाइटिस उन्मूलन के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जन जागरूकता, समय पर जांच और लोगों की सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। डॉक्टर एनके अरोड़ा, आपका हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विश्व हेपेटाइटिस दिवस, हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए भारत के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी श्रेया पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत प्रोग्राम बज़्मी मौसीकी। बज़्मी मौसीकी प्रोग्राम में सामीना सुनिए पंडित जसराज से राग जय जयवंती में ख्याल।

लोकसभा में पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर बहस जारी है। ये बिल पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक कानून 2024 में तरमीम करेगा। ये कानून सख्त जुर्मानों जैसे 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और कसूरवार करार दिए गए मुजरिमों की जायदाद जब्ती जैसी अहम गुंजाइशों को जोड़ेगा। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिल पेश करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के हालिया वाकयात का नोटिस लेते हुए फैसला किया है कि इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत है। डीएमके के दिया ने भी मारन ने बहस में हिस्सा लेते हुए दावा किया कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट मरकजी मौजू है जो यकसा नहीं है और तलबा मुखालिफ है। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने हुकूमत पर तलबा के मफादात के तहफ्फुज में नाकाम रहने और निजाम तालीम को कमजोर करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह तलबा से किए गए वादों को पूरा करे। मोहतरमा गांधी ने मजीद कहा कि नौजवान निजाम तालीम में अपना एतमाद बहाल करने के लिए मुजाहरे कर रहे थे और जवाबदेही तय करना चाहते थे। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज, टीडीपी के लव श्री कृष्णा, शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और दीगर अराकीन पार्लियामेंट ने बहस में हिस्सा लिया। राज्यसभा की कार्रवाई नीट मामले पर तलबा के मुजाहिरों के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर अपोजिशन के हंगामे के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। पहली मरतबा मुलतवी होने के बाद राज्यसभा की कार्रवाई जब दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुई तो मरकजी वजीर जीतन राम मांझी ने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट तरमीमी बिल 2026 मुतारिफ कराया। बिल के तारुफ के दौरान अपोजिशन अराकीन ने तलबा के खिलाफ पुलिस की मुबैना कार्रवाई पर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा आरई जारी रहने पर राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने एवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल अपनी सदारत के 4 साल मुकम्मल होने के मौके पर राष्ट्रपति भवन में किताबों के अजरा की एक खसूसी तकरीब की सदारत की। इस मौके पर नायब सदर सीपी राधाकृष्ण ने 5 यादगार किताबों का अजरा किया। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि सदर का आईनी ओहदा महज एक एजाज नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना उनके जाती ख्वाबों से बढ़कर है। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि नीट पेपर लीक के खिलाफ हालिया मुल्कगीर एहतजाज के दौरान तलबा और पुलिस अहलकारों के जख्मी होने के इल्जाम की मुकम्मल मुनसिफाना और गैर जानबदाराना तहकीकात जरूरी है। अदालत ने यह भी हिदायत दी कि एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए ऐसे कम उम्र तलबा जिनका कोई साबिका मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है उन्हें रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्काम को हिदायत दी कि एहतजाज से मुतालिक तमाम इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल शवाहिद महफूज रखे जाएं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही में 3 रुकनी बेंच उन दरख्वास्तों की समाअत कर रही थी जिनमें एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर जरूरत से ज्यादा ताकत के इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया है। अदालत आलिया ने कहा कि तहकीकात में उन 200 से ज्यादा जख्मी पुलिस एहलकारों के अहले खाना के खदशात को भी मलहूज खातिर रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम रियासतों जहां एहतजाज हुए हिदायत दी कि वो एहतजाज से मुतालिक सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, बॉडी कैमरों की फुटेज, वायरलेस मवासलाती रिकॉर्ड, पीसीआर लॉक्स और दीगर तमाम डिजिटल शवाहिद महफूज रखे। अदालत आलिया ने यह भी हुक्म दिया कि एहतजाज करने वाले तलबा से मुतालिक इकट्ठा किया गया तमाम डिजिटल डेटा महफूज रखा जाए ताहम उसे अवामी सतह पर जारी न किया जाए। बेंच ने दिल्ली हुकूमत को दर्ज FIR की तहकीकात जारी रखने की इजाजत दी लेकिन यह भी वाजे किया कि अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने तक एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न की जाए। इसके अलावा बेंच ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरला, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से भी दरख्वास्तों में आयद किए गए इल्जाम पर जवाब तलब किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। सनअती पैदावार के इशारे IIP के जरिए पैमाइश करदा भारत की सनअती पैदावार इस साल जून के महीने में 23 महीनों की

बातें छोड़ो, मेरा तुम्हारा नाता इतना ही है कि तुम गुरु हो, मैं तेरी हूँ।

ये आकाशवाणी है। अब आप तोहीद हकानी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की अहम खबरें। लोकसभा में उस बिल पर बहस जारी है जिसमें पेपर लीक मामले में सख्त सजाएं और फास्ट ट्रैक अदालतों के क्याम की तजवीज है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए कम उम्र तलबा की रिहाई का हुक्म दिया है। पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर फायरिंग के दौरान 20 अफराद हलाक हो गए। जापान के जनूबी सूबे कुमामोटो में 7.1 शिद्दत का ताकतवर जलजला आया है जिसके नतीजे में हजारों घरों की बिजली गुल हो गई है, सड़कें टूट गई हैं और कम से कम 50 अफराद जख्मी हो गए हैं। और आईएसएसएफ निशानेबाजी वर्ल्ड कप में सोनम उत्तम माशकर और हिमांशु ढिल्लों की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम मुकाबले में कांस्य का तमगा हासिल किया। अब खबरें तफसील से। लोकसभा में पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर बहस जारी है। ये बिल पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक कानून 2024 में तरमीम करेगा। ये कानून सख्त जुर्मानों जैसे 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और कसूरवार करार दिए गए मुजरिमों की जायदाद जब्ती जैसी अहम गुंजाइशों को जोड़ेगा। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिल पेश करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के हालिया वाकयात का नोटिस लेते हुए फैसला किया है कि इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत है। डीएमके के दयानिधि मारन ने बहस में हिस्सा लेते हुए दावा किया कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट मरकजी मौजूद है जो यकसान नहीं है और तलबा मुखालिफ है। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने हुकूमत पर तलबा के मफादात के तहफ्फुज में नाकाम रहने और निजाम तालीम को कमजोर करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह तलबा से किए गए वादों को पूरा करे। मोहतरमा गांधी ने मजीद कहा कि नौजवान निजाम तालीम में अपना एतमाद बहाल करने के लिए मुजाहरे कर रहे थे और जवाबदेही तय करना चाहते थे। बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज, टीडीपी के लवू श्री कृष्णा, शिवसेना के डॉ कांत शिंदे, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और दीगर अराकीन ने पार्लियामेंट में बहस में हिस्सा लिया। राज्यसभा की कार्रवाई नीट मामले पर तलबा के मुजाहिरों के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर अपोजिशन के हंगामे के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। पहली मरतबा मुलतवी होने के बाद राज्यसभा की कार्रवाई जब दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुई तो मरकजी वजीर जेतन राम मांझी ने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट तरमीमी बिल 2026 मुतारिफ कराया। बिल के तारुफ के दौरान अपोजिशन अराकीन ने तलबा के खिलाफ पुलिस की मुबैना कार्रवाई पर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा आरई जारी रहने पर राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल अपनी सदारत के 4 साल मुकम्मल होने के मौके पर राष्ट्रपति भवन में किताबों के अजरा के एक खसूसी तकरीब की सदारत की। इस मौके पर नायब सदर सीपी राधा कृष्णन ने 5 यादगारी किताबों का अजरा किया। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि सदर का आइनी ओहदा महज एक एजाज नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना उनके जाती ख्वाबों से बढ़कर है। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि नीट पेपर लीक के खिलाफ हालिया मुल्क गिर एहतजाज के दौरान तलबा और पुलिस एहलकारों के जख्मी होने के इल्जाम की मुकम्मल मुनसिफाना और गैर जानबदाराना तहकीकत जरूरी है। अदालत ने यह भी हिदायत दी कि एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए ऐसे कम उम्र तलबा जिनका कोई साबिका मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है उन्हें रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हुकाम को हिदायत दी कि एहतजाज से मुतालिक तमाम इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल शवाहद महफूज रखे जाएं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही में 3 रुकनी बेंच उन दरख्वास्तों की समाअत कर रही थी जिनमें एहतजाज के दौरान पुलिस की जाने से मुबैना तौर पर जरूरत से ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया है। अदालत आलिया ने कहा कि तहकीकात में उन 200 से ज्यादा जख्मी पुलिस एहलकारों के अहलखाना के खदशात को भी मलहूज खातिर रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम रियासतों को जहां एहतजाज हुए हिदायत दी कि वह एहतजाज से मुतालिक सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, बॉडी कैमरों की फुटेज, वायरलेस मवासलाती रिकॉर्ड के
سی آر لاکس اور دیگر تمام ڈیجیٹل شواہد محفوظ رکھیں۔ عدالت عالیہ نے یہ بھی حکم دیا کہ احتجاج کرنے والے طلبہ سے متعلق اکٹھا کیا گیا تمام ڈیجیٹل ڈیٹا محفوظ رکھا جائے، تاہم اسے عوامی سطح پر جاری نہ کیا جائے۔ بینچ نے دلی حکومت کو درج ایف آئی آر کی تحقیقات جاری رکھنے کی اجازت دی، لیکن یہ بھی واضح کیا کہ عدالتی کارروائی مکمل ہونے تک احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ بینچ نے دلی، مہاراشٹر، بہار، کیرلا، مدھیہ پردیش اور اتر پردیش کے چیف سیکرٹری سے بھی درخواستوں میں عائد کیے گئے الزامات پر جواب طلب کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد قانون ساز اسمبلی انتخابات کو پاکستان کے غیر قانونی قبضے سے دنیا کی توجہ ہٹانے اور خطے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کی ایک کوشش قرار دیا ہے۔ کل دوپہر نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں ترجمان رندیر جیسوال نے انتخابات کو محض دکھاوا قرار دیا۔ راولکوٹ میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے منعقدہ ایک طویل مارچ کے دوران پاکستانی سیکیورٹی فورس نے مظاہرین پر فائرنگ کی، جس کے بعد پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کم سے کم 20 افراد ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ خبروں کے مطابق کئی زخمیوں کی حالت نازک ہے، جس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ہے۔ جاپان کے جنوبی صوبے کوماموٹو میں 7.1 شدت کا طاقتور زلزلہ آیا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں گھروں کی بجلی گل ہو گئی ہے، سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں اور کم سے کم 50 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق کئی افراد جزوی طور پر

0: जीता। इसके साथ ही टूर्नामेंट में भारत के तमगों की तादाद बढ़कर 4 हो गई है, जिनमें सोने का 1, चांदी का 1 और कांसे के 2 तमगे शामिल हैं। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की श्रीहरि नटराज ने कल 100 मीटर बैकस्टॉक तैराकी मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर लिया। नटराज अपनी हीट में 5वें मकाम पर जबकि मजमूई तौर पर 13वें मकाम पर रहे। उन्होंने 55 मिनट 58 सेकंड में ये कामयाबी हासिल की। भारत के पैरा तैराकों ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। आरवीवी बीके बुदीगीना और अली इमाम ने मर्दों के 50 मीटर फ्री स्टाइल S13 फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा में उस बिल पर बहस जारी है जिसमें पेपर लीक मामले में सख्त सजाएं और फास्ट ट्रैक अदालतों के क्याम की तजवीज है। हुकूमत ने कहा है कि यह नया कानून तलबा के मुस्तकबिल के तहफ्फुज़ की खातिर उसकी अज़्म की अक्कासी करता है, जबकि अपोजिशन ने तालीमी निजाम में वसीअ तर असलाहत पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए कम उम्र तलबा की रिहाई का हुक्म दिया है। महाराष्ट्र, बिहार और आसाम की हुकूमतों ने तलबा के खिलाफ दर्ज मामला वापस लेने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर फायरिंग के दौरान 20 अफराद हलाक हो गए। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में नामनियाद असेंबली इंतखाबात उसके गैर कानूनी कब्जे को छुपाने के लिए महज एक दिखावा है। जापान के जनूबी सूबे कुमामोटो में 7.1 शिद्दत का ताकतवर जलजला आया, जिसके नतीजे में हजारों घरों की बिजली गुल हो गई, सड़कें टूट गई और कम से कम 50 अफराद जख्मी हो गए। और ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप में सोनम उत्तम मास्कर और हिमांशु ढिल्लो की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम मुकाबले में कांस्य का तमगा हासिल किया। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: मीडियम में बेकतारी 71 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। समाचार का एक वजह चाहता है यहां हमारी आज की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती है। सुबह 9:30 पर अपनी पहली मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।